सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 33 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 314.4

7 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जब मन में प्रभु का नाम बस जाता है तो हर धड़कन भक्ति का स्वर बन जाती है, और जब उस धड़कन में श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी का स्मरण हो तो जीवन में साहस, विश्वास और प्रेम अपने आप उतर आता है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वो समर्पण, सेवा और अटूट भक्ति की जीवंत मिसाल हैं। कहते हैं जहाँ राम का नाम होता है वहाँ बजरंग बली स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। इन्हीं भावों को सुंदर शब्दों और मधुर संगीत में पिरोया गया है कार्यक्रम के इस पहले भजन में।

श्रोताओं, जब जीवन की राहों में अपने भी साथ छोड़ दें, तब ईश्वर का सहारा ही मन को शक्ति देता है। प्रभु केवल हमारे आराध्य ही नहीं, बल्कि सच्चे मित्र, मार्गदर्शक और जीवन के हर सुख दुख के साथी भी होते हैं। इसी भावना को बेहद मधुर शब्दों में व्यक्त करता है कार्यक्रम का ये अगला भजन।

ईश्वर की भक्ति में ये भजन सुनने के बाद आइए अब रुक करें शब्द का। श्रोताओं, गुरबाणी केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा को शांति देने वाला एक अमृत है। जब मन भ्रम, चिंता और अज्ञान की धुंध में खो जाता है, तब गुरु की वाणी जीवन में प्रकाश बनकर रास्ता दिखाती है। ये शब्द हमें बताता है कि गुरु की कृपा से जीवन का अंधकार दूर हो जाता है और हर ओर ज्ञान का उजाला फैल जाता है।

श्रोताओं, जब दिल में सरकारे मदीना की मोहब्बत बस जाती है तो हर रास्ता इबादत बन जाता है और हर दुआ में मदीने की हाजिरी की तमन्ना शामिल हो जाती है। इन्हीं पाक जज्बात को खूबसूरती से बयां करती है कार्यक्रम वंदना की ये नात। तो आइए अदब और मोहब्बत के साथ सुनते हैं।

ये नाद सुनने के बाद आइए अब अपने रुख को एक बार फिर से हनुमान जी की ओर मोड़ते हैं। श्रोताओं, संकट मोचन हनुमान जी की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है।

वो अपने भक्तों के हर दुख को दूर करते हैं और जीवन में साहस और शक्ति का संचार करते हैं। जब भी सच्चे मन से उनका स्मरण किया जाता है तो वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। अब समय है हनुमान जी की उस पावन आरती का, जिसे सुनते ही वातावरण भक्तिमय हो जाता है।

हनुमान जी की इस आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 होने को हैं। लीजिए अब सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। संगीत सतीश भाटिया का है और कलाकार हैं जगजीत सिंह व कविता कृष्णमूर्ति।

रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न है, उनका चित्त उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राज तिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

0: रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति, संगीत सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए चिंतन।
1: प्रार्थना दिल से, भाव से, विचार से, समर्पण से होनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है वर्तमान में रहना। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन विचार ठीक होकर सूक्ष्म हो जाता है और आप वर्तमान में होते हैं। हम लोग अपने आप को संसारी कहकर साधना करने से बचाते हैं। जीवन में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। भक्त के लिए सानिध्य जरूरी होता है कि प्रभु मेरे हैं, मौजूदगी महसूस करें। जब हम मौजूदगी महसूस करते हैं तो प्रभु वही हैं। खुद की मौजूदगी महसूस करें कि हम हैं। आप अपने आप को महसूस करें, प्रभु को महसूस करें। जीवन में सफल होने के लिए दो चीजें चाहिए, वो है भक्ति और मुक्ति। जब दोनों हैं तो जीवन सफल है। हम अपने जीवन को ध्यान ज्ञान में परिवर्तन करेंगे, ऐसा संकल्प करें। जिस जीवन में ध्यान ज्ञान नहीं वो जीवन कूड़ा करकट के समान है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाता है। ज्ञानी अपने आप सभी के सामने झुकते हैं, अज्ञानी अकड़ कर चलता है। तो तुम कौन हो खुद देखो। चेतना सबकी एक ही है, अलग नहीं है। हमारे अंदर भी वही, आपके अंदर भी वही, सभी के अंदर वही चेतना काम कर रही है। हम सब चैतन्य स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। व्यक्ति के शरीर से नहीं बल्कि उसकी चेतना से संबंध बनाओ। ये संबंध सानिध्य का होगा। सभी को परमात्मा का स्वरूप मानो। हम सब एक ही हैं, एक ही चेतना सभी में है। हम जिसको चाहते हैं उसकी याद बराबर आती रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों याद आ रही है। प्रभु को चाहो, प्रभु याद आने लगेंगे। हम सपने को पकड़कर नहीं बैठते हैं, इसी तरह हम संसार की चीजों को लेकर नहीं बैठेंगे। जब जान जाते हैं कि यह सब सपना है तो हम कभी आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सपना है। किस किस को पकड़ोगे? तुम पकड़ना भी चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। संसार एक सपना है, जैसे नींद से आया सपना जागने के बाद नहीं रहता। उसी प्रकार हम जान जाते हैं कि किस तरह सपने आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति वस्तु संसार में आते हैं और जाते हैं। सेवा करो, सेवा से मन शांत हो जाता है। जब सेवा करते हो तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहो, अन्यथा ये सेवा व्यापार हो जाती है। सांस को देखो, समझने की कोशिश करो, यही जीवन है और जीवन जीने की कला। जब हम समझने लगते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, अब पास में हैं, तो हम थकते नहीं। कोई बच्चा कहीं जाते वक्त थक जाता है तो हम कहते हैं देखो वो दिख रहा है। इसी प्रकार समीप समीप कहकर हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। हम काल और स्थान के समुचित व्यवहार नहीं करते। काल और स्थल के हिसाब से चलें और महसूस करें। हम जिसको पाना चाहते हैं उसको नजदीक समझें, जल्द ही उसको पा लेंगे।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:45 होने को हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। इस कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं रेखा गिरीश का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।

ये एक यक्ष प्रश्न देखिएगा, तब से अब तक अभी भी चला आ रहा है कि जो पूछती थी अब तक, अम्मा जी क्या बनाऊं, मम्मी जी क्या मैं शॉपिंग पर चली जाऊं, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि आदि सभी सोशल मीडियाज पर व्यस्त अपनी बेटी से, अपनी बहू से वही यक्ष प्रश्न आज भी पूछ रही हैं कि बेटी क्या खाएगी, बहू आज क्या बनाए, क्या आज फुर्सत है शॉपिंग पर चलें। अपने तन के दर्द की, अपने मन के दर्द की जैसे तब फिकर नहीं थी, आज भी नहीं है। आदत जो बन गई है, आदत जो बन गई है। और एक दृश्य और देखिएगा कि चलो आज एक बार फिर अजनबी हो जाते हैं, फिर नए प्यार नए व्यवहार से एक दूसरे को रिझाते हैं, कभी मनुहार करते कभी शर्माते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे में खो जाते हैं, प्यार बासी ना हो जाए कुछ नएपन की पौध लगाते हैं, चलो आज एक बार फिर से अजनबी हो जाते हैं। कुछ दिनों से लग रहा था कि जैसे मेरे और तुम्हारे बीच का नेटवर्क ही कहीं खो गया है, बात मेरी तुम तक पहुंचती ही नहीं, एक कांच का गिलास फोड़कर एक दूसरे को जगाते हैं, कैसे टूटा कहकर एक दूसरे पर तोहमतें लगाते हैं, फिर एक साथ मिलकर ये सारे कांच उठाते हैं, चलो फिर से अजनबी हो जाते हैं, चलो एक बार फिर अजनबी हो जाते हैं। और वक्त देखिए कि कैसा होता है, वक्त

ही रहा। जल है तो जीवन है, पानी पर कुछ दोहे देखिएगा कि पानी का उपयोग बस ना हो दुरुपयोग, और देखिए हो सके कैसे फिर उपयोग। धोए सब्जी दाल जब पानी को मत फेंक, पौधों में तुम डाल दो बढ़त बनेगी नेक। धरती की छाती फटी सारा लिया उलीच, पानी जो अब चाहिए थोड़ा धरती सींच। संचय वर्षा जल करें ताल बावड़ी खोद, धरती प्यासी ना रहे तब आए आमोद। भवन बने कोई कहीं लेना ये संज्ञान, वर्षा संचय योजना बहुत जरूरी जान। खारा पानी शुद्ध हो ऐसी युक्ति लगाएं, फिर समुद्र को पी सकें मुनि अगस्त्य हो जाएं। सुबह हुई संध्या गई बिन पानी सब सून, वैज्ञानिक भी ढूंढते क्या मंगल क्या मून। वैज्ञानिक भी ढूंढते क्या मंगल क्या मून। और वक्त पर ही एक गजल सुनिएगा, आने वाला पल।

0: रखना।
1: काव्यधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रेखा गिरीश का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
2: इयम आकाशवाणी

0: मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज की जानकारी का विषय है पौष्टिकता से भरपूर केला।
3: संसार में जितने भी फल हैं, वे सभी विभिन्न प्रभावों और गुणों से युक्त हैं। इन फलों के आकार प्रकार की विविधता, उनके रंग रूप तथा फूल पत्तों की मनमोहक छटा देखकर आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं।

0: सकते हैं। ये सभी फल प्राणियों के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी हैं। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे गुणों से भरपूर फल केले की। केले न सिर्फ पौष्टिक होते हैं बल्कि उनसे पेट भी भरता है। केले में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। एक केले में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन होता है। इसमें वसा की मात्रा न के बराबर होती है। इसमें आयरन, कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। पके केले की अपेक्षा कच्चे केले की फली में आयरन व फाइबर यानी कि रेशों की मात्रा ज्यादा होती है। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज जैसे खनिज तथा अन्य तत्व भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं केले में। मांसपेशियों के कुशल संचालन के लिए जरूरी पोटेशियम भी केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। केले के फल के 100 ग्राम दलदार भाग में 88 मिलीग्राम पोटेशियम की मात्रा ही रक्तचाप औषधियों की तासीर हेतु पर्याप्त है। उच्च रक्तचाप पीड़ितों के लिए केले का सेवन लाभकारी है। तमाम अन्य फलों की तरह केले में पेक्टिन और फाइबर होता है जो भरपूर भोजन प्रदान करते हैं और कब्ज से निजात दिलाते हैं, विशेष रूप से गर्भावस्था और वृद्धावस्था में। पेक्टिन पेट बांधता है, अतः दस्त लगने पर केला फायदेमंद है। केला नेत्र रोगों में भी लाभदायक है। आंत्र ज्वर के रोगियों के लिए केला आदर्श भोजन है। ये भूख प्यास कम करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों में मिट्टी खाने की आदत होती है, ऐसे में पका हुआ केला और शहद मिलाकर खिलाएं। केले के पेड़ का ताजा रस या सब्जी बनाने वाला कच्चा केला क्षय रोग को दूर करने के लिए रामबाण है। जिसे क्षय रोग हो चुका हो या कष्टदायक खांसी आती हो जिसमें अधिक मात्रा में बलगम निकलता हो, रात को सोते समय अधिक पसीना आता हो, दस्त आते हो, भूख ना लगती हो, वजन भी बहुत गिर चुका हो, उनको केले के मोटे तने के टुकड़े का रस निकाल और छानकर एक दो कप ताजा रस हर दो घंटे बाद घूंट घूंट करके पिलाया जाए तो 3 दिन में ही रोगी को बहुत लाभ होगा। दूध पीने वाले शिशु के लिए नित्य विटामिन सी, नियासिन, राइबोफ्लेविन और थायमिन की जितनी मात्रा चाहिए उसका चौथाई भाग एक केले में मिल जाता है। विभिन्न प्रकार के जठरांत्र रोगों में भोजन के रूप में केला खाना रोग निवारण में सहायक है। ये बच्चों और दुर्बल लोगों के लिए एक पोषक आहार है। बच्चों और बड़ों के हर प्रकार के दस्त, जठर शोथ यानी कि गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर में भोजन के रूप में केला आरोग्यदायक है। ये आंतों की सूजन को भी मिटाता है। यदि अल्ब्यूमिन तत्व कम हो जाए तो केला खाकर इसकी पूर्ति करें। केला स्वाद के कद्रदानों के लिए भी एक वरदान है। झटपट नाश्ते के लिए दूध केले में अंकुरित साबुत अनाज से बेहतर कोई विकल्प नहीं। इतने सारे गुण हैं केले में, इसका सेवन कीजिए और आप भी लाभ उठाइए।
1: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी पौष्टिकता से भरपूर केला। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है मिट्टी की जांच है बेहद जरूरी। किसान भाइयों, मिट्टी की जांच खेती की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। स्वस्थ मिट्टी ही अच्छी फसल, अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता की सिफारिश करती है। यदि किसान अपनी भूमि की सही स्थिति को समझे बिना केवल अनुमान के आधार पर खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं तो इससे न केवल उत्पादन लागत बढ़ती है बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए मिट्टी की जांच कराना आज के समय में अत्यंत आवश्यक हो गया है। आधुनिक कृषि में मिट्टी परीक्षण

0: को खेती का पहला कदम माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से किसान यह जान सकते हैं कि उनकी भूमि में कौन कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं और किन तत्वों की कमी है। मिट्टी की सही जानकारी मिलने पर किसान आवश्यकता अनुसार उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाइयों, मिट्टी की जांच का मुख्य उद्देश्य मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगाना होता है। पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन तथा अन्य सूक्ष्म तत्व आवश्यक होते हैं। यदि इनमें से किसी भी तत्व की कमी या अधिकता हो जाए तो फसल की वृद्धि प्रभावित होती है। मिट्टी परीक्षण से इन तत्वों की सही मात्रा ज्ञात हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी की पीएच मान, विद्युत चालकता, जैविक कार्बन तथा मिट्टी की बनावट की भी जानकारी मिलती है। किसान भाइयों, मिट्टी की जांच कराने से खेती की लागत कम होती है। किसान केवल उन्हीं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जिसकी वास्तव में आवश्यकता होती है। इससे अनावश्यक खर्च बचता है। उदाहरण के लिए, यदि मिट्टी परीक्षण में यह पता चलता है कि खेत में पोटाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो किसान पोटाश उर्वरक खरीदने में पैसा खर्च नहीं करेंगे। इस प्रकार मिट्टी परीक्षण सीधे किसान की आय बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही संतुलित उर्वरक प्रयोग से फसल उत्पादन भी बेहतर होता है। मिट्टी परीक्षण पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि, जल और वायु प्रदूषित होते हैं। अतिरिक्त उर्वरक वर्षा के पानी के साथ बहकर नदियों और तालाबों में पहुंच जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। यदि किसान भाई मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें तो पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है। किसान भाइयों, आज देश के लगभग सभी जिलों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध है। सरकार भी किसानों को मिट्टी परीक्षण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि की गुणवत्ता की जानकारी दी जाती है। इस योजना के तहत मिट्टी की जांच कर किसानों को एक कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसमें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति तथा उर्वरक उपयोगी संबंधी सिफारिशें दी जाती हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की जांच केवल बड़े किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। सीमित संसाधनों वाले किसान यदि वैज्ञानिक सलाह के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें तो कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण से उन्हें सही जानकारी मिलती है कि कौन कौन सी फसल उनके खेत के लिए उपयुक्त हैं और किस प्रकार की खाद का उन्हें प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, आज के समय में स्मार्ट खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों का महत्व बढ़ रहा है। ड्रोन, सेंसर और डिजिटल तकनीकों के साथ साथ मिट्टी परीक्षण भी आधुनिक खेती का आवश्यक हिस्सा बन चुका है। भाइयों, वैज्ञानिक खेती की शुरुआत मिट्टी की जानकारी से होती है। जिस प्रकार डॉक्टर बीमारी का इलाज करने से पहले जांच करता है, उसी प्रकार हमारे किसान भाइयों को भी खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य ही करानी चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि मिट्टी की जांच खेती की सफलता की कुंजी है। इससे किसानों को अपनी भूमि की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो हम तो अपने किसान भाइयों से यही कहेंगे कि नियमित रूप से मिट्टी की जांच करानी चाहिए और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खेती करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज रात 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। इस कार्यक्रम के राज्य स्तरीय प्रसारण में आज आप सुनेंगे आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम शेरी नशिस्त पेश किया जाएगा। प्रतिभागी शायर होंगे श्री

खान आज़मी, श्री सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी, श्री राशिद रहमान, सरिता जैन एवं शगुफ्ता परवीन। कार्यक्रम का संचालन करेंगे श्री अथर शकील। आज शाम 6:45 पर सुनिएगा रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता, जिसके अंतर्गत श्री दीपक कुमार सरोहा जी से बातचीत करेंगे प्रमोद सिंह। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज बातें होंगी निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक आदित्य चोपड़ा के बारे में। उनकी फिल्मों के गीत भी कार्यक्रम में सुनवाए जाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में आज किसान भाइयों से चर्चा का विषय रहेगा मौन वंशों की देखभाल। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है सुनिएगा आज सुबह 9:25 पर। इस कार्यक्रम में आज कलाकार सुनीता सिंह के गाए रुहेल खंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे प्रसारित होगा सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम सैनिकों के लिए का समय रहेगा दोपहर 12:05। श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:18 होने को हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा वहां का सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरण रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विकास का प्रतीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इससे पहले 17 मई को स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच करेगा।
3: आप सब लोग जानते हैं, बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
2: मंत्रिमंडल ने कल दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट।
4: कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चार बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए MOU को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, शिक्षण ब्लॉक तथा नए OPD ब्लॉक के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपए की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
5: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। वाराणसी के जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक

0: की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति पुनः आश्वस्त किया। वहीं पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: लखीमपुर खीरी में कल सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल गोरखपुर में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस प्रतिस्पर्धा में 20 राज्यों की टीमें आज से 10 स्वर्ण सहित 30 पदकों के लिए दावेदारी करने उतर रही हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के परिणाम स्वरूप गोरखपुर स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ ताल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नमित राज और आज इस कार्यक्रम में होंगी कुछ जागरूकता से जुड़ी बातें और कुछ मधुर गीत भी आपको सुनवाए जाएंगे। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ उम्मीदों की किरणें लेकर आती है और जब इन उम्मीदों के साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का कारवां जुड़ता है तो सुबह का ये सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। आज हम बात करेंगे विश्व निष्पक्ष खेल दिवस यानी वर्ल्ड फेयर प्ले डे की। दोस्तों, खेल केवल जीतने का नाम नहीं होता बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान का भी दूसरा नाम है। निष्पक्ष खेल का अर्थ है ईमानदारी के साथ खेलना और खेलने के साथ साथ जो आपका अपोनेंट्स है यानी आपका प्रतिद्वंदी है उसका सम्मान करना भी निष्पक्ष खेल के अंतर्गत आता है। बात भी सही है, एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो जीतने के लिए गलत रास्ता ना अपनाए। आज के समय में हम देखते हैं कि खेलों का स्तर लगातार बढ़ रहा है, खिलाड़ी देश और दुनिया में अपने प्रदर्शन से पहचान बना रहे हैं, लेकिन खेल और दुनिया में अपने खेल और भावना तभी जीवित रह सकती है जब खिलाड़ी निष्पक्षता को सबसे ऊपर रखे। हमने कई बार देखा है कि कुछ खिलाड़ी जीत की चाह में गलत तरीके अपनाते हैं, जैसे अपोनेंट्स के साथ गलत व्यवहार करते हैं या फिर प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं, जो कि गलत है। सही तो ये है कि चाहे हमें हार मिले या जीत, हमारा व्यवहार पॉजिटिव होना चाहिए। जब कोई खिलाड़ी हारने के बाद भी मुस्कुराकर अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाता है तब वो असली खेल भावना का परिचय देता है। श्रोताओं, भारत में खेल संस्कृति तेजी से आगे बढ़ रही है। ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके अलावा क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों में भी विश्व स्तरीय टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेकर हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि युवा खिलाड़ी निष्पक्ष खेल की भावना को अपनाएं। आज का ये दिन हमें ये संदेश देता है कि जीत से ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी। खेल जो है ना, वो हमें जोड़ते हैं श्रोताओं, और खेल की ये भावना हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और निष्पक्षता को अपनाना है। आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं यह मधुर सा गीत। बने रहिए कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: इस ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल सुबह से ही कितनी गर्मी होने लगी ना, आज के न्यूज़पेपर में भी गर्मी को लेकर चेतावनी लिखी हुई है। अब जो लोग घर पर हैं, खैर उन्हें तो महसूस नहीं हो रही होगी ये गर्मी, लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल चुके हैं वो बता सकते हैं कि वास्तव में गर्मी किस लेवल की हो रही है। और गर्मी का मौसम अपने साथ धूप के साथ साथ गर्म हवाएं भी लेकर आता है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा खतरा होता है श्रोताओं लू का। तेज धूप के साथ साथ ये गर्म हवा हमारे शरीर में पानी की कमी पैदा कर देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारा शरीर जो है वो अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाता, और इस कंडीशन को ही हम लू लगना कहते हैं। लू लगने पर तेज बुखार, चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी या बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में विशेष सतर्कता जरूरी है। आजकल के इस मौसम में लू से बचाव बेहद जरूरी है। अब यदि हम कुछ उपाय अपनाएं तो लू के प्रकोप से बचा भी जा सकता है। सबसे पहले तो देखिए, कोशिश कीजिए कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच यदि संभव हो तो घर से निकलो ही मत। लेकिन यदि घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ऐसा करो कि बार बार पानी पीते रहो, इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। पानी के अलावा नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और ORS जैसे पेय पदार्थ शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, तो इनका सेवन बीच बीच में करते रहें, इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप लू से बच सकते हैं। साथ ही हमें ध्यान देना है कि घर से बाहर निकलते समय सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढकें ज़रूर। साथ ही हल्के रंग वाले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को आराम मिले। गर्मियों में हल्का और ताज़ा भोजन करें। यदि हम तला भुना और मसालेदार भोजन का सेवन करेंगे श्रोताओं, तो ये हमारे शरीर में अंदरूनी रूप से प्रभाव डालता है और ऐसे में क्या होता है कि लू हम पर जल्दी असर करती है। इतना सब करने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार, प्यास, कमजोरी या चक्कर महसूस हो तो उसे तुरंत छायादार स्थान पर ले जाएं, पानी पिलाएं और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़े खतरे से बचाती हैं, इसलिए गर्मी के इस मौसम में इन सावधानियों को अपनाएं ज़रूर। चलिए एक बार फिर से कुछ बेहतर सुनते हैं, वापस आएंगे बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आइए श्रोताओं, इस ब्रेक के बाद आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट तिथि विशेष में, जिसमें हम जानेंगे 19 मई के इतिहास में दर्ज कुछ अहम घटनाओं के बारे में। श्रोताओं, 19 मई सन 17

1843 को फ्रांसीसी खगोलशास्त्री जियां पियरे क्रिस्टीन ने सेंटीग्रेड तापमान का पैमाना बनाया था, जो आज भी तापमान मापक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये वही पैमाना है जिसको आज हम सेल्सियस के नाम से जानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने तापमान मापने के तरीके में क्रांति ला दी थी। वर्तमान में अमेरिका, बेलीज और पलाऊ जैसे कुछ देशों को छोड़कर दुनिया के अधिकांश देश तापमान मापने के लिए सेल्सियस पैमाने का ही इस्तेमाल करते हैं। 1959 में 19 मई को ही दो परमाणु रिएक्टरों वाली पहली पनडुब्बी यूएसएस ट्राइटन बनकर तैयार हुई थी। इसमें दो इलेक्ट्रिक परमाणु रिएक्टर थे जो विद्युत जनरेटरों को शक्ति प्रदान करते थे और ये जनरेटर प्रोपेलरों को ऊर्जा देते थे। ट्राइटन 447 फीट लंबी और 37 फीट चौड़ी थी। भारतीय उद्योग जगत के पितामह माने जाने वाले जमशेद जी टाटा का निधन 19 मई को ही साल 1904 में हुआ था। जमशेद जी ने साल 1868 में टाटा समूह की स्थापना की थी, जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा और प्रभावशाली समूह बना। 1903 में उन्होंने भारत का पहला लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस होटल मुंबई में शुरू किया था, जो उस वक्त भारतीयों के लिए गर्व का प्रतीक बना। ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई सन 1934 में हिमाचल के कसौली में हुआ था। बॉन्ड द्वारा गढ़े काल्पनिक चरित्र जैसे कि उपन्यास द रूम ऑन द रूफ का पहाड़ी इलाकों में रहने वाला बालक रश्टी और क्रेजी टाइम्स विद अंकल केन के मजाकिया अंकल केन आज भारतीय बाल साहित्य के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित पात्र बन चुके हैं। द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर, नाइट ट्रेन एट देवली, चेरी ट्री सहित कई सरल, मनमोहक और ज्ञानवर्धक कहानियां लिखकर भारत में बाल साहित्य को एक नई पहचान और ऊंचाई दी। उनकी कई कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। रस्किन बॉन्ड को 1992 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 का पद्मश्री और साल 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मई

पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी, 5 सदस्यीय आयोग 6 माह में पंचायत चुनाव का ओबीसी आरक्षण तय करेगी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पारा 47 के पार, प्रदेश में भीषण लू का अलर्ट जारी, साथ ही दोपहर 12 बजे से शाम 4 के बीच घर से बाहर ना निकलने की सलाह। मुफ्त आधार अपडेट करने की समय सीमा 1 साल और बढ़ी, यूआईडीएआई की अपील, आधार की जानकारी समय पर अपडेट कर लें ताकि डेटाबेस में आपको सही जानकारी आपकी बनी रहे। स्वदेशी गैस डीएमई से खत्म होगी एलपीजी आयात पर निर्भरता, बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच पुणे के विज्ञानियों ने दिखाई उम्मीद की किरण, विज्ञानियों ने डाई मिथाइल ईथर को एलपीजी के विकल्प के रूप में पेश किया। और आईपीएल में हैदराबाद ने चेन्नई को 5 विकेट से हराया, 180 रन का टारगेट 19 ओवर में किया पूरा, ईशान ने खेली 70 रनों की शानदार पारी। श्रोताओं, ये थी कुछ आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब कार्यक्रम में वक्त है आपको एक और गीत सुनवाने का, तो आइए साथ में सुनते हैं ये मधुर गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का आज का ये अंक यही संपन्न करने की अपने साथी नमित राज को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: के साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनवाए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंडी कस्बे

0: से आते हैं जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
5: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगा कर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में CBI ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। CBI का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अमरीकी निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and

0: अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वलीअहद शहजादा हाकोन और नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गहर स्टोर ने भी सरबराह मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तिजारत और इक्तसादी शराकतदारी समझौते के नफाज के बाद दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों के शराकतदारों को चाहिए कि वो भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के नतीजे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने बढ़ती हुई तवानाई की जरूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तय अज़्म और काबिले तजदीद तवानाई में तेजी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीकेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शुरका और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जतमआब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वजीर आजम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वजीर आजम के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिले तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकतदारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाली यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभाजाती ताउन में मददगार साबित होगी। साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों पर तवज्जो दी जाएगी उनमें तकनीक और इख्तिरा, पायदारी, काबिले तजदीद तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकतदारी समझौते के निफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमायाकारी के राब्तों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत 19 अरब डॉलर है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस खित्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्यालात का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वज़ीर आज़म के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता गोड़बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी इटली की वजीर आजम मेलोनी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत, पुरेतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है।

0: कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अलावी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हम मनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें की। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निजाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जाँच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसानात की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीजन में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाब्तगियों और काले धन को जायज बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर आर एन रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर एफआईआर, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है जिसमें गुवाहाटी को मरहला 1 के तहत नामजद किया

0: गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला एक में शामिल हैं, जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला दो में शामिल करने की तजवीज़ है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मशावरत के लिए तकसीम किया है, जिसमें शहरी आबी ट्रांसपोर्ट को हतमी शक्ल देने के कौमी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। भारत के रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों की जानिब से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR बरकरार रखने की ज़रूरत खत्म कर दी है। IFR इजाफी बफर होता है जो सरमायाकारी की कदर में गिरावट से तहफ़ के लिए कायम किया जाता है। हुकूमत ने ऑनलाइन गर्दिश कर रहे उन दावों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया था कि हुकूमत मंदिरों में रखे सोने के बदले मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। हकाइक की जांच करने वाली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। PIB ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फर्जी दावों से दूर रहें और मुस्तनद मालूम के लिए हमेशा सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात की पेशगोई की है। आज दिन में साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मनसूबा बंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गए हैं, जबकि मुतल्लिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायां जगह दी है। रोजनामा इंकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल के दरमियान भारत और यूरोप के ताल्लुकात सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। वहीं अखबार ने ईरान पर हमले की तैयारियों के तेज होने से मुतालिक खबर को सफ़े अव्वल की चहसुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि मुजाकिरात में तातुल के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA मुआहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरेतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में RGKR मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स की पहली पेशकश फिल्म धनवान से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में हम आपको सुनवा रहे हैं। संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का है और इस गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म धनवान का ये खूबसूरत सा गीत। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया था हृदयनाथ मंगेशकर ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और गायक कलाकार मुकेश की आवाज़ में फिल्म मिलन से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

लता मंगेशकर और गायक कलाकार मुकेश के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिलन का ये गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह!
2: फसा! अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म शिकार से। संगीत शंकर जयकिशन का है और इस गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आइए श्रोताओं, इस ब्रेक के बाद अब कार्यक्रम गोल्डन हिट्स को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत, जिसे संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे जीवन साथी का ये खूबसूरत सा गीत। आर डी बर्मन का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। कार्यक्रम का आज का ये अंतिम गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म चलते चलते से। अमित खन्ना के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है बप्पी लहरी ने।

0: चलते चलते फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में जिले की हलचल पेश की जाएंगी।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का।
2: बस्ती जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया। जिले में गौशाला के रखरखाव और गर्मी में गौवंश की सुरक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम के अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में हर गौशाला के लिए नोडल अधिकारी तय किए गए। बस्ती में गौशालाओं की बदतर स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कृतिका जोशना ने विभागीय अधिकारियों और सभी शासकीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती कृतिका जोशना ने बताया,
3: हमने सभी गौशालाओं को लेकर के एक विस्तृत बैठक की। इसमें हमने कुछ नए नोडल अधिकारी भी बनाए हैं। मीटिंग में हमने सबसे पहले तो जितने भी जीओ हैं उनसे सभी लोगों को अवगत करा दिया। इनको ये भी बताया कि जब ये निरीक्षण करने जाएं तो किस प्रारूप पे इनको निरीक्षण करना है, एज वेल एज गौशाला में इनको क्या देखना है। उसी के साथ गर्मी से बचाव के लिए सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
2: राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में प्राचार्य डॉक्टर विजय प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एवं जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह ने छात्रों को एकाग्रचित होकर पढ़ने तथा मोबाइल से दूरी बनाकर पुस्तकों से जुड़ने हेतु प्रेरित किया। सम्मान समारोह में हाई स्कूल और इंटर के मेधावी 10 छात्रों व गृह परीक्षा में मेधावी छात्रों को प्रशस्त पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मृत्युंजय कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम को मूर्त रूप अजय प्रकाश लाल व अमित यादव द्वारा दिया गया। बस्ती जिले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा खाड़ी देशों में मौजूद हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन

0: ऊर्जा की बचत की गई अपील पर मंडल के ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से देश हित में एवं मौजूदा हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की हर एक बूंद की बचत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। इसको लेकर अपने निजी वाहनों को छोड़ बस, टैक्सी व साइकिल से ऑफिस आने की सलाह दी गई, जिसके क्रम में संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस निमित्त शासकीय वाहन का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा अपने आवास से साइकिल द्वारा कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्यों का संपादन किया गया एवं ईंधन की बचत के लिए मंडल के ग्राम विकास विभाग से संबंधित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की गई कि वे देश हित में कम से कम वाहनों का प्रयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करें। बस्ती जिले में तहसील जूसो में फरियादियों की लगी भीड़, सदर तहसील में 90 शिकायतों में 6 का निस्तारण मौके पर कराया गया। बस्ती जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग एवं प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ शनिवार को विक्रम ज्योत में हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें पहले दिन 7 तथा दूसरे दिन 4 सत्र सम्पन्न होंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने प्रदेश के सम्मुख चुनौतियों एवं निदान के हमारे प्रयास विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत की बढ़ती शक्ति से घबराई देश विरोधी ताकतें सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दूसरे सत्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी वैचारिक अधिष्ठान विषय पर अपने विचार रखे। बस्ती में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कहा कि गौ आश्रय को अब 5 से 7 हेक्टेयर में निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पशुपालकों की संख्या निरंतर घट रही है, लोगों को पशुपालने के लिए निराश्रित पशुओं के देखभाल के लिए जन आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार गौ सेवा को केवल सांस्कृतिक दायित्व नहीं एक पवित्र के रूप में स्वीकार करते हुए सतत कार्य कर रही है। बस्ती जिले के सलटौआ विकास खंड में गरीबों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली, अब महंगे मैरिज हॉल की टेंशन खत्म होगी। यहां वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ मीटिंग और सरकारी आयोजन भी हो सकेंगे। ये बहुउद्देशी भवन सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गरीब परिवारों के आत्मसम्मान की नई नींव है। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने बताया,
1: मुझे लगता है जनपद ही नहीं प्रदेश का पहला ऐसा विकास खंड होगा जहां ऐसा भवन का निर्माण कराया जा रहा है जहां गरीब परिवार सिर्फ इसके मेंटेनेंस का कॉस्ट देकर अपने बेटियों की शादी यहां पर ऑर्गेनाइज करा सकते।
0: बस्ती जिले की जिलाधिकारी कृतिका जोशना द्वारा जनपद में विभिन्न विकास खंडों के परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में साफ सफाई, छात्र उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था तथा मिड डे मील की गुणवत्ता का गहनता से परीक्षण किया गया। निरीक्षण की शुरुआत विकास खंड बनकटी स्थित पीएम श्री विद्यालय देवमी से हुई। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। वही जिलाधिकारी कम्पोजिट विद्यालय डाडीडीहा पहुंची, जहां कक्षाएं संचालित होती पाई गयी। जिलाधिकारी ने बच्चों से संवाद कर उनकी शैक्षिक गुणवत्ता और परीक्षण किया तथा आंगनबाड़ी में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर प्रतीक्षा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान मिड डे मील व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई। बच्चों को परोसी गई रोटियां मोटी एवं जली हुई पाई गई। भोजन की खराब गुणवत्ता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापिका अनीता द्विवेदी और रसोईया के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। बस्ती जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर फीटा काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जेल में महिलाओं द्वारा बनाए गए सजावटी सामानों की न्यायमूर्ति ने सराहना भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सुलह समझौता पर आधारित मामलों का निस्तारण होता है। बस्ती जिले में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि 2022 की तरह 2027 में भी समाजवादी पार्टी का बुरा हस्त होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में करप्शन की समाप्ति का जनादेश है, बंगाल में गुंडागर्दी, बंगाल में हिंसा का रोहिंग्या और बांग्लादेशी की जो बड़ी मात्रा में इसी बंगाल के रास्ते से देश में हमारी संपत्तियों पर जिसका अधिकार भारत के नागरिकों का था उस पर आज बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ केवल हमारे देश के लोगों का कब्जा होगा।
2: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार सिंह का।
3: सोनभद्र में विगत दिनों आंधी तूफान से बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हुई है। आंधी और तूफान के नुकसान का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत आंधी तूफान में हो गई, जबकि दर्जन भर से ऊपर लोग घायल हुए। आंधी तूफान के चलते अभी भी कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था ठप ही पड़ी है। जगह जगह बिजली के पोल उखड़ गए हैं, जिसे लगातार सुव्यवस्थित किया जा रहा है। आम के फल से लदे वृक्षों के फल बड़े पैमाने पर गिर गए हैं। जिलाधिकारी ने आधी तूफान में मृतकों के परिजनों को तत्काल 4 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। सोनभद्र में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गुलाब जामुन को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। अब तक ऊर्जा के क्षेत्र में पहचान रखने वाले सोनभद्र को अब गुलाब जामुन मिष्ठान के रूप में भी जाना जाएगा। परंपरागत कारीगरों को प्रोफेशनल कारीगर बनाने के लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति

0: सुधारने के लिए सरकार लोन भी उपलब्ध कराएगी, जिससे उनके हुनर को बढ़ावा मिल सके। जनपद सोनभद्र में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को उद्यम के क्षेत्र में नई उड़ान मिल रही है। जनपद के करीब 2000 युवाओं को ब्याज मुक्त 100% धनराशि दी गई है। सोनभद्र में 5 दिवसीय अंश निर्धारण का विशेष अभियान चलाया गया। राजस्व विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान में जनपद की चारों तहसीलों को मिलाकर लगभग 20,000 से ज्यादा खाता धारकों के अंश का निर्धारण किया गया। जनपद सोनभद्र जो पूरे देश को विद्युत आपूर्ति करता है, यहाँ की बिजली उत्पादन से देश की राजधानी दिल्ली को रोशनी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य की जनपद के ही 834 मजरों को आज तक आजादी के लंबे अंतराल के बाद भी बिजली आपूर्ति नहीं की जा सकी है। नवागत जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने इस तरफ विशेष अभियान के तहत हर हाल में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने के विशेष निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य की प्रत्येक सप्ताह में खुद मॉनिटरिंग अपने पास रखी है। जिलाधिकारी के सख्त आदेश से बिजली विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिन मजरों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो अति दुरूह क्षेत्र है। ऐसे में इस अभियान को अमली जामा पहनाना काफी परेशानियों भरा है। सोनभद्र में विगत माह भर के अंदर में 2 दर्जन से अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो गई हैं। आए दिन ओवरलोड ट्रकों के संचालन से दुर्घटनाओं का घटित होना जनपद के लिए अब आम बात हो गई है। परिवहन विभाग के साथ साथ खनन विभाग हर हाल में ओवरलोड वाहनों के संचालन को चालू रखना चाहता है। इसके लिए बाकायदा खनन और परिवहन विभाग अंदर खाने से अवैध वसूली करते हैं। जनपद सोनभद्र में प्रारंभ हुए जनगणना के कार्य में सरकारी अमला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। 7 मई से प्रारंभ हुई जनगणना के प्रथम दिवस पर ही कुल 19,984 लोगों ने स्वगणना कर पूरे प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक गणना कर प्रदेश का प्रथम जिला बनने का गौरव हासिल किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के कठिन प्रयास से इस अभियान को अमली जमा पहनाया जा सका है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी देश की जनगणना उस देश की आगामी विकास की धुरी होती है। जनगणना के आधार पर ही विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाता है। जनपद में हाल के दिनों में तेज धूप और लू से आम जन जीवन प्रभावित है। तेज धूप का आलम यह है कि सुबह 9 बजे के बाद से लोग घर में सिमट जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा छा जा रहा है, जो देर शाम होने के बाद ही सड़कों पर रौनक नजर आ रही है। सर्वाधिक परेशानी जानवरों पंछियों को देखने में मिल रही है। हालांकि गौशालाओं में पीने के पानी की विशेष व्यवस्था के निर्देश हैं, जबकि नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में पीने के पानी के लिए विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए गए हैं। हर ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर पेयजल के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी जगह जगह शरबत के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार सुनीता सिंह के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं कलाकार सुनीता सिंह के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार सुनीता सिंह के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन है दिव्यम कंडवाल का।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूं इशिका कौशिक
1: और मैं दिव्यम कनवार।
0: और जैसा कि आप जानते ही हैं, बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: श्रोताओं, कुदरत जब अपना रुख बदलती है तो वह किसी को बताकर नहीं आती। चाहे वो भूकंप के झटके हो, नदियों का बढ़ता जलस्तर हो या अचानक लगने वाली आग, मुसीबत कभी भी दस्तक दे सकती है।
0: इसलिए बात आसपास की में हमारा आज का विषय है आपदा प्रबंधन। आज हम जानेंगे कि हमारा प्रशासन कुदरती कहर से निपटने के लिए कितना सजग है। साथ ही सबसे जरूरी बात, आप और हम आपदा के समय अपनी जान बचाने के लिए कितने जागरूक हैं।
1: श्रोताओं, जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग अर्थात रुहेलखंड क्षेत्र में स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण और भौगोलिक रूप से विविधता से परिपूर्ण जिला है। बिजनौर में उत्पन्न होने वाली भौगोलिक आपदाओं की बात करें तो पहला है मानसून में बाढ़। पहाड़ों के ठीक नीचे होने के कारण बिजनौर जल भराव और अचानक आने वाली बाढ़ के प्रति बेहद संवेदनशील, जिस कारण जल स्तर बढ़ जाता है और हर साल कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं।
0: दूसरा पहलू है भूकंपीय संवेदनशीलता। भौगोलिक दृष्टि से बिजनौर हिमालय फॉल्ट लाइनों के करीब है। यह पूरा जिला सीज़मिक जोन 4 में आता है, जिसका मतलब है कि यहाँ मध्यम से उच्च तीव्रता के भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है।
1: श्रोताओं, तीसरा पहलू है भूमि कटाव। नदियों के तेज बहाव और मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण विशेषकर गंगा और रामगंगा के किनारों पर बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन होता है।
0: भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को तो हमने जाना, परंतु इससे निपटने हेतु हमारा प्रशासन कितना तैयार है, इस बारे में हमने बातचीत की DDMA अर्थात डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से। आइए उनको सुनते हैं। श्री प्रशांत श्रीवास्तव, जिला आपदा विशेषज्ञ। सर, आप हमें बताइए कि आपदा प्रबंधन विभाग किस तरह से कार्य करता है।
2: देखिए, बेसिकली आपदा प्रबंधन विभाग जिले में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करते हुए आपदा के समय कैसे बचा जा सकता है, इस कार्य को हम लोग करते हैं और आपदा प्रबंधन इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। सभी विभागों के साथ NDRF, SDRF, पुलिस, PAC इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए आपदा प्रबंधन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वृहद रूप से जनपद में हम लोग कार्य करते हैं।
1: सर, मानसून आने वाला है, क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की क्या तैयारियां हैं?
2: देखिए, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिजनौर पूरी तरीके से तैयार है। इस वर्ष की कार्य योजना को भी सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके पूर्ण कराई जा रही है। विगत IMD के पूर्वानुमान अनुसार विगत वर्ष से इस वर्ष कम वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है। फिर भी हमारे यहाँ पे सभी संवेदनशील स्थलों का चयन कर लिया गया है। कौन से गाँव प्रभावित होंगे, उस गाँव में कितनी जनसंख्या प्रभावित होगी, कितने फसल प्रभावित होंगे, कितने पशु प्रभावित होंगे, इन सभी स्थलों का हम लोगों द्वारा चयन कर लिया गया है और तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसकी कार्य योजना बनते ही और 15 जून के बाद से बाढ़ काल को हम लोग घोषित करते हुए कार्य अपना शुरू कर दिया जाएगा।
0: सर, आपदा के समय NDRF, SDRF, DDMA और स्थानीय पुलिस के बीच किस तरह से तालमेल बैठाते हैं?
2: देखिए, तहसील के डिमांड अनुसार हमें जिस भी गाँव में आवश्यकता पड़ती है, जिस भी गाँव में हमें लगता है कि लोग फंसे हुए हैं, जीव जंतु फंसे हुए हैं, तो हम NDRF और SDRF की डिमांड करते हैं। SDRF हमारी जो है मुरादाबाद से आती है और NDRF हमारी 8th बटालियन गाजियाबाद से आती है, और उनको हम जिले में बुलाकर अपने स्थानीय पुलिस और स्थानीय PSC के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन करा करके रेस्क्यू कार्यक्रम कराते हैं और उनसे हम जितने भी लोग फंसे होते हैं उनको रेस्क्यू करा करके बाहर निकालने का कार्य करते हैं।
1: सर, जिले में कुछ संवेदनशील ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं और साथ ही राशन किट्स का कितना वितरण किया गया है?
2: हम हर साल बाढ़ काल के बाद हम स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स कराते हैं, जिसमें NDRF की टीम और SDRF की टीम जो वेल ट्रेंड होती है वो आकर के स्कूल्स में और जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। वो टेक्निक्स बताते हैं कि कैसे उस चीज़ को आप टैकल कर सकते हो। तो ये चीज़ें NDRF, SDRF की टीम द्वारा निरंतर हर वर्ष किया जाता है। चूंकि भूकंप सिस्मिक जोन 4 में होने की वजह से बिजनौर वो हाईली सेंसिटिव हो जाता है, तो हम भूकंप पे भी एक मॉक साइज हर साल कराते हैं। राशन किट की बात रही तो विगत वर्ष 2500 राशन किट बांटे गए थे, तो वो इस वर्ष बाढ़ के ऊपर डिपेंड करता है कि राशन किट कितनी दी जानी है, वो तहसील डिसाइड करेगी, वो तहसील के डिमांड के ऊपर ही होता है। खैर, हमारी सारे प्रोसीजर्स पूरे हम लोग कर रहे हैं और 15 जून से पहले पहले सारे प्रोसीजर करके और हम लोग बाढ़ के लिए रेडी हो जाएंगे।
1: सर, अगर किसी क्षेत्र में अचानक कोई प्राकृतिक या मानवीय आपदा आ जाए तो उस संबंध में कोई भी आपसे किस तरह संपर्क कर सकता
2: है? जिला अधिकारी कार्यालय बिजनौर के अंतर्गत इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC के नाम से यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसमें 4 टेलीफोन नंबर है, जिसका नंबर है 01342262031 और 01342262295 96 और 97। ये 4 नंबर हमारे एक्टिवेटेड है, जहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी लगी रहती है और ये ओपन भी रहता है और यहाँ पुलिस की भी ड्यूटी लगाई रहती है। तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं किसी भी आपात स्थिति में, अगर आपको लगता है कि आपको आवश्यकता है तो आप यहाँ पे संपर्क करके और प्रशासन से मदद ले सकते हैं।
1: अधिकारियों ने बहुत ही सही बात की, आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही जानकारी से जान माल के नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है इमरजेंसी किट। आखिर वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपातकालीन परिस्थितियों में आपके पास होनी चाहिए, आइए जानते हैं।
0: आपदा के समय एक इमरजेंसी किट जीवन रक्षक साबित हो सकती है। इसमें

0: साफ पानी, सूखा भोजन, फर्स्ट एड बॉक्स, जरूरी दवाइयाँ, टॉर्च, मोबाइल चार्जर, महत्वपूर्ण दस्तावेज और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स अवश्य होने चाहिए। तैयारी और सतर्कता ही आपदा से सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है।
1: जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो तहसील प्रशासन सबसे आगे खड़ा रहता है।
0: आइए जानते हैं आशुतोष रामप्यारे जायसवाल, SDM नजीबाबाद से।
2: आपदा में दो तरह की आपदाएं हैं, एक है दैवीय आपदा जिसमें बाढ़, आग, चक्रवात, कोहरा और शीतलहर, ओलावृष्टि, बादल फटना, ये सब चीजें आती हैं। और अगर कोई मृतक हो जाता है इसमें तो उसको 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है, और अगर किसी का अंग अथवा आंखों बेकार हो जाती है उसमें तो उनको सहायता दी जाती है, और उसमें किसी को गंभीर चोट लग जाती है जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है उसके लिए भी इसमें सहायता प्रदान की जाती है। अगला है कृषक दुर्घटना। कृषक दुर्घटना में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके पास अगर 5 बीघा जमीन है तो उनको मुआवजा दिया जाता है। और मत्स्य पालन में भी है, आंशिक क्षतिग्रस्ती होती है तो उसके लिए भी मुआवजा दिया जाता है। पशु मृत्यु जब हो जाती है जैसे भैंस, गाय, ऊंट, मिथुन आदि, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी 30,000 प्रति पशु मुआवजा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारी सरकार है वो पूरी तरह से लोगों की मदद करना चाहती है, और आपके माध्यम से मैं जागरूक करना चाहता हूँ लोगों को कि उनको पता हो कि मतलब उनकी क्या क्या सुविधाएं उनको सरकार दिलवा रही है। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, पर क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर तैयार हैं? क्या आपने अपने बच्चों को डिजास्टर ड्रिल के बारे में बताया?
1: आपदा प्रबंधन के विषय में जानकारी और जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ हैं एक और जागरूक नागरिक, आपका नाम?
3: आयुष राजपूत।
1: आयुष, ग्राम देहात में जैसे कभी बाढ़ की समस्या होती है तो उससे निपटने के लिए आप क्या तैयारी करके रखते हैं?
3: सबसे पहले तो बहुत ये पदार्थ मतलब जरूरी रहते हैं, जैसे भोजन, जैसे अनाज, गेहूँ, काफी सारी चीज सेफ जगह रखते हैं, और मतलब यह छत पर जिससे पानी ना पहुंच पाए। और फिर जैसे कटान, जैसे मिट्टी बहने लगती है उसके लिए कट्टे में मिट्टी भर के उसे साइड में जमाते हैं जिससे कटान ना हो जाते और जिससे मिट्टी ना टूटे, बस ज्यादा करते यही करते हैं।
1: कभी बाढ़ या अन्य कोई आपदा आती है तो उस समय आपका सबसे पहला प्रयास क्या होता है?
3: कि जैसे छोटे बच्चे या बूढ़े लोग उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, और जैसे काफ़ी सारे पशु जानवर उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, बस ज़्यादा करते यही, और अनाज को अच्छे स्थान पर ले जाना।
0: आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से मिली जानकारी से आप अपने आसपास जागरूकता जरूर लाएंगे। साथ ही भूलिए नहीं, किसी भी अवांछित घटना के लिए प्रशासन आपके साथ तैयार खड़ा है।
1: जी हाँ, आपातकालीन परिस्थितियों में आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से 1078 पर अथवा जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र बिजनौर से 1077 पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
0: साथ ही 112 को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए, क्योंकि मुसीबत में ये एक नंबर ही आपको हर विभाग से जोड़ देगा। याद रखिए, आपकी सजगता ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।
1: श्रोताओं, आज के लिए बात आसपास की में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे अर्थात दिव्यम कंडवाल
0: और इशिका कौशिक को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद।
1: नमस्कार।

बात आसपास की। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफ़र।

0: नमस्कार श्रोताओं, भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंक लेकर हाजिर हैं हम दोनों आपके साथ। मैं हूं विश्वास त्रिवेदी
1: और विश्वास जी के साथ मैं नमित राज। दोस्तों, सुहाना सफर में हम हर बार समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और किसी एक खास वर्ष की यादों को फिर से अपने श्रोताओं के साथ साझा करते हैं। श्रोताओं, आज हम चलेंगे आपके साथ साल 2020 के सफर पर।
0: एक ऐसा साल जिसने दुनिया को बहुत कुछ

0: रेडियो के माध्यम से मनोरंजन तो हो ही रहा था, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था और सोशल डिस्टेंसिंग 2020 की पहचान बन गया था। लेकिन इसी साल लोगों ने एक दूसरे का साथ देना भी सीख लिया था।
1: जी हाँ श्रोताओं, साल 2020 की शुरुआत देखिए बड़े उत्साह के साथ हुई थी, नए सपने थे लोगों में, नई उम्मीदें थी, लेकिन मार्च आते आते विश्वास जी पूरी दुनिया कोरोना

0: महामारी की चपेट में
1: हाँ
0: आ गई थी। दरअसल साल 2020 की शुरुआत CAA और NRC के विरोध के साथ शुरू हुई थी, लेकिन फरवरी आते आते तपिश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दिल्ली इसकी चपेट में आकर झुलस गई।
1: हाँ जी नमित, 23 फरवरी से 29 फरवरी तक दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में दंगा फैल गया। इस दौरान 53 लोगों ने जान गंवाई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। इस दौरान कड़ाके की ठंड के बीच शाहीन बाग में सैकड़ों महिलाएं CAA और NRC के विरोध में महीनों तक सड़कों पर बैठी रहीं।
0: दिल्ली दंगों की आंच से देश उबरने के लिए होली के रंगों का सहारा ले ही रहा था कि पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय बन चुके कोरोना वायरस ने भारत में भी अपना कहर बरपाना शुरू किया।
1: वैसे तो देश में कोरोना के मामले जनवरी 2020 के दौरान ही सामने आए, लेकिन 17 मार्च को कर्नाटक में पहली मौत दर्ज की गई। इसके बाद कोरोना के खूनी पंजों में भारत भी फंस गया और अब तक देश में करोड़ों से ज़्यादा लोग इस खौफनाक वायरस की चपेट में आ चुके थे। वहीं करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके थे।
0: श्रोताओं, राम मंदिर के शिलान्यास ने धार्मिक हर्ष को चरम पर पहुंचाया तो कोरोना के खौफ के बीच सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल जाते प्रवासियों का दर्द ताउम्र सहलता रहे।
1: साल 2020 का वो मंजर जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। लोग भूख से बिलख रहे थे तो कहीं प्यास से, तो कहीं पैदल चलते चलते, तो कहीं सब कुछ होते हुए भी लोग मरने लगे थे।
0: जी हाँ श्रोताओं, साल 2020 में कलयुग का उग्र रूप देखने को मिला था। ये साल लोगों के जीवन में हर प्रकार का दर्द लेकर आया था। कोरोना के चंगुल से देश को बचाने के लिए 25 मार्च से 21 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। उस दौरान ट्रेन, बस और हवाई जहाज के साथ साथ आम जनजीवन भी थम गया था।
1: मई महीने की 8 तारीख ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर सो रहे 16 मजदूरों पर मालगाड़ी गुजरने के हादसे ने इस दर्द को और भी बढ़ा दिया था।
0: जी हाँ, वास्तव में ये एक हृदय विदारक हादसा था। विश्वास जी, इस दौरान लोग घरों में रहे लेकिन हौसले बुलंद रहे। डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस और सफाई कर्मी उस समय के असली हीरो बनकर सामने आए थे। श्रोताओं,
1: इसी दौर में लोगों ने परिवार के साथ समय बिताना सीखा। रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों की वापसी हुई। दूरदर्शन फिर से घर घर में चर्चा का विषय बन गया। रेडियो ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: और विश्वास जी, इस कठिन दौर में संगीत हमेशा की तरह लोगों का साथी बना। तो आइए हम भी अपने श्रोताओं के साथ सुनते हैं साल 2020 की चर्चित फिल्म लूडो का ये गीत, अरिजीत सिंह और साशा तिरुपति की आवाज में।

0: अरिजीत सिंह और साशा तिरुपति के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म लूडो का ये खूबसूरत सा गीत। और इस गीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं विश्वास जी। साल 2020 में भारत ने श्रोताओं कई उतार चढ़ाव देखे, ऐतिहासिक फैसले और घटनाएं भी देखी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया जिसने करोड़ों लोगों की भावनाओं को छुआ।
1: हाँ नमित, 2020 में अयोध्या में राम मंदिर का ऐतिहासिक शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ। ये तारीख थी 5 अगस्त 2020 और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। चांदी की ईंट रखकर भूमि पूजन किया गया था।
0: विश्वास जी, नई शिक्षा नीति 2020 भी इसी साल लागू की गई थी जिसमें शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव भी किए गए। साल 2020 में आईपीएल के बारे में अगर हम जिक्र करें तो पहली बार भारत से बाहर यूएई में खेला गया। हालांकि मैदान खाली थे कोविड की वजह से, लेकिन दूरदर्शन और रेडियो ने दर्शकों का उत्साह कम नहीं होने दिया। खेलों की जानकारी लगातार दर्शकों तक पहुँचाई।
1: और नमित, इसी साल भारत ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र भी तो दे दिया। लोगों ने लोकल वोकल की तर्ज पर भारत में निर्मित उत्पाद को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए।
0: बिल्कुल कदम बढ़ाए। तो विश्वास जी, इस साल की एक घटना ये भी रही थी

जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत थे उनका निधन भी इसी साल हुआ था। तो अब जो कार्यक्रम में हम गीत सुनवाने जा रहे हैं वो हमने उसी अभिनेता का की अंतिम फिल्म का गीत लिया है। फिल्म का नाम है दिल बेचारा और ये जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये सुशांत सिंह राजपूत और संजना पर फिल्माया गया था। सुशांत की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं श्रोताओं, और फिल्म का ये गीत भी हर किसी की जुबां पर था।

0: अरिजीत सिंह और साशा तिरुपति की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल बेचारा का एक खूबसूरत सा गीत।
1: साल 2020 में सिनेमा घरों पर ताले लग गए थे। महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स ने मनोरंजन की दुनिया को नया रास्ता दिया। कई बड़ी बड़ी फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और दर्शकों ने घर बैठे फिल्मों का आनंद लिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं विश्वास।

0: जी, इसी साल कई कलाकारों को हमने खोया भी। ऋषि कपूर और इमरान खान जैसे महान कलाकारों के निधन ने फिल्म जगत को गहरा दुख दिया, लेकिन जिंदगी चलती रही और संगीत भी। श्रोताओं, जीवन में हर मुश्किल वक्त कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है। साल 2020 ने भी हमें ये सिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, इंसान का हौसला उनसे बड़ा होता है।
1: हाँ भाई, ये बात तो 16 आने सही कही आपने। साल 2020 में लोगों ने ऑनलाइन काम करना सीखा, बच्चों की पढ़ाई मोबाइल और कंप्यूटर पर होने लगी। वर्क फ्रॉम होम शब्द हम सभी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया।
0: विश्वास जी, देखिए, वर्क फ्रॉम होम की आपने बात की है और ये अभी तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कितने फ़ायदे हैं इसके, वो हम अब आज तक भी देख रहे हैं। और देखिए, बातों बातों में पता नहीं चल रहा है कि वक्त जो है धीरे धीरे निकलता जा रहा है। और एक और गीत अभी हमें कार्यक्रम में शामिल करना है, तो क्यों ना एक गीत श्रोताओं को सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल, आइए सुनते हैं साल 2020 की एक चर्चित फिल्म सड़क टू का एक बेहतरीन गीत। गायक हैं जुबिन नौटियाल, संगीत दिया है जीत गांगुली ने और बोल हैं रश्मि विराग के।

0: श्रोताओं, ये था हमारा आज का सुहाना सफ़र कार्यक्रम का ये अंक, जिसमें हमने याद किया साल 2020 को, जो था संघर्षों, संवेदनाओं और उम्मीदों से भरा एक अनोखा साल। आपको कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा।
1: तो अब आज का सुहाना सफ़र कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी विश्वास द्विवेदी और
0: विश्वास जी के साथ मुझे यानी नमित राज को दीजिएगा अनुमति।
1: कल फिर मिलेंगे एक नया अंक लेकर, नई यादों और नए सफर के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफ़र। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हैं आपके साथ आपका अपना साथी नमित राज
1: और मैं विश्वास त्रिवेदी।
0: तो हम दोनों इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे तक आपका मनोरंजन करने वाले हैं। आपके भेजे गए पत्रों के आधार पर जो फरमाइशी गीत की फरमाइश आपने लिख भेजी है हमें, तो वो फरमाइशी गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं आपके नाम के साथ। कार्यक्रम का जो भी श्रोता हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए हम अपने कार्यक्रम का नंबर बता देते हैं विश्वास जी।
1: 9457078288 9457078288।
0: तो श्रोताओं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप संदेश भेजकर अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। और चलिए, कार्यक्रम की जो पहली फरमाइश हमें लिखकर भेजी है वो फरमाइश लिखकर भेजी है विश्वास जी फिल्म कल की आवाज़ के गीत की। कुमार सानू और आशा भोसले के स्वर में ये गीत है और इस गीत की फरमाइश हमें हमारे किन श्रोताओं ने की है।
1: मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रशीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन। और ये मैसेज हमें मिला है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू टप्पू, मौला हलवाईयान शेरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्साब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ये मैसेज मिला है मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी।
0: जसपुर उत्तराखंड से इसी गीत की ख्वाहिशमंद है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी।

0: रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा और नूर। वड़िंगखेड़ा पंजाब से ये संदेश हमें मिला है मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा का। गुजरात गांधीग्राम से आप हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान।
1: और ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद रिफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। फिल्म इसी फिल्म से सुनना चाहा है पसंद उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, लगान पंडरिया, छत्तीसगढ़ से ये मैसेज हमें भेजा है। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी। तो आइए,
0: तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म कल की आवाज़ का ये खूबसूरत संगीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से सुन रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है फिल्म अपनापन के गीत की। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। एक अन्य मैसेज हमें मुंदीचक भागलपुर से किया है दिलीप कुमार सोनी ने, तो आपका संदेश भी कार्यक्रम में शामिल हो चुका है।
2: ये मैसेज मिला है लाल माता सुदामा नगर लाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा श्रीमती मनोहरबाई बागरी प्रभु दयाल बागरी कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और परांजल राय। एक मैसेज मिला है ग्राम जुजैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी परवीन जहां निशात आयशा आलिया साइना महफिस और मोहम्मद अरफान अदीबा नूर। ये मैसेज मिला है ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और सूरज कुशल वर्मा का। कुम्हार गली कोलम गांव से पांडु चंदन उषा चंदन रानी चंदन प्रतीक्षा चंदन अभिषेक चंदन सार्थक चंदन पृथ्वीश चंदन संतोष चंदन और पांडु रंग कुम्हार।
1: वैष्णव कॉलोनी सनावत से फरमाइश करता है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से फरमाइश करता है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली। गांव नथाना पंजाब से फरमाइश करता है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता।
2: संघमित्र श्रोता संघ वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता। ये मैसेज मिला है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई, जान भाई, राज कुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश चक्ता। ये मैसेज है दत्रेंगी पाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्भी।
1: और इस गीत की अंतिम फरमाइश श्रोताओं चंडीगढ़ से हमें मिली है। फरमाइशकर्ताओं के नाम है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, तो आइए साथ में सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म अपनापन से ये गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आई श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में अब आज की अंतिम फरमाइश देख लेते हैं कि कौन से गीत की है। ये अंतिम फरमाइश हमें लिख भेजी है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। आपने सुनना चाहा है फिल्म गुमराह का गीत। महेंद्र कपूर की और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत है, तो ये गीत हम आपको सुनवाएं।

0: लेकिन साथ में कुछ और मैसेजेस शामिल कर लेते हैं। एक मैसेज हमें जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े जी ने भी भेजा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा।
1: बिजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। ये मैसेज हमें मिला है करण वीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से। लिखने वाले हैं परम सिंह चौड़ा, मनजीत कौर चौड़ा, करण वीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिम्मू, एकम दमन और अभिजोत। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। और ये मैसेज हमें मिला है ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक का। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से ये लिखते हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, समस्त राजे परिवार।
0: सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना का मैसेज भी हमें कार्यक्रम में मिला है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इसी गीत को सुनना चाहते हैं। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। और इस गीत की फरमाइश के लिए जो अंतिम मैसेज हम शामिल कर रहे हैं वो है फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, जुबैर, मुकराम, नोमान, फुरकान, जाकिर और फाजिल। तो लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म गुमराह से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म सड़क से। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की, गीत समीर का और धुन नदीम श्रवण की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, इसे हमने लिया है फिल्म अंदाज से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, समीर ने गीत लिखा है और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। तो लीजिए पेश है ये गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: नजरों ने जब नजरों से इकरार कर लिया, दिल ने मोहब्बत का पहला खत तैयार कर लिया। दो दिल जब एक दूसरे की धड़कनों को समझने लगे, हर मुलाकात में मुस्कुराहट, हर बात में प्यार झलकने लगे, तो समझ लीजिए कि शुरू हो चुकी है एक खूबसूरत प्रेम कहानी। आइए सुनते हैं फिल्म आखिरी रास्ता का ये गीत, एस जानकी, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
3: One.

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। तेरी आवाज में जैसे सावन की फुहार बसती है, हर मीठी धुन में जैसे मोहब्बत हंसती है। प्यार जब दिल की धड़कनों में उतर जाए तो प्रेमी अपनी महबूबा की हर अदा में खूबसूरती ढूंढने लगता है। उसकी बातों में मिठास, उसकी हंसी में जादू और उसकी आवाज में कोयल सी मधुरता महसूस होने लगती है। आइए सुनते हैं बेटा फिल्म से अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाजों में ये गीत। समीर ने गीत लिखा है और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

फूलों की महक हवाओं से रवानी लेकर वो आई है, तो साथ अपने जवानी लेकर, जो दिल की बगिया में मोहब्बत की खुशबू बिखेर देती है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म लाल दुपट्टा मलमल से अनुराधा पुडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

0: कली।
1: इसी के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये नचिकेताबाद केंद्र है। सवेरे के 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।

0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का, और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
1: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
1: जी,
0: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है।
1: जी, एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
1: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
1: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
0: जी,
1: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है, और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
1: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओ, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
1: जी,
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृषि, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: X, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
0: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 1-800-00-44-55-9 और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: नहीं
3: लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, अरे मैं
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
5: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और

0: भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
1: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
2: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
1: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
0: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
1: आप तो काम करती है ना?
0: हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
1: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
0: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा, गौरमा,
1: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
1: कौन लोग आ रहे हैं?
6: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
1: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
1: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
7: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
1: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
7: हाँ,
8: हाँ
7: सब तैयार हैं।
8: किसी भी हाल में जंगल कटने
0: नहीं कटने देंगे।
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
9: ये है जंगल के उपकार,
10: मिट्टी पानी और बया।

0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
1: अरे क्या कर रहे हो?
2: मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
1: अरे भाई कौन है? रुको, हम चल जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
2: आगे बढ़ो।
1: अरे कहां
2: से? मिनट की बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
4: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
1: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
2: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
0: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
5: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
5: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण

अमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीमाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों पर।

रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति जो हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर शेरी नशिस्त का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागी होंगे इरफान आजमी, सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी, राशिद रहमान, सरिता जैन और शगुफ्ता परवीन। शेर नशिस्त का संचालन करेंगे अथर शकील। शाम झबझकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे 90 साल बेमिसाल रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष भेंट वार्ता। दीपक कुमार सरोहा से बातचीत करेंगे प्रमोद सिंह। शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला ये प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके प्रायोजक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। इसके साथ ही चर्चा का विषय रहेगा मौन वंशों की देखभाल। शाम 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे निशा गौतम की गाई हुई चंद गजलें।

शाम 5:15 युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी का रहेगा। युवाणी कार्यक्रम में क्रम रहेंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, दिल से दिल तक और कहानी के उस पार। दिन में 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सुमित्रा रावत और साथियों के गाए हुए गढ़वाली लोकगीत।

रात्रि 8 बजे गीत संध्या में और रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोता ले सकते हैं फिल्म संगीत का आनंद। दिन में 12:20 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा मिट्टी मेलोडी, जिसमें आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार प्रसारित किया जाएगा दिन के 2:30 पर, जिसमें आज के कलाकार हैं आदित्य चोपड़ा। आपसे कुछ ही देर में 12:05 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 12:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक भाइयों
1: जय हिंद।
0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सैनिकों के लिए में। श्रोताओं, इस समय भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। सड़क पर निकलते ही लगने लगता है जैसे हम आग की चपेट में आ गए हैं। इस भीषण गर्मी में क्या आप सोच सकते हैं कि जब उनके बारे में सोचा जाता है, यानी कि सैनिक भाइयों के बारे में सोचा जाता है, हर समय हर परेशानी में वे हमारे साथ खड़े होते हैं, और वो भी निस्वार्थ भावना से, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या किसी देश की सेना से हमारी रक्षा का मामला, जी जान से जुटे रहते हैं हमारे सैनिक भाई। चाहे मौसम कैसा भी हो, कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो किसी बात की परवाह नहीं करते। सलाम है उन्हें हमारा।

0: लक्ष्य फिल्म में अभी आपने सुना शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन और साथियों को। शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत शंकर एहसान लॉय का था। श्रोताओं, वो सैनिक ही तो होते हैं जो जीवन देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। एक समय वह भी आता है जब एक सैनिक को ये एहसास होने लगता है कि अब वह अपने परिवारों से शायद नहीं मिल सकेगा। उसके अंतिम समय में उसके परिवार के लिए उसके साथियों का संदेश ये होता है कि उसे भूलना मत, हमेशा याद रखना। और ऐसा सिर्फ उनके साथ ये नहीं होता, उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ होता है। एक पति के लिए उसकी पत्नी का, बहन के लिए उसकी भाई का, माँ के लिए उसके बेटे का, तो ये यादों का सिलसिला जारी रहता है। उस
1: तेरी आंखों में आंसू, क्या बात है?
2: पता नहीं जी।
1: कमाल दी गल है, तेनू पता नहीं और आंसू अपने आप ही बह रहे हैं। hey, हमेशा तू खुशी खुशी विदा करती है, आज की होया तेनू?
2: ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जी।
1: तुझे क्या लगता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा?
2: हाय रब्बा, ऐसा ना बोलो जी।
1: ठीक है, तू कह तो नहीं जानता।
2: जानती हूँ, मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो ना।
1: दिल तो मेरा तेरे पास ही है, लेकिन जब सरहद से आवाज आती है ना, तो फौजी के कदम अपने आप ही सरहद की तरफ बढ़ जाते हैं। फौजी तो जीता ही वतन के लिए है, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा।

जब जंग पर जाने के लिए एक सैनिक निकलता है तो अपने सर पर कफन बांध कर निकलता है, और सच्चा देशभक्त न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई। जो देश के लिए सरहद पर लड़ने के लिए जाता है, उसके लिए उसका धर्म और मजहब केवल देशभक्ति और देश सेवा होता है।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत, इसे हमने लिया है फिल्म सनम से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। समीर के लिखे इस गीत के लिए धुन बनाई आनंद मिलिंद ने।

इस गीत के साथ ही आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314 दशक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी।

अभी आपने सुना फिल्म त्रिशूल से ये गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीतबद्ध किया खयाम ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म किस्मत में कुमार सानू और साथियों को, शब्द रचना माया गोविंद की और संगीत दिलीप सेन समीर सेन का था।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: इस संदेश के बाद फिर से हाजिर हैं हम कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से। आवाज किशोर कुमार की है, आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीत आर डी बर्मन का।

लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म दीवाना से। आवाजें हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर की। गीत समीर ने लिखा है और इसे संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है दिल वाले। आवाजें कुमार शानू और समीर की हैं। गीत लिखा है समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। तो सुनिए दिलवाले फिल्म में कुमार शानू को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज़, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

0: cooperation in defence, security and regional stability. Mr. Singh also held a bilateral meeting with his Vietnamese counterpart, General Phan Van Xiang. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% in the afternoon session. Today, the Sensex rose 262 points to 75,577, while the Nifty added 75 points to 23,725 when reports last came in on the sectoral front. IT, realty and utility stocks were driving the market higher. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यूपी ट्रिपल एस सी 2024 के तहत मुख्तलिफ ओहदों पर सिलेक्टेड 932 उम्मीदवारों को तकर्री लेटर तकसीम किए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में 9 लाख से ज्यादा नौजवानों को तकर्री लेटर तकसीम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ रियासत को मुख्तलिफ हलकों में आगे बढ़ाने में रियासत के होनहार नौजवानों ने भी अहम किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में आज रियासत मुल्क के ग्रोथ इंजन के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है।
2: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
1: हुकूमत ने कहा है कि मगरबी एशिया तनाज़ु की वजह से दरामदाद में रुकावट के बावजूद मुल्क की तेल रिफाइनरी फैक्ट्री मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं और हिंदुस्तान के पास खाम तेल का वाफिर ज़खीरा है। मगरबी एशिया में हाल के हादसात पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल, LPG और कुदरती गैस का वाफिर ज़खीरा है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: दरियासना हुकूमत ने यूट्यूब के उन वीडियो की तर्दीद की है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 9 दिनों के तेल का जखीरा बचा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट जांच यूनिट ने दावा को खारिज करते हुए बताया है कि मुल्क में तकरीबन 60 दिनों के खाम तेल का जखीरा है। दरियासना उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG की फराहमी पूरी तरह मामूल पर है। अवामी जुमरे की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने वाजे किया है कि रियासत में ईंधन वाफिर मकदार में है और किसी भी तरह की घबराहट या ज्यादा खरीदारी की जरूरत नहीं है। तेल कंपनियों ने अवाम से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ईंधन की दस्तयाबी से मुतल्लिक जानकारी सिर्फ सरकारी जराए से ही हासिल करें। जेठ महीने के तीसरे बड़े मंगल पर दारुल हुकूमत लखनऊ के मंदिरों से लेकर जगह जगह बजरंग बली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का इनेकाद हो रहा है। मंदिरों में भंडारों के साथ ही भक्तों की जानिब से पूरे शहर में सैकड़ों भंडारे मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर आज आकाशवाणी लखनऊ में भी बजरंग बली की पूजा के साथ भंडारे का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ शाम तक प्रसाद तकसीम किया जाएगा। रियासत में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आज से 22 मई तक रियासत के बेशतर इजला में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इजला में दर्जे हरारत 47 डिग्री के पार जाने के इम्कान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतजामिया को पूरी तरह अलर्ट रहने के अहकाम दिए हैं। इस दौरान मरकजी वजारत आयुष ने शदीद गर्मी और लू के हालात से निपटने के लिए अवामी सेहत मशावरात जारी किया है।
4: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से

0: ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दरियासना महकमा मौसमियात ने आज से चार दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि कम से कम दर्जे हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने आगरा, औरैया, बलिया, बांदा, भदोई, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कौशाम्बी, महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली और वाराणसी के कई मकाम पर हीटवेव से लेकर शदीद हीटवेव चलने के इम्कान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोताओं को सुनीता नेगी की ओर से। श्रोता बहनों, आप सब परिवार कुशलता से होंगी। इस उम्मीद के साथ बहनों, आपको याद दिला दें कि आज आप हमारे कार्यक्रम में फोन करके हमसे बातें कर सकती हैं। जी हाँ बहनों, आज है महीने का तीसरा मंगलवार और आज हमारा कार्यक्रम होता है फोनिंग हेलो सखी। तो इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं बहनों। तो आप नोट कर लीजिएगा हमारा मोबाइल नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकती हैं। हमारा फोन नंबर है 9457078288, यानी 9457078288। मैनो, इस नंबर पर आप हेलो सखी कार्यक्रम में भाग लेकर हमसे बातें कर सकती हैं, अपने विचार रेडियो पर साझा कर सकती हैं। और आज का विषय आपसे बातों का हमारा रहेगा कि इन गर्मियों में लू से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। तो बहनों, हेलो सखी कार्यक्रम को थोड़ी देर में शुरू करेंगे। फिलहाल बातें करते हैं आपसे, करते हैं कुछ चर्चा। श्रोता बहनों, इस समय हमारी कुछ बहनों ने दोपहर का खाना बनाकर रेडी कर लिया होगा और कुछ इस वक्त बना रही होंगी, या हो सकता है कुछ बहनों ने तो लंच भी कर लिया होगा। कुल मिलाकर इस वक्त आपकी दिनचर्या रसोई घर के आसपास ही चल रही होगी। बहनों, इस वक्त आपसे चर्चा का विषय हम करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बहनों। अपने घर की हेल्थ मैनेजर भी आप होती हैं, क्योंकि आपके द्वारा बनाया जाने वाला जो खाना होता है उसका सीधा प्रभाव परिवार के सदस्यों पर पड़ता है, क्योंकि परिवार का स्वास्थ्य का जिम्मा महिलाओं पर बहनों पारंपरिक रूप से रहता है। एक स्त्री परिवार के सदस्यों के बीमार पड़ने पर भी देखभाल करने का संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार होती है। परिवार में किसी को यदि बुखार आ जाता है, चोट लग जाती है, सर्दी जुकाम इत्यादि हो जाता है, तो महिला ही सर्वप्रथम नर्स और डॉक्टर की भूमिका निभाती है। घरेलू नुस्खों से लेकर समय से उन्हें दवाई देना, इलाज कराना, इन दायित्वों को महिला बखूबी निभाती है। बीमारी में खान पान कैसा हो, परहेज क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ ही व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन पदार्थों का सेवन कराना और सकारात्मक रूप से प्रेरणा देना, महिला इस सब चुनौतियों को भी भली भांति

भातीय बहनों, घर की स्वच्छता हो या पेयजल की बात हो, स्वच्छ हो आसपास का वातावरण हो या घर का वातावरण, स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखना भी एक महिला की पहली जिम्मेदारी होती है। इस सबसे परिवार के सदस्य बीमारियों से दूर रहते हैं। बहनों, बच्चों के टीकाकरण से लेकर परिवार के सदस्यों की नियमित जांचें हों, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर आदि, महिलाओं के हेल्थ मैनेजर वाले किरदार को महत्वपूर्ण निभाती हैं। यही भावात्मक संतुलन बनाए रखने में भी महिला की भूमिका सर्वोपरि होती है। घर में तनाव को कम कर सकारात्मक माहौल बना देना उनके ही प्रयासों से संभव हो सकता है। तो श्रोता बहनों, परिवार की सेहत आपकी सही सलाह और देखभाल पर निर्भर करती है, और हर महिला इसे अपनी पहली जिम्मेदारी समझते हुए बखूबी निभाती भी है। तो बहनों, कार्यक्रम में अब फिलहाल तो अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं और आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश। मिलते हैं अपनी बातों के साथ वापस कार्यक्रम में।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संदेशों के बाद बहनों कार्यक्रम में अब वक्त हो रहा है हमारे क्रम आधी आबादी से का। बहनों जैसा कि आजकल गर्मी भीषण रूप धारण कर रही है, तापमान में भी वृद्धि हो रही है और यदि घर से बाहर हम कभी निकलते हैं और तेज धूप हमें लग रही हो तो अक्सर हम लोग एक छायादार पेड़ की छाया ढूंढते हैं जिससे वहां पे हम सुकून भरी सांसें पा सकें। पेड़ जो हमें तपती गर्मी से बचाते हैं, वातावरण को प्रदूषण से स्वच्छ रखते हैं, जीवन दायिनी श्वास हमें देते हैं। पर कितने लोग हैं जो अपने जीवन में पेड़ों को लगाते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं? पर्यावरणविदों से कितने लोग प्रेरणा लेते हैं बहनों? ये बड़ा शोचनीय प्रश्न है। श्रोता बहनों, आज ऐसी आबादी क्रम में हम एक ऐसी पर्यावरण मित्र की बात करेंगे जिन्हें उनकी निडरता और साहस से वृक्षारोपण करने के कारण टार्जन लेडी का नाम दिया गया है। तो चलिए और अधिक जानकारी के लिए शुरू करते हैं क्रम आधी आबादी से।

0: लेडी टार्जन। श्रोता बहनों, ये नाम दिया गया है झारखंड की उस सशक्त दमदार महिला को जिन्होंने अपने कामों से समाज में ऐसा उदाहरण पेश किया बिल्कुल निडरता के साथ। श्रोताओं, झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले की पर्यावरण कार्यकर्ता चार्मी मुर्मू, जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष है, पुरुषों के विरोध को सहते हुए उन्होंने महिलाओं को संगठित किया और पर्यावरण, जल संरक्षण, शिक्षा के लिए वो लगातार काम कर रही हैं। शायद उनके इसी हौसले को देखते हुए उन्हें नाम दिया गया टार्जन लेडी। और सन 2024 में लेडी टार्जन चार्मी मुर्मू, इन्हें जब पद्मश्री पुरस्कार मिला तो पूरे देश में इनकी एक अलग पहचान बनी। चार्मी मुर्मू एक पर्यावरणविद हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु ये अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। स्वरोजगार से भी इन्होंने महिलाओं को सशक्त किया है और आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए भी ये काम कर रही हैं। एक पंथ कई काम लेडी टार्जन चार्मी मुर्मू द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन विशेषकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इन्हें जाना जाता है। श्रोता बहनों, चार्मी मुर्मू आदिवासी क्षेत्र की रहने वाली हैं और बहुत मुश्किलों को बहुत ही संघर्ष के साथ इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया। कभी भी हिम्मत नहीं हारी और आज जो पुरुष इन्हें कभी किसी कार्य के लिए रोका करते थे, ताने मारते थे, आज वही समाज, आज वही पुरुष वर्ग इन्हें सहयोग कर रहा है। चार्मी मुर्मू को किससे प्रेरणा मिली कि वो वृक्षारोपण की ओर काम करें? लेडी टार्जन का शुरुआती वो दौर कैसा रहा जब पर्यावरण के प्रति उनकी चेतना बनी और कब इसकी शुरुआत हुई?
1: छोटा से ही हमारे दादाजी से हम सुनते आए हैं कि हमारा पेड़ पौधा कितना महत्व है हमारे जीवन के लिए, हमारा समाज के लिए। हम लोग आदिवासी है, हम लोग गाछ ये में ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद आगे नहीं पढ़ पाया, घर में थोड़ा परिस्थिति आने के बाद हम लोग सोचे कि कुछ ऐसी महिला लोग थी जो मेरे जैसे जो लोग आगे नहीं पढ़ रहे थे या पढ़ाई करके छूट गया था, तो उन लोग को हम समझाए ये करके हम लोग ऐसा काम करेंगे तो कैसा होगा। हम लोग एक साल बैठक किए इधर उधर।
0: जब भी कोई व्यक्ति समाज में कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है तो उसे काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही संघर्ष को चार्मी मुर्मू को भी सहना पड़ा।
1: बैठक करने के भी नहीं देते थे हम लोग को गांव में कि महिला लोग क्यों बैठेगी क्या ये। बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोग ये करके 2 साल के बाद हम लोग फॉरेस्ट विभाग में संपर्क किए, अगर हम लोग गांच लगाएंगे तो कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो उस समय हम लोग को फॉरेस्ट विभाग सलाह दिया कि नर्सरी तैयार कीजिए, आप लोग का ट्रेनिंग भी हो जाएगा और पौधा भी मिल जाएगा। तो हम लोग नर्सरी हम लोग तैयार करने के लिए शुरू किए और उस समय से ये करके हम लोग सीखने के बाद जब पौधा तैयार करने के लिए सीखे तो हम लोग को लगाने का ये करने का भी ये हुआ। और जब किसान के यहाँ जाते हैं तो बोलता है कि हम लोग पौधा नहीं लगाएंगे, पौधा लगाएंगे तो जमीन हम लोग का सरकार ले लेगी। उस तरह से ये करके बहुत समझाने के बाद 1990 से हम लोग पौधा लगाने का काम शुरू किया।
0: लेडी टार्जन के जीवन में कभी वो पल भी आया होगा जब परेशानियां सामने आई होंगी और लगा होगा कि इस काम को छोड़ दूं, लेकिन फिर भी वो इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ती रही, अपने काम को करती रही। धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, 102, 2 से 10, 10 से 100, 200, 300 और आज हजारों महिला उनके साथ स्वयं सहायता समूह के रूप में जुड़ी हुई हैं। आज कैसी जागरूकता है उनके समाज में, लोगों का सपोर्ट कैसा है और जीवन में उनके आज क्या बदलाव आया है?
1: अभी हर गांव में महिला जुड़ी हुई है, जो भी हमारे राजनगर ब्लॉक में है जितना भी गांव है, कोई ऐसे छूटा नहीं है कि सब गांव में महिला ग्रुप बना हुआ है और सब कोई इस काम में जुड़ी हुई है। अपना घर में भी बहुत कुछ सहूलियत हो गया, समस्या समाधान होते गया, तो क्षेत्र में पूरा हरियाली है।
0: कहा जाता है जहाँ चाहा वहाँ रहा, अगर हिम्मत, चेतना और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है और पत्थर में भी फूल उगाए जा सकते हैं। सिद्ध किया है लेडी टार्जन चार्मी मुर्मू ने। पानी के संरक्षण की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, शिक्षा की बात की जाए या महिलाओं को सशक्त बनाने की, उन्हें स्वरोजगार देने की बात हो, इस सब पर काम कर रही है झारखण्ड की चार्मी मुर्मू। आज किसी पहचान कि मोहताज नहीं है वो, देश में अपनी एक पहचान बनाई है इन्होंने। हौसले बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है।
1: अपने महिला को ही आगे बढ़ना है, अपना हिम्मत को ये करके आगे आना है, तब जाके हम अपने तकदीर को बदल सकते हैं। अपना तकदीर कोई नहीं बदलेगा, हम खुद ही बदल सकते हैं।
0: अगर महिलाएं किसी कार्य के लिए आगे आना चाहती हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, स्वयं के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए लेडी टार्जन चार्मी मुर्मू का क्या संदेश रहेगा?
1: अपने आस्था से ही करना है, कुछ तो संघर्ष करना है, श्रमदान भी करना है। अभी जो जमाना है ये है, ऐसे नहीं है कि पूंजीपति नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ अब मजदूर भी जाएंगे तो कुछ पूंजीपति मिल ही रहे। अगर जिसका इच्छा है सेवा करने का, आगे बढ़ने का, तो वो कहीं से भी ये करके वो कर सकते हैं। और सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अगर कोई भी काम करते रहना है निस्वार्थ भाव से, अपने लगन से काम करते रहना, एक दिन जरूर आप लोग भी सफल होंगे।
0: शाबाशी की पात्र है और सैल्यूट है लेडी टार्जन चार्मी मुर्मू को, जिन्होंने झारखंड में आदिवासी क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति अपना इतना बड़ा दायित्व निभाया और अपने साथ हजारों लोगों को जोड़ा। बंजर भूमि में पहले उन्होंने वृक्षारोपण किया और आज जगह जगह सरकारी और गैर सरकारी तौर पर भी वो वृक्षारोपण करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वो स्वरोजगार हेतु स्वयं सहायता समूह के द्वारा कार्य कर रही हैं। तो प्रेरणा हम सभी को लेनी चाहिए लेडी टार्जन चार्मी मुर्मू से कि जीवन में चुनौतियों का सामना करें और इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। श्रोता बहनों, टार्जन लेडी एवं पद्मश्री सम्मान प्राप्त झारखंड राज्य की चार्मी मुर्मू की प्रेरणा से आप भी आने वाले वर्षा काल में अपने आसपास पौधारोपण करेंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं।

0: और बहनों, जितना हमारा वातावरण हरा भरा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग से भी हम दूर रहेंगे और भीषण गर्मी से भी पेड़ों के कारण हमें राहत मिलेगी। तो हो जाइए श्रोता बहनों अभी से तैयार पर्यावरण सुरक्षा के संकल्प के साथ। और बहनों, अब बिना देर करे शुरू करते हैं आज का हेलो सखी कार्यक्रम, जो हमारा फोनिंग कार्यक्रम है। आप भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं इस नंबर पर फोन करके। बहनों, हमारा नंबर है 9457078288। तो बहनों, इस फोन नंबर पर हमें फोन कीजिएगा अभी और लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़िएगा। और आज के हमारी बातचीत का जो विषय है वो रहेगा इन गर्मियों में लू से बचने के उपाय। तो बहनों, अपने दैनिक जीवन में आप क्या क्या उपाय अपनाती हैं लू से बचने के लिए, इस विषय पर बात करेंगे। और बहनों, हमारी पहली फोनिंग कॉल आ चुकी है, तो उठाते हैं फोन कॉल। किसकी है और कहाँ से आ रही है? हेलो हेलो हेलो, शायद कॉल हमारी नहीं लग पाई है, डिस्कनेक्ट हो चुकी है बहनों। तो अगली कॉल का वेट करेंगे। इस बीच आपसे हम ही बातें करते हैं कि लू से बचने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए इन गर्मियों में। बहनों देखिए, तापमान दिन प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और दोपहर के टाइम इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है कि घर के बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो अगर बहुत आवश्यक हो घर से निकलना 12 बजे के आसपास और 4 बजे तक, तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि इस भरी दोपहर में हम बाहर ना निकलें। फोन कॉल आ चुकी है हम तक हमारे आज के कार्यक्रम की। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं धामपुर से बात कर रही हूँ, शानी चौहान।
0: जी शानी जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो सखी में आपका।
1: धन्यवाद मैम।
0: शालिनी जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं मिलेनियम पब्लिक स्कूल में उप प्रधानाचार्य के पद पे कार्यरत हूँ।
0: जी, तो शालिनी जी, आपको बता दें कि आज का हमारा विषय है कि हम गर्मियों के इन दिनों में लू से कैसे बच सकते हैं। तो हमारी सुनने वाली श्रोताओं को आप बताएं कि क्या उपाय वो कर सकती हैं कि इन दिनों में वो गर्मियों में लू से बच सके।
1: जैसे कि आजकल गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो मैं सभी जो हमारी महिलाएं इस समय सुन रही हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगी कि दिन भर में कम से कम 3 या 4 लीटर पानी पिए।
0: जी।
1: और जो सादा पानी पीती हैं, उसके अलावा नींबू पानी, ORS का जैसे छाछ, लस्सी और नारियल पानी का सेवन करते रहें। और कपड़े जो हम पहनते हैं, तो वो हल्के रंग के कपड़ों का यूज करें।
0: जी।
1: बच्चों को धूप में ना लेके जाएं। छोटे बच्चों को बाहर अगर आप लेके भी जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ अर्जेंट वर्क है, तो आप छाता और कैप का यूज करें।
0: जी बिल्कुल।
1: बच्चों को तला भुना ना दे।
0: जी शालिनी जी,
1: बाहर का सेवन तो इस समय देना, घर का ही आप अपना जो भी बनाना है ताजा ही फ्रेश बना के दीजिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी टिप्स आपने बताए हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता इस समय सुन रही हैं रेडियो पर, तो उन्हें ये सब टिप्स पसंद आ रहे होंगे और अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग भी वो करेंगी, अपनाएंगी। शालिनी जी, आपने हमें कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता बहनों, आपने सुना कि किस प्रकार से हम टिप्स को अपना सकते हैं लू से बचने के लिए। इसके अलावा बहनों, ये भी हम कर सकते हैं कि कहा जाता है हमारे पुराने लोगों के द्वारा कि कच्चा प्याज अगर खाया जाए, चाहे आप उसे सलाद के माध्यम से खाती हैं, और पुराने लोग तो ये भी कहते हैं। देखिए, एक दूसरी कॉल आ चुकी है, तो दूसरी श्रोता से हम बात करेंगे। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, आप कौन, कहाँ से बात कर रही हैं?
2: मैं नजीबा से बात कर रही हूँ, अनीता रावत
0: जी। स्वागत है अनीता जी आपका हेलो सखी कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मैम।
0: अनीता जी, हमारा आज का विषय जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है कि लू से कैसे हम सुरक्षित रहें। तो क्या कहना रहेगा आज आपका हमारी श्रोताओं से कि कैसे वो लू से बचे?
2: हाँ, जैसे कि लू चल रही है, बहुत गर्मी चल रही है, तो मैं ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, है ना, आप प्याज का प्रयोग करें, जैसे कच्चे आम होते हैं उसका शरबत भी पी सकते हैं।
0: जी।
2: नींबू पानी हो गया, नमक और शक्कर का घोल भी पी सकती है महिलाएं, बच्चों को भी दे सकती है। धूप से बाहर निकलने के लिए कम से कम आप

0: जान निकलने से पहले छाछ या बेल का शरबत पिए और
1: बिल्कुल।
0: हल्के और ढीले सूती वस्त्रों को भी पहने। दिन में जो सबसे गर्म समय होता है ना, 12 से 3 बजे का होता है ना,
1: जी,
0: तो उस वक्त ना हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने घर में ही रहना चाहिए, है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: जैसे बच्चे कहते हैं, जिद करते हैं कि घर से बाहर निकलना है ना, बच्चे आजकल के मानते नहीं है अपने मम्मी पापा का कहना, तो बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चों गर्मी हो रही है, थोड़ा बाहर शाम के टाइम आप बाहर निकले खेलने के लिए, घूमने के लिए, और नारियल पानी पिए, ग्लूकोन डी पिए, ताजे रसीले फल जैसे होते हैं, है ना, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, अधिक से अधिक मात्रा में वो पिए, क्योंकि वो ताजे होते हैं और रसीले भी होते हैं, और वो ना पानी की कमी को पूरा पूरा कर देते हैं।
1: जी बहुत अच्छी
0: पानी में
1: बात,
0: ORS घोल मिलाकर भी पिए,
1: जी
0: ये बोलूंगी मैं तो मैम।
1: जी बहुत अच्छी टिप्स आपने बताई हैं। आजकल मौसमी फलों का बहुत देखने को हमें बाजार में मिल रहे हैं, तो इनका प्रयोग हमें करना चाहिए, जैसे खीरा, ककड़ी या तरबूज, खरबूजा तो आपने बताया ही है। अनीता जी,
0: हाँ जी मैम, हाँ जी।
1: और कोई टिप्स जो छूट रहा हो और भी आप कुछ कहना चाहें हमारी श्रोताओं से?
0: गर्मी में कम से कम बाहर निकलने से पहले छाता का प्रयोग करें, आप चश्मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, आंखों में
1: जी।
0: जलन मचती है ना, महिलाओं के भी, सभी के मचती है, मतलब जैसे हम धूप घर से बाहर निकलते हैं धूप में, तो हमें एकदम से बाहर आकर ऐसा लगता है कि जैसे बाहर आए, हम आंखों में एकदम से इफेक्ट पड़ता है,
1: जी
0: इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में चश्मा का भी प्रयोग करें, है ना।
1: जी तो अनीता जी, बहुत
0: हाँ
1: अच्छी टिप्स आपने हमारी सभी सुनने वाली श्रोताओं को दी हैं। आपने हमारे आज के कार्यक्रम में कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं किस प्रकार से अधिक तापमान होने पर लू लगने की संभावना से आप बच सकती हैं। इसके अलावा मैंने हमें अपने खान पान का भी बहुत ध्यान रखना होगा। खान पान हमारा कैसा हो, ज़्यादा मसालेदार ना हो, ज़्यादा तला भुना ना हो। देखिए, हमें एक और कॉल प्राप्त हो रही है हमारे फोन कॉल्स पर। बात करते हैं, कौन श्रोता है? हेलो,
0: हेलो
1: हाँ जी, कौन?
0: मोहम्मद,
1: हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
0: आप मुझे बताइए लू से कैसे बचा
1: जी, लू से? हाँ, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि लू से कैसे बचा जा सकता है। आप क्या करती हैं
0: जा सकता
1: अपने यहाँ लू से बचने के लिए, बताइए जरा हमारी श्रोताओं को।
0: है। जी, लगाकर थोड़ा पानी, ज्यादा पानी दिए,
1: हाँ जी
0: और खरबूजा खाए, थोड़ा ठंडी
1: बिल्कुल।
0: चीजें ज्यादा खाए, ठीक है मैम,
1: जी,
0: थैंक यू मैम।
1: धन्यवाद, आपने हमें कॉल की। तो श्रोता मैनो, खान पान की हम इस फोन कॉल से पहले बात कर रहे थे कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए जिससे हम इन गर्मियों में अपने शरीर के तापमान को नॉर्मल रख सकें, लू से बच सकते हैं। तो ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं, तला भुना ना खाएं, और सबसे बड़ी बात, कैफीन और अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो श्रोता मैनो, एक कॉल और हमें आ रही है, उठा लेते हैं इसको। कौन बात कर रहे हैं? हेलो, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बहनों, कैफीन और अल्कोहल की हम बात कर रहे थे, इसमें चाय कॉफ़ी आते हैं, और अधिकतर हमें देखने को आता है कि बहुत से लोग शराब का भी सेवन करते हैं। तो इन चीज़ों का सेवन हमें बिल्कुल गर्मी में नहीं करना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा है ज़रूरी तो आप सीमित रूप से इन्हें ले सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी तेज़ी से होती है अगर हम कैफीन युक्त पदार्थ लेते हैं तो। और सबसे बड़ी बात बहनों, सुबह सुबह हमें अपने जीवन में योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जरूर करने चाहिए। ये भी हमें स्वस्थ रखने में बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, और आज के आधुनिक जीवन शैली में तो इसके महत्व को हम सभी समझ भी रहे हैं। बहनों, खाना कैसा हो, अक्सर हमारी बहनें अगर खाना अधिक बन जाता है तो फ्रिज में उसे रख देती हैं। बहनों, कोशिश करें कि जितना आपके परिवार में खाना खाया जाए उतना ही आप बनाएं, क्योंकि बासी खाना अगर चाहे आप फ्रिज में भी रखें वो भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तो बासी खाने से, खाना खाने से हमें बचना चाहिए। और बहनों, कई बार बच्चों की भी जिद होती कि तला भुना उन्हें पसंद होता है, और फास्ट फूड, जी हाँ, आजकल की तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ, क्या हम कहें कि जिन्हें पसंद आता है, बहुत सारे लोग बड़े भी फास्ट फूड को बहुत पसंद करते हैं। तो बहनों, इन गर्मियों के दिनों में खासकर आपसे कहना चाहेंगे, फास्ट फूड जितना कम से कम आप खाने में यूज़ करें उतना अच्छा रहेगा।

ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करते हैं ऐसे पदार्थ, इनमें बहुत नमक का प्रयोग होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, प्रिजर्व करके इनको रखा जाता है काफ़ी दिनों तक फ्रिज में, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। फास्ट फूड को भी आप अवॉइड करें। पानी की बोतल अपने साथ रखें जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें छाता साथ रखें। सर पर हमारे डायरेक्ट धूप पड़ती है बहनों, तो उसकी गर्मी हमारे शरीर पर पहुंचती है और उसका नुकसान हमें होता है। लू लगने की संभावना को बहुत कम कर देता है अगर आप सर पर कोई सूती रुमाल दुपट्टा इत्यादि लपेट कर बाहर निकलते हैं। पहले तो कोशिश कीजिए कि कीजिएगा कि भरी दोपहरी में 12 बजे से 4 बजे के बीच, जिस समय धूप बहुत तेज होती है, तापमान बहुत अधिक होता है, बाहर ना निकलना हो तो बहुत बेहतर, और बहुत मजबूरी है तो छाता, चश्मा, पानी की बोतल और सर को लपेट कर ही बाहर निकलें। बहनों, खुले कपड़े, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, हल्के रंग के और सूती कपड़े पहने, खुले ढीले ढाले पहनने से हमारे शरीर में हवा का आना जाना अच्छे से होता है और शरीर को ठंडक प्राप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सब टिप्स को अपना कर लू से सुरक्षित रहेंगी इन गर्मियों में। तो बहनों, इसी के साथ आज का हेलो सखी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं। एक नए अंक में फिर आपसे भेंट होगी और अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

अभी बहनें सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुमित्रा रावत और साथियों के स्वर में गढ़वाली लोकगीत।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। पहले अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्डॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत

0: है और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीजन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
3: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की

0: कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे आदित्य चोपड़ा की फिल्मों की कुछ चुनिंदा गीत। नमस्कार श्रोताओं, आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपका साथी विश्वास त्रिवेदी और आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार की जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में सिनेमा जगत को अलग पहचान दिलाई, जिसने प्रेम कहानियों को एक नई पहचान दी, परिवार, रिश्तों और भावनाओं को बड़े पर्दे पर बेहद खूबसूरती से उतारा। जी हाँ, आज का कार्यक्रम आदित्य चोपड़ा को लेकर तैयार किया गया है। यशराज फिल्म्स की विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले आदित्य चोपड़ा ने कैमरे के पीछे रहकर करोड़ों दिलों पर राज किया। तो डीजे पेश है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म के लिए अभी आपने सुना कुमार सानू और लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने। श्रोताओं, आज हम एक ही कलाकार में बात कर रहे हैं, आदित्य चोपड़ा की, और ये फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सन 1995 में आई, और इस फिल्म ने आदित्य चोपड़ा को एक सफल निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया। ये उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी। इस फिल्म ने रोमांस का अंदाज ही बदल दिया। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी विदेशों में बसे भारतीय परिवारों की भावनाएं और भारतीय संस्कारों से जुड़ी कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आई। आदित्य चोपड़ा की फिल्मों की खास बात यह रही कि उनकी कहानियों में आधुनिकता के साथ भारतीय संस्कृति की खुशबू हमेशा बनी रही। निर्देशन के साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों की कहानी और पटकथा भी लिखी। निर्माता के रूप में भी उन्होंने नए कलाकारों और नए विषयों को चुना। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म मोहब्बतें का ये खूबसूरत गीत।

फिल्म मोहब्बतें में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण को। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई जतिन ललित ने। श्रोताओं, आदित्य चोपड़ा के बारे में यहां एक बात बताना जरूरी है कि फिल्म मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे दो दिग्गज कलाकारों को साथ लाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने इसे शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा और ये फिल्म प्रेम और अनुशासन के बीच संघर्ष की कहानी बनी। इसके संगीत, संवाद और भावनात्मक दृश्य ने इसे यादगार बना दिया। इसके बाद निर्माता के रूप में आदित्य चोपड़ा ने वीर जारा, चक दे इंडिया, रब ने बना दी जोड़ी, बैंड बाजा बारात जैसी कई फिल्में दी और सफल रहीं। उन्होंने नए कलाकारों को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई। बॉलीवुड के कई सितारे आज यशराज फिल्म से अपने सफर की शुरुआत कर चुके हैं। अब बारी उस फिल्म के गीत की है जिसमें प्यार के साथ देशभक्ति और इंसानियत की खूबसूरत कहानी भी थी। फिल्म का नाम है वीर जारा। तो आइए सुनते हैं फिल्म वीर जारा का ये गीत लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाज में। गीत लिखा है

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।

0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashvaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा की। एक खास बात यहां बताना जरूरी है कि आदित्य चोपड़ा मीडिया और लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं। वे कम दिखाई देते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा चर्चों में रहता है। आइए सुनते हैं एक और मधुर गीत जिसने प्यार को एक अलग ही अंदाज में पेश किया। फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म के लिए अपनी आवाज दी है रूप कुमार राठौर ने और गीत लिखा है जयदीप सहानी ने, धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

श्रोताओं, आदित्य चोपड़ा की बात हो और सुल्तान फिल्म का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सुल्तान एक हरियाणा के पहलवान की कहानी जो संघर्ष

प्रेम हार और वापसी की प्रेरणादायक यात्रा को दिखाती है। फिल्म में देसी मिट्टी की खुशबू, हरियाणवी अंदाज और भावनात्मक कहानी ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया और इस कहानी को पर्दे पर उतारा आदित्य चोपड़ा ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से

बोल रहे हैं, अपराह्न के 3 बज रहे हैं। हमारे आज दोपहर प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब संपन्न होते हैं। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं लीजिए सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित विशेष कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में आकाशवाणी मना रहा है इन 90 वर्षों का जश्न। और इस जश्न में हमारे साथ हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और आज इसी उपलक्ष्य में एक और साथी हमारे साथ हैं। आइए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आपका नाम?
1: मेरा नाम संतोष सिंह नेगी है और मैं राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में गणित शिक्षक हूँ।
0: संतोष जी, आप रेडियो कब से सुन रहे हैं?
1: रेडियो तो मेरे बचपन से रहा है, मतलब मेरे पापा फौज में थे तो ये समझिए कि आप हमारा जीवन रेडियो से ही शुरू हुआ है। तो पापा जैसे फौज में थे तो पापा आते थे, रेडियो लाते थे तो हम लोग रेडियो सुनते थे। पापा फौजी थे तो सुबह सुबह उठते थे समय पे और रेडियो ऑन कर देते थे तो भजन आरतियां आती थी तो हमारा दिन ही रेडियो की आरतियों के साथ शुरू होता था।

0: बल्कि एक फेमस अनाउंसमेंट जो मुझे आज भी रटा हुआ है कि यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम में 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 6:00 इतने मिनट हो चुके हैं और आप जो है अगला कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो इस टाइप की मेरे को पूरी जो उनकी लाइनें याद हैं वो एक जीवन का ऐसा लगता है कि मतलब वो बोलते थे और मेरे अंदर समाहित है ये लाइन।
1: यानी आपके कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही आप ये अनाउंसमेंट जो आकाशवाणी नजीबाबाद का है उसको सुनते आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, हम तो छोटे छोटे से थे, पापा रेडियो खोलते थे, उसका मतलब ये होता था कि अब आपने उठना है, भजन आरती से जो है हमारा दिन शुरू होता
1: हाँ,
0: था। और आज लगता है कि वो कितने प्यारे से दिन थे, मतलब
1: यानी
0: हाँ
1: रेडियो अलार्म का काम भी करता था
0: बिल्कुल
1: आपका
0: बिल्कुल,
1: उठने का।
0: अलार्म का काम भी करता था, वो इनडायरेक्ट पापा का इशारा हो जाता था कि भैया उठना है, अब पढ़ाई का टाइम हो गया है। इसके अलावा एक कार्यक्रम आता था सैनिकों के लिए, तो उसमें जो है गीत आते थे, तो मैंने वहां से फिल्मी गीत सुनना शुरू किया, उसके बाद मैंने लिखना भी शुरू किया। पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट थे तो जो है वो, हमारे यहाँ वैसे उस टाइम पे टीवी भी नहीं था, तो एक तो टीवी की कमी थी और बाद में जब कभी टीवी भी आया तो उसमें सेलेक्टेड केवल न्यूज सुननी होती थी, तो पिक्चर के गाने कहाँ से सुने, तो वहां पे फिर रेडियो हमारे काम करता था।
1: अच्छा,
0: तो उसमें जो है रेडियो के गाने हम सुनते थे, सारे गाने। अब पापा रेडियो खोल देते थे, हम पापा बोलते पापा पापा सैनिकों वाला कार्यक्रम आ रहा है, तो पापा फिर वो खोलते थे, तो जो है फिल्मी संगीत भी हमें सुनने को मिला। इसके अलावा उसमें एक कई जगह जो है कई गानों में पोस्ट कार्डों के बारे में जिक्र होता था, तो उसकी कुछ
1: यानी फरमाइशी
0: फरमाइशी, हाँ,
1: जो
0: तो
1: प्रोग्राम
0: उसमें
1: आते
0: लिखा
1: थे।
0: रहता था कि इस गाने की फरमाइश की है चुन्नू मुन्नू बिट्टू पप्पू और उनके मौसा मौसी नाना नानी दादा दादी और अड़ोसी पड़ोसी ने, तो मेरे भी दिमाग में था कि मैं भी एक लेटर लिखूंगा। तो पोस्ट कार्ड होते थे उस समय, कुछ पैसों के आते थे, वो जो हमने पोस्ट कार्ड लिखते थे, तो उसमें जैसे मैंने कोई गाने की फरमाइश लिखी, फिर उसके बाद मैंने उसमें अब नाम किसका लिखूँ, तो हम लोग तो माजी हमारी असल में पहले खत्म हो चुकी थी, तो मैं अपना लिखा, भाई का लिखा, पापा का लिख दिया। जबरदस्ती डर भी लगती थी कि पापा का नाम कहीं आ गया, तो उसके बाद जो है फिर हमने अब और क्या करना, तो फिर अड़ोसी पड़ोसी का नाम लिख के वहां भेज
1: यानी
0: दिया।
1: आपके बचपन में रेडियो के साथ बहुत सारी यादें हैं।
0: बहुत सारी, मतलब मेरा बचपन ही आप ये समझिए कि रेडियो से शुरू हुआ दिन, और फिर रेडियो से ही मैंने एक तरह से लिखना भी शुरू किया।
1: लगभग आपको याद है कि किस सन से आपकी शुरुआत हुई होगी, कौन से सन से आपने
0: मतलब
1: नजीबाबाद
0: बयानवे
1: के लिए
0: तिरानवे का तो
1: सुना?
0: मुझे ध्यान है, 92-93 हम छोटे छोटे से थे, और उस दौर से जो है मतलब जब हमने होश संभाला एक तरह से हम कह सकते हैं, रेडियो हमारा हिस्सा रहा। टीवी तो हमने बहुत बाद में खरीदा।
1: जैसा कि आपने बताया कि आप रेडियो के आकाशवाणी नजीबाबाद के इतने पुराने श्रोता हैं, तो कोई खास प्रोग्राम थे जो आपके बहुत फेवरेट रहे हों या जिन प्रोग्राम से आपको जीवन में कुछ मिला हो, आपने सीखा हो?
0: कुछ तो उम्र के साथ, जैसे हम बच्चे थे तो उसमें फिल्मी गीत बड़े अच्छे लगते थे, सुबह सुबह जो है भजन संगीत अच्छा लगता, फिर थोड़ी उम्र बढ़ी तो युवाणी प्रोग्राम आता था, बहुत सारे कार्यक्रम और भी आते थे, मेरे पापा कृषि दर्शन कार्यक्रम भी सुनते थे, तो वो खेती बाड़ी का वहां से पता चल जाता था। तो उम्र के हिसाब से जो है मैंने एक चीज देखी रेडियो में कि सब कुछ है, आप छोटे हो तो आपके हिसाब से वैसा है, आप टीन एज के हो तो आपके हिसाब से वैसा है, और आप और बड़े तो आपके, तो सब कुछ जो है कंप्लीट पैकेज है रेडियो।
1: रेडियो
0: हाँ, तो सारा मुझे मतलब हर कार्यक्रम उसमें युवाणी से लेकर के जीके के प्रोग्राम तक सब कुछ मैंने उसमें सुना है। मतलब अच्छा, श्रोतागण को भी एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मन की बात कार्यक्रम में जो है मतलब मैं कुछ न कुछ करता रहता था, तो जल संरक्षण कार्यक्रम में मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने मेरे कार्यक्रम की तारीफ की और जिक्र किया, तो रेडियो ने मुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि बाद में प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी मौका मिला। तो मेरे जीवन में रेडियो और रेडियो का मन की बात कार्यक्रम जो है एक तरह से वो मेरी पहचान सी बन गया है कि मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग जो है उसका जिक्र करते रहे, ये तो प्रधानमंत्री से मिलकर आया, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आकाशवाणी और रेडियो ही है। इस तरीके से अगर हम देखें तो मेरी जीवन की पूरी यात्रा में रेडियो का एक बहुत बड़ा वो है, चाहे वो हमें बचपन से सुबह उठाने से लेकर के और आज मेरी पहचान मन की बात वाले संतोष नेगी जी हैं ये, वहां तक जो है पूरा रेडियो है। तो मैं कहीं ना कहीं रेडियो का बहुत बहुत आभारी हूँ, और कहीं ना कहीं मैं रेडियो से जुड़े हुए समस्त लोगों का आभारी हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं शायद इस स्तर पे भी नहीं पहुंचा हुआ होता, तो कहीं ना कहीं मैं तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, रेडियो और रेडियो परिवार से जुड़े हुए लोगों को। और रेडियो लगातार प्रगति कर रहा है, उसमें FM भी जुड़ने लगा है, वो इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, वो ऐप के तौर पे भी उपलब्ध है, तो रेडियो अब पहले से दुगना तिगना चार गुना विकास कर रहा है, और इस विकास का श्रेय आप लोगों को ही जाता है जो रेडियो से जुड़े हुए हैं।
1: संतोष जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप बचपन से ही गाने सुनते आ रहे हैं, रेडियो आप सुनते ही इसलिए थे क्योंकि आपको रेडियो पर जो गाने प्रसारित होते थे वो बहुत पसंद आते थे। तो कोई एक ऐसा गाना है जो आपको बहुत पसंद आता हो या आपको आपके बचपन की याद दिलाता हो?
0: कई गाने ऐसे कि जिनको सुनते ही वो दिन याद आ जाते हैं, और एक गाना था उस दौर का जो मुझे

तो संतोष जी, ये था आपकी पसंद का गीत। आपने हमसे आकाशवाणी से जुड़ी यादें, रेडियो से जुड़ी बातें साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित विशेष कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक नजर डालते हैं हमारे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।

आज रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण में आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति होगी, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर आज का आकर्षण रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज दिल से दिल तक, कहानी के उस पार में सुनिएगा सिक्का बदल गया का एपिसोड 2, साथ ही आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:05 पर बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का एपिसोड 3 प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ।

90 साल बेमिसाल। रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता के अंतर्गत हमारे श्रोता सुनेंगे दीपक कुमार सरोहा से प्रमोद सिंह की बातचीत। समय रहेगा आज शाम 6:45 पर। निशा गौतम की गायी चंद गजलों का आनंद लीजिएगा हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में संध्या 7:32 पर। आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम शेरी नशिस्त। प्रतिभागी होंगे श्री इरफान आजमी, श्री सैयद अजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी, श्री राशिद रहमान, सरिता जैन और शगुफ्ता परवीन। संचालन होगा श्री अथर शकील का। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा छाया गीत कार्यक्रम में संध्या 6:55 पर। रात्रि 8:00 गीत संध्या कार्यक्रम में रात्रि 8:30 पर क्रम रहेगा एक ही फिल्म से और रात्रि 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। तो श्रोताओं, ये थी एक नज़र हमारे आज के शेष कार्यक्रमों पर और अब जानकारी हमारे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। कल प्रातः 6:05 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। श्री रामचरित मानस गान प्रातः 6:30 पर, चिंतन 6:40 पर, सुनीता सैनी का काव्य पाठ हमारे श्रोता सुनेंगे कल प्रातः 6:45 पर। काव्यधारा कार्यक्रम में प्रातः 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय होगा पौष्टिक दही और खेती की बातें क्रम में कल प्रातः 7:10 पर पशुओं के लिए साइलेज बनाना विषय पर जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम का समय रहेगा कल प्रातः 7:31 पर।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में कल प्रातः 9:25 पर हमारे श्रोता सुनेंगे ब्रह्मदेव आर्य की गायी रागनी। 9:50 पर समय रहेगा कार्यक्रम बात आसपास की का, वाचन स्वर एवं संकलन होगा अंकुर चौधरी का। कल प्रातः 10 भारत में रेडियो प्रसारण के 90 के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा सुहाना सफर। विविध कलाकारों के गाये ब्रज के लोकगीतों का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं हमारे लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर। तो श्रोताओं, ये थी एक नजर हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: दिल की बात जब अल्फाजों में ढल जाती है तो हर धड़कन एक प्यारी सी गजल बन जाती है। मुस्कुराहट हो या यादों की हल्की सी खनक,
1: दिल से निकली बात ही दिल तक पहुंच जाती है। गुड इवनिंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो पार्टनर मरियम जैदी,
0: और मरियम के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट अलीना, और हम दोनों मिलकर स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में।
1: यार अलीना, मुझे ना आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अरे मरियम, इतनी गर्मी भरे मौसम में तुम्हें सब कुछ अच्छा कैसे लग रहा है?
1: अलीना मेरा मतलब वो नहीं है, तुम्हें पता है ना आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को होता है हमारा एक बेहद दिलचस्प सेगमेंट दिल से दिल तक।
0: और हाँ, अब समझ गई, तभी तो तुम्हें आज सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब बातें दिल की होती हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है।
1: वही तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये दिल से दिल तक आखिर है क्या।
0: तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, आज हमारे दिल से दिल तक सेगमेंट की थीम रहेगी मेहरबान। तो दोस्तों करना आपको ये है कि आपको भेजने हैं हमें इस थीम से रिलेटेड खूब सारे मैसेजेस हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर।
1: तो दोस्तों हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का इंतजार। और अब अलीना बिना देर किए पूछ लेते हैं अपने दोस्तों से आज का सवाल।
0: बिल्कुल मरियम, तो दोस्तों हमारे बुझो तो जाने सेगमेंट के अंतर्गत आपसे आज का सवाल रहेगा, पेरिस ओलंपिक 2024 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत की ओर से कांस्य पदक किसने जीता?
1: तो दोस्तों जब तक आप देते हैं हमारे सवाल का सही जवाब, तब तक शामिल कर लेते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

0: Hey guys, hit the subscribe button right here.
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे की ओर। वैसे मरियम, कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग महफिल में आते ही सबका अटेंशन ले लेते हैं, और क्योंकि लाउड वॉइस, नॉन स्टॉप बातें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ,
5: और कुछ लोग बस चुप रहते हैं और एक कोने में बैठकर सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं।
4: और मरियम, पता है फनी बात क्या है? लोग अक्सर समझ लेते हैं जो ज्यादा बोलता है वो ही स्मार्ट होता है, और जो चुप रहता है उसके पास शायद कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
5: बिल्कुल सही कह रही हो तुम अलीना, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हर बार जो लाउड होता है वो पावरफुल या स्मार्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी असली पावर ना खामोश में होती है।
4: क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग बोलने से पहले सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं जो सीधा दिमाग में बैठ जाती है।
5: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो शायद क्राउड में सबसे ज्यादा विजिबल नहीं होते, लेकिन उनके फायदे इतने पावरफुल होते हैं कि दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग एक्चुअली उनमें ही आते हैं।
4: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंट्रोवर्ट होने के एडवांटेजेस के बारे में। मरियम, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है इंट्रोवर्ट होने का कि ये लोग अमेजिंग लिसनर्स होते हैं, और आजकल तो सबको बोलना है, बस सुनना किसी को है नहीं।
5: बिल्कुल सही कह रही हो, गुड लिसनर तो होते ही है इंट्रोवर्ट लोग, और जो इंसान जेन्युइनली सुन लेता है ना, वो ऑटोमेटिकली लोगों को समझने भी लगता है, इसलिए इंट्रोवर्ट्स के रिलेशनशिप्स डीप होते हैं, फेक नहीं होते।
4: और मरियम, ये जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं ना, ये दोस्ती भी हर किसी से नहीं करते, हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, बट जिससे भी करते हैं दिल से करते हैं।
5: अलीना वो तो है, और सेकेंड एडवांटेज ये है कि ये लोग बहुत डीपली सोचते हैं, ये एकदम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेते, सोच समझ कर ही लेते हैं।
4: इसी वजह से राइटर्स, क्रिएटर्स, साइंटिस्ट, कोडर्स और काफी फील्ड में इंट्रोवर्ट्स शाइन करते हैं, क्योंकि उनका फोकस स्ट्रांग होता है।
5: और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इंट्रोवर्ट्स की अकेला रहना होता है, ये लोग अकेले होके भी ना वो चीज को अपने ऊपर बोरिंग नहीं बनाते, मतलब उनको बोरिंग ही नहीं लगता, वो अपनी कंपनी खुद एंजॉय कर लेते हैं।
4: और दोस्तों, ये क्वालिटी ना आजकल बहुत रेयर है, क्योंकि आजकल लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो गए हैं। लेकिन मैं एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि इंट्रोवर्ट होना मतलब शाय होना नहीं होता।
5: बिल्कुल सही, शाइनेस फियर होता है, इंट्रोवर्ट होना बस एक पर्सनालिटी टाइप है ना।
4: एन इंट्रोवर्ट कैन बी कॉन्फिडेंट टू, बस उन्हें अननेसेसरी स्पॉटलाइट्स पसंद नहीं।
5: तो दोस्तों, आज कुछ खास है, आज में बस इतना ही।
4: वैसे मरियम, हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आज हमारे सेगमेंट दिल से दिल तक में हमारी आज की थीम रहेगी मेहरबान, तो हमें बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, तो चलो मरियम पहले जान लेते हैं हमें पहला मैसेज कहाँ से आया है। ये मैसेज हमें भेजने वाले हैं सादुल शहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। ये कहते हैं, युवाणी कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। सबसे पहले तो आकाशवाणी के 90 साल के इस खूबसूरत सफर को तय करने के लिए हम बहुत मेहरबान हैं। हालांकि सिर्फ श्रोता ही मेहरबान नहीं, आकाशवाणी भी श्रोताओं पर मेहरबान है। बहुत खूब, आकाशवाणी की मेहरबानी हमेशा बनी रहे, इसके लिए आकाशवाणी के 90 साल का सफर तय करने के लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहरबान कोई यूं नहीं होता, मेहरबान बनने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना होता है, इसलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम, कृपालु, दयालु होना एक इंसान का सबसे बड़ा फर्ज बनता है। और मेहरबान एक शब्द नहीं, आभूषण है। ये शब्द सिर्फ प्रेम या रिश्तों को नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नजरिया भी दर्शाता है। मेहरबान हम आप पर हैं, क्योंकि आप हमें बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पेश करके हम तक पहुंचाते हैं, और हम मेहरबान इसलिए हैं कि आपके प्रोग्राम सुनकर आपकी मेहरबान का धन्यवाद करने आप तक पहुंच जाते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम प्रोग्राम्स ऐसे बनाएं कि आपको वो खूब पसंद आए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार रेवार जी हमें ये खूबसूरत सा मैसेज भेजने के लिए और अपने दिल की बात कहने के लिए। तो चलिए इसी के साथ सुनवा देते हैं आपको ये आज का खूबसूरत गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे चिंकी, कैसी है तू? इतनी देर से तुझे ढूंढ रही हूँ, आज तू खेलने भी नहीं आई। क्या हर वक्त सोती रहती है, और देख अभी भी जागते हुए सो ही रही है तू।
2: अरे पिंकी यार, क्या बताऊं, मुझे ना पूरी रात नींद नहीं आई
3: है। रात भर नींद नहीं आई? पर क्यों, रात में ऐसा क्या किया तूने जो तुझे नींद ही नहीं आई?
2: अरे यार क्या बताऊं, रात भर मैंने सपने में देखा कि मैं जाग रही हूँ।
4: तो चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको कहानी के उस पार की ओर, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे एपिसोड 2 सिक्का बदल गया, जिसको प्रेजेंट किया है अक्षय त्यागी ने अपने शब्दों में।
5: पिछले एपिसोड में आपने देखा शाहनी को पहली बार अपने ही गांव में डर महसूस हुआ। दरिया की खामोशी, खेतों की वीरानी और बदलते हालात आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। और दूसरी ओर था शेरा, जिसे शाहनी ने बेटे की तरह पाला, लेकिन अब वही नफरत और इंसानियत के बीच फंस चुका है। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय त्यागी आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एपिसोड नंबर 2 शेरे के दिल का तूफान। आइए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वो न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वो शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडा सा शताले के ढेर के नीचे सरका दिया, हाथ में हुक्का पकड़ कर बोला, ए हुसैना, हुसैना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वो सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरे शेरे की आवाज सुनाई दी। शेरा गुस्से से भर गया, किस पर निकाले अपना क्रोध, शाहनी पर, और वो चीख कर बोला, ए मर गई क्या, रब तुम्हें मौत दे मौत। हुसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आती हूँ, क्यों छा वेले तड़पता है। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हुसैना ये वक्त लड़ने का है, वो पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हुसैना ने मान भरे स्वर में कहा, शाहनी लड़का आखिर लड़का ही है, कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। शाहनी ने लाट से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से ज्यादा बहू प्यारी है शेरे। हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाल के लोग आए हैं यहाँ। शेरे ने

कर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। पर शेरा भीतर ही भीतर जल रहा था। हमारे ही भाई बंदों से सुद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, पर तभी उसकी आंखों में एक और तस्वीर तैर गई। सर्दियों की रात, लालटेन की हल्की रोशनी और शाहनी के हाथ में दूध का कटोरा। शेरे शेरे उठ पी ले, शेरा विचलित हो गया। दोस्तों, एक तरफ नफरत की आग थी और दूसरी तरफ शाहनी की ममता। लेकिन आने वाली रात शेरे से एक ऐसा फैसला करवाने वाली थी जो सब कुछ बदल देता। आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे चिंटू भाई, एक बात जानता है तू?
4: क्या, पहले बता तो सही कौन सी बात।
3: जानता है सगाई और शादी के बीच थोड़ा समय क्यों रखा जाता है?
4: नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता क्यों रखा जाता है।
3: ताकि कोई ये ना कह सके कि मुझे दुर्घटना से बचने का मौका नहीं दिया गया।
4: ओ तेरी। तो दोस्तों, प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और हमें ढेर सारे मैसेजेस मिल चुके हैं और यहाँ पे हमें एक मैसेज दिखाई दे रहा है अलीना, जो कि हमें भेजा है अमरावती महाराष्ट्र से। और भेजने वाले हैं मोहम्मद सैयद हसन, जो कि लिखते हैं, दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानियां आपकी। जब भी कोई मुश्किल आती है, किसी मेहरबान की मेहरबानी याद आती है। तो इन्होंने हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन लिखकर भेजी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हसन जी। तो आइए सुनवाते हैं आपको इसी थीम पर एक बहुत प्यारा सा गीत।

मरियम, हमें खूब सारे मैसेजेस आते जा रहे हैं। तो हमें अगला मैसेज आया है नगीना से, अनिल मिनोचा जी का। ये कहते हैं, आज का टॉपिक मेहरबान या कृपालु दयावान, ये हर इंसान का एक आंतरिक गुण है। जब हम खुद को या किसी और इंसान में परेशानी देखते हैं, तब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। यही हमारा रूप, मेहरबान या दयावान रूप होता है। आज जो दुनिया के हालात हैं, मेरा मतलब लास्ट 5 ईयर से युद्ध चल रहे हैं, जिसका असर बहुत देशों तक पहुंच रहा है। जरा सभी ये लोग दयालुता दिखाएं तो ये समय मिनटों में हल हो जाए, लेकिन नहीं। तो इतनी ताकत इस शब्द में है। दो लाइन ये कह रहे हैं, पर्दों के साए में जिंदगी नहीं मिलती, दो कदम जो साथ आओगे दुनिया साथ मिलेगी। संकोच में बस दम घुटता है, दो सांसें खुलकर लो गैरों के साथ। आखिर तो सारी जिंदगी गैर ही जिंदगी भर साथ चलते हैं। अनिल विनोचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए और ये खूबसूरत सा मैसेज भेजने के लिए। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपके इस मैसेज के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत गीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो दोस्तों मैसेजेस का सिलसिला जारी है हमारी थीम के साथ, तो आइए जान लेते हैं कि हमें अगला मैसेज कहाँ से मिला है और वो मैसेज क्या है। तो वो कुछ इस तरह है, कुछ रिश्ते सिर्फ किस्मत से नहीं लोगों की मेहरबानी से भी बन जाते हैं। कभी किसी का एक प्यारा सा लव्स, कभी किसी की छोटी सी मदद दिल को ये एहसास दिला देती है कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। मेहरबान लोग खुद तो मुस्कुराते ही हैं, साथ ही दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी भर जाते हैं। और ये दिल को छू जाने वाला मैसेज हमें भेजा है हिना परवीन ने लखनऊ उत्तर प्रदेश से।
2: क्या खूब कहा हिना जी आपने। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला मैसेज हमें कहाँ से आया है। अगला मैसेज भेजने वाले हैं राहुल सिंह, ये हैं पटना बिहार से। ये कहते हैं आज के दौर में जहाँ लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मेहरबानी और अपनेपन से दिल जीत लेते हैं। उनकी बातें, उनका अंदाज और उनका साथ सब कुछ इतना सुकून देता है कि मुश्किल दिन भी आसान लगने लगते हैं। ऐसे मेहरबान लोग सच में किसी दुआ से कम नहीं होते। बिल्कुल सही कहा राहुल जी आपने।
1: और इसी के साथ हमें एक और मैसेज मिला है, कभी कभी दिल की मेहरबानी हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। एक छोटी सी तारीफ, थोड़ा सा साथ और दिल से किया गया एहसास इंसान को अंदर तक खुश कर देता है। शायद इसलिए कहा जाता है कि मेहरबान लोग जहाँ भी होते हैं वहाँ खुशियों की कमी नहीं रहती। और ये प्यारा सा मैसेज हमें मिला है आयशा जी की तरफ से, और ये उन्होंने हमें भेजा है इंदौर मध्य प्रदेश से।
2: तो चलिए दोस्तों इन सभी ने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे हैं, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आज का ये आखिरी खूबसूरत गीत।

0: तो दोस्तों, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने आपसे पूछा था एक सवाल, जो था पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत की ओर से कांस्य पदक किसने जीता था, जिसका सही जवाब है मनु भास्कर।
1: तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सही जवाब देने वालों के नाम, जो कि हैं धर्मेंद्र छीपा, नंद कुमार ठाकुर, दिनेश वर्मा, जॉन डी कैस्ट्रो, पुनाजी नावकर, ताज अंसारी, सुदर्शन शाह, अशोक सिंह, आसिफ चौधरी, देवशंकर तामोरिया, विजय सिंह महोबिया, बी आई धाकड़, हीरामणि वर्मा, राम कुमार रेवड़, बबलेश पवार, निसार सलमानी, जगदीश धाकड़, कमल सिंह, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, दिगर्शन गौड़, हल्के जयपाल यादव, फागुराम यादव, दिलशाद हुसैन, रोशन देवांगन, शाहजी भोड़के, संजय दिंगिया, सुरेश खुराना और हैं राधेश्याम पांडे, सदाशिव दौरात, रामशरण, रवि कुमार राहुल, गजानन येले, अरविंद कुमार, राजवीर सिंह यादव। मरियम, देख रही हो कि हमारे जो हम क्वेश्चन पूछते हैं ये बुझो तो जाने का, हमारे लिसनर्स कितने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं हमें खूब सारे मैसेजेस भेजने के लिए कि उनके नाम शामिल हो जाएं। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम अपने सारे लिसनर्स के जिन्होंने जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम शामिल कर सकें।
0: बिल्कुल,
1: तो हाँ मरियम, तो चलो और भी हमारे पास नाम है, जो कि है सुरेश गगनेजा, संजीव सागर, शमसुल कमर राही, उत्तम कुमार, प्रवीण चौहान, मिसबा शमसी, राजेश वर्मा, गंगा सिंह रावत, शकील अहमद इदरीसी, जाकिर मंसूरी, विथल सुरोशे, राष्ट्रपाल गजबीय, मुकेश कश्यप, गुरमीत सिंह, मोहम्मद सईद अब्बासी, नितेश कुमार देवांगन, नजबुल होडा, अभिजीत गवांकर, मोहम्मद रफीक पवार, विजय सुरलकर, यासीन अनजान, लाल मोहम्मद अंसारी, धीरज भाई रबाड़ी, दुर्गाराम साहू, शाहरुन नूर अंसारी, राजकुमार डूडी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, भागवत चौबे, अनिल विनोचा। मरियम, जैसे तुमने प्रोग्राम के, ये तो हमारे सही जवाब देने वालों के नाम थे, जैसे तुमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब जैसे हमारे लिसनर्स ने इतने प्यारे प्यारे हमें मैसेजेस भेजे, तो उनके मैसेजेस पढ़ के और उन थीम से रिलेटेड सॉन्ग प्ले करके मुझे भी अब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहोगी तुम हमारे लिसनर्स से?
0: मैंने तुम्हें पहले ही कहा था लीना कि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा होगा।
1: वैसे मरियम, मैं अपने लिसनर से ये कहना चाहूंगी, उन्होंने हमें मैसेजेस तो भेजे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें और ज्यादा हमारी थीम से रिलेटेड मैसेज भेजा करें, क्योंकि इस सब के जरिए दोस्तों आप हम लोगों से जुड़ते हैं। तो जितने ज्यादा आप हमें मैसेजेस भेजेंगे प्यारे प्यारे थीम से रिलेटेड, और कोई भी हमारा जैसे सेगमेंट होता है उसके अंतर्गत आप हमें मैसेजेस भेजेंगे, वो सब हमारी कोशिश रहेगी कि हम शामिल कर सकें और आपके नाम पढ़ सकें, जो आपके खूबसूरत मैसेजेस हैं उन्हें शामिल कर सकें, जिसके ज़रिए आप और हम जुड़ते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, उम्मीद है हमें आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के ज़रिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
0: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288, और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। आप सभी लोग हमें अपना प्यार दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, और अपनी साथी मरियम जैदी
1: और अलीना को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिप्पे थिरी ओर्पो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
3: 19 मई 2026 की ये तिथि है

0: पीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू की
0: राम राम।
1: तो भाई गंगाराम।
0: हाँ भैया झुमरू।
1: भाई क्या बात, आज तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही
0: है
1: भैया।
0: अरे ऐसे ही लगा रहे, आजकल खेती बाड़ी के काम बहुत है भाई, सारे काम निपटाए।
1: अच्छा
0: तो आ गए।
1: वाह, हमें लगा कि तुमने भैया गेहूं का काम और भाई फिर बुआई का काम और जो सारा काम निपटा के आए हो भैया।
0: बिल्कुल, देखो बीच में काम छोड़ना मेरी समझ में नहीं आता। पूरा काम निपटा दिया तो एक तरफ दिमाग हो गया।
1: बहुत बढ़िया।
0: हाँ
1: तो भाई देखो, जहाँ तक बात है एक तरफ दिमाग करने वाली,
0: हाँ,
1: तो भैया रवि की जो मौसम की भैया हमारी फसल थी वे तो लगभग हमारी पूरी हो गई है।
0: ठीक।
1: और ये हमने सारा काम निपटा लिया भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना भैया।
0: हाँ।

0: सुनते हैं यो बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का पाठ तीन।
1: ठीक है भैया।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
1: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
0: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
2: अरे मास्टर जी।
1: हाँ भैया।
2: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहला रहा है।
1: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
2: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
1: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
2: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
3: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
4: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
5: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
0: स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
6: और भैया मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह।
0: तो भाई देखो हम आज की यो पाठशाला लेकर आ गए हैं और हमारे किसान भाई जो है जानकारी सुनने के लिए तैयार बैठे हैं।
6: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, क्योंकि आज का पाठ नंबर है 3 और भाई बासमती धान की जानकारी लेने के लिए किसान भाई भी इस समय बहुत उत्सुक है।
0: तो भाई देखो जहाँ तक बात है बासमती धान की,
6: हाँ।
0: तो भाई देखो हमारे बहन भाइयों ने बीज की व्यवस्था लगभग कर ही ली है।
6: बिल्कुल कर ली।
0: और हमारे किसान भाई लगे हुए हैं कि भैया उत्तम बीज कहाँ से मिलेगा,
6: हाँ।
0: सबसे बढ़िया बीज कहाँ से लाना है,
6: कौन सी प्रजाति बोनी है।
0: तो भाई देखो हम बासमती धान की रोपाई के लिए यानी कि भैया बासमती धान लगाने के लिए तैयार करनी पड़ती है अपनी नर्सरी।
6: देखो भैया धान के लिए सबसे पहले जरूरत नर्सरी की पड़े करे। अब भाई नर्सरी किस खेत में लगानी है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, कैसे उसकी बुआई करनी है, ये बातें ध्यान में रखने की होए करे।
0: भाई देखो अगर हमारी नर्सरी समझ लो बढ़िया हो गई तो आप यूज समझ लो कि 50% फसल बढ़िया होने की गारंटी हो गई।
6: बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। तो इसलिए नर्सरी का प्रबंधन करना, नर्सरी की बुआई सही समय पर सही तकनीक के द्वारा करना, ये जानकारी होनी चाहिए भैया।
0: तो भाई देखो हम किस तरीके से बासमती धान में नर्सरी प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि भैया कैसे हम नर्सरी लगा सकते हैं, कैसे बीज की बुआई कर सकते हैं,
6: जी जी,
0: और किस तरीके से भैया हम नर्सरी लगाने के लिए खेत की तैयारी करनी है, भाई इस बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर रितेश शर्मा जो कि संयुक्त निदेशक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में, भैया हमारे कार्यक्रम में आ गए हैं।
6: बिल्कुल आ गए हैं। तो भैया देखो डॉक्टर साहब भी इस समय इस विषय से संबंधित जानकारी देने को तैयार बैठे। भाई देखो लगे हाथों आप डॉक्टर साहब से बातचीत कर लो।
0: तो भाई जब ऐसी बात हो तो भैया बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं।
6: ठीक है भैया।
0: किसान भाइयों इस समय हमारे किसान भाई बासमती धान में नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे बहन भाइयों ने बीज की व्यवस्था कर ली होगी, बीज वो ले आए होंगे। तो नर्सरी प्रबंधन हमें किस तरीके से करना है, कैसे हमें नर्सरी लगानी है, बीज का हमें जो शोधन है वो किस तरीके से करना है, आज इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश शर्मा जी जो कि संयुक्त निदेशक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
7: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये हमारी पाठशाला इस वर्ष भी शुरू हुई है तो कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको?
7: नहीं देखिए बासमती की पाठशाला सब लोग इंतजार करते हैं, वैज्ञानिक भी इंतजार करते हैं और हमारे किसान भाई और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी इंतजार करते हैं। इससे जो आकाशवाणी नजीबाबाद से ये जो मुहिम शुरू हुई है इससे हमने देखा है कि काफी बासमती की खेती में सुधार आ रहा है, क्योंकि बासमती एक्सपोर्ट होती है तो जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू की समस्या है वो थोड़ी सी शायद कम हो रही है और किसान अवेयर हो रहे हैं। इसके साथ मुझे उम्मीद है कि इस पाठशाला के माध्यम से जो किसान भाई जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको अपने खेतों में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो उपज होगी उसका भी रेट अच्छा मिल सकेगा, क्योंकि जब आप गुणवत्ता वाला उत्पाद तैयार करते हैं जो आपकी फसल होगी उसमें ऐसी क्वालिटी होगी तो निश्चित रूप से वो मंडी में एक तो सबसे पहले बिकेगी और अच्छे रेट में बिकेगी, और यही उद्देश्य है बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान और आकाशवाणी नजीबाबाद।
0: बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर साहब हम जो है इस समय बासमती धान की जो है फसल की तैयारी शुरू कर रहे हैं और बीज की व्यवस्था हमारे भाइयों ने कर दी है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि जो हमारे भाई अभी तक बीज नहीं ले पाए हैं तो कौन सा बीज हमें लाना है, कौन सी हमें प्रजाति लगानी है। तो एक बार डॉक्टर साहब ये जानकारी हो जाए कि इस समय कौन कौन सी प्रजाति हमारे किसान भाई इस

0: लगा सकते हैं?
1: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस समय किसान भाई इसी तैयारी में है कि वो अच्छा बीज ले लें
0: जी
1: और बीज की कैसे वो नर्सरी डालें, पनीरी डालें।
0: बिल्कुल
1: पिछले एपिसोड में उसकी सीधी बिजाई की बात आप बता चुके हैं,
0: जी
1: तो मैं बता दूं कि सबसे पहली बात, किसान भाइयों को बीज खरीदने से पहले ये तय करना है कि कौन सी प्रजाति का बीज उनको लेना है।
0: बिल्कुल
1: तो प्रमुख प्रजाति हैं उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1, CSR 30, जो बासमती CSR 30 है, ट्रेडिशनल वेराइटी है।
0: जी
1: कुछ लोग Type 3, जिसे देहरादूनी बासमती या बासमती 370 है, वो भी लगा सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी प्रजाति लें, लेकिन जब आप बीज खरीदने जाएं, तो पहला काम तो ये करना है, यदि आप किसी कृषि विश्वविद्यालय या किसी सरकारी संस्थान से ले रहे हैं, जैसे बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन मोदीपुरम भी आपको बीज उपलब्ध कराता है, तो वहां से तो आपको बिल मिलेगा ही मिलेगा।
0: जी
1: लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, या तो आप प्रमाणित बीज लेंगे, जब आप बाजार में जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, तो आप ध्यान रखें, यदि प्रमाणित बीज ले रहे हैं तो उस पर नीले रंग का एक टैग लगा होगा।
0: अच्छा
1: आपने खुला बीज नहीं लेना है, सीलबंद थैले ही आपने खरीदने हैं, और उसका पक्का बिल जरूर लेना है, क्योंकि यदि बीज की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी तो आप कितनी भी मेहनत कीजिए, आप बहुत अच्छी फसल नहीं ले पाएंगे। तो इस समय किसी दूसरे के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, आपने जो है पहले अपने खुद से जाके देखना है, थैला सीलबंद है, उस पर टैग लगा है
0: जी
1: और बिल है, उसके बाद ही आप उस बीज को लेके आना है।
0: बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो ये हमारी अच्छी प्रजाति बताई है बासमती की, इनमें से जो भी हम प्रजाति लगाना चाह रहे हैं उसकी बीज की हमें व्यवस्था करनी है, चाहे हम BDF से लाएं या हम दूसरे संस्थानों से बीज प्राप्त करें, हमें पक्की रसीद अवश्य लेनी है, साथ ही जो नीला टैग है थैले पर वो हमें देखना है, और खुला बीज हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इन सब बातों को हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखना है। और डॉक्टर साहब, देखिए बीज की व्यवस्था करने के बाद में, प्रजाति का चुनाव करने के बाद में, बात आती है पनीरी डालने की, नर्सरी डालने की। तो किस तरीके से डॉक्टर साहब हमें ये नर्सरी डालनी है, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, जिससे कि हम एक अच्छी पौध तैयार कर सकें, अच्छी नर्सरी हम तैयार कर सकें?
1: जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सबसे पहले हर किसान भाई को ये तय करना है कि उसकी नर्सरी के अंदर एक भी दाना कमजोर, बीमारी ग्रस्त, खराब नहीं जाना चाहिए।
0: जी
1: एक एक दाना पहलवान जो हो वही आपकी नर्सरी में जाना है। तो आप कहीं से भी बीज लाए हों, चाहे आप हमारे BEDF से ही लेके गए हों, जिसे हम देश का सबसे अच्छा बीज कहते हैं, उस पर भी, और बाहर कहीं से लाए हो उस पर भी विश्वास नहीं करना है।
0: बिल्कुल
1: पहले उसको शुद्ध करना है, क्योंकि बीज बनता है मशीनों से, ग्रेडिंग होती है, और बहुत सारे हल्के दाने उसमें हो सकता है आपके बीज में ना निकल पाए हों। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, एक आप बर्तन लीजिए, उसमें आप पानी भरिए, हो सके तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें, जैसे 10 लीटर यदि पानी लिया है तो आप उसमें 300 350 ग्राम नमक मिला लीजिए।
0: जी
1: इसके बाद बीज के थैले को खोलकर धीरे धीरे बीज को गिराइए उसमें। क्या होगा, कुछ दाने ऊपर तैर रहे होंगे, कुछ तली में बैठे होंगे, जो ऊपर तैर रहे हैं उन सबको निकाल के फेंक दीजिए,
0: वो हल्के दाने
1: वो
0: हैं।
1: हल्के दाने हैं। जो हल्का है यानी कि उसके अंदर विगर कम है, ओज कम है, ताकत कम है, और ताकत कम है तो अगली फसल वो कैसे पैदा बढ़िया करेगा। तो एक तो ये है, या हो सकता है वो कीड़े का खाया हो या बीमारी से ग्रस्त हो, ये सारे कारणों से हल्का दाना रह जाता है, उनको आपने हटा दिया, और जो तली में बैठा है उसको एक बार साफ पानी में निकाल लीजिए। तो आप समझिए पहले आपने बीज का प्योरिफिकेशन कर लिया।
0: जी
1: इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको उपचार करना है,
0: बीज का
1: क्यों,
0: उपचार।
1: बीज का उपचार करना है। और बीज का उपचार करने के कई तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने 10 लीटर पानी लिया और 10 किलो बीज लिया, उसमें आपने 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से केमिकल डाल सकते हैं, और ज्यादा अच्छा हो आप 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 5 ग्राम स्यूडोमोनास प्रति किलो के हिसाब से उसमें डाल दीजिए, और 24 घंटे के लिए भीगने को छोड़ दीजिए। क्या होगा, सारा पानी लगभग वो जो आपका बीज है वो सोक कर लेगा और ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपने उसको नर्सरी में यूज करना है। दूसरा तरीका, अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, एक बाल्टी में पानी भरते हैं और उसमें बीज डुबो देते हैं, पानी थोड़ा ज़्यादा होता है,
0: जी
1: तो उसमें आपने 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज के हिसाब से डालना है, 24 घंटे भिगोना है, और उसके बाद दोनों ही विधि में जो भी 24 घंटे भिगोने के बाद है उसको आप एक ढेर बना के छाँव में रख दीजिए, उस पर 2-4 बोरी डाल दीजिए, या जूट की बोरी होती है उसके अंदर उस बीज को रख के और थोड़ा सा 1-2 ईंट से दबा दीजिए, तो क्या होगा, 24 घंटे को जब छोड़ते हैं तो सारे में कल्ले फूट आएंगे,
0: जी,
1: हल्का हल्का जो है आप देखेंगे कल्ला निकल आएगा, मतलब प्री जर्मिनेट हो जाएगा।
0: नाकू फूट जाएंगे।
1: हाँ जी, और
0: जी
1: फिर आपने मुख्य खेत नर्सरी के अंदर जो आपने क्यारी अच्छे से बनानी होगी, लेवलिंग बहुत जरूरी है, इस बीज को शाम के समय डालना है, सुबह नहीं डालना,
0: जी
1: सुबह डालेंगे थोड़ा सा भी पानी होगा, दिन में सूरज देखिए तप रहा है, 45 डिग्री अभी पहुंच गया और यही समय है नर्सरी का, तो पानी यदि गर्म होगा और वो नन्ना सा कोमल सा बच्चा जो अंकुर जरा सा निकला है उस गर्म पानी में वो खत्म हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि ये बीज तो जमा नहीं, बीज खराब था, तो
0: जी
1: आपने ध्यान रखना है शाम को डालना है और दिन में उसमें पानी भरा हुआ नहीं रहने देना है नर्सरी की क्यारी में, जिससे कि गर्माहट ना हो, 3-4 दिन ये करना है, रोज शाम को पानी लगाइए, सुबह लगाना है तो उतना ही लगाइए जो वो निकल जाए, और उसके बाद आप देखेंगे 4-5 दिन में सेट हो जाएगा, फिर आप उसको प्रयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बात बताई है किस तरीके से हमें बीज को तैयार करना है, उसका शोधन करना है और कैसे बीज की बुआई करनी है। तो ये सारी बातें आपने बता दी हैं और हमारे भाई ने सारी बातें समझ ली हैं। अब बात आती है डॉक्टर साहब, जो हमने खेत तैयार किया है, जहाँ पर हमने बीज की बुआई की है, तो जिस जगह पर हम पौधशाला तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर बीज की बुआई कर रहे हैं, तो उस खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, गर्मी में उसकी 2-3 बार जुताई कीजिए, जुताई करने से क्या होगा कि जो उसके अंदर बीमारी कीड़े और जो खरपतवार हैं वो ख़त्म होंगे, उसके बाद आप बहुत अच्छे से खेत को तैयार कीजिए और आप इसमें क्यारियां बना लीजिए।
0: जी
1: जनरली किसान भाई बहुत बड़ी बड़ी क्यारी बना लेते हैं तो उसमें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं सलाह दूंगा लंबी तो आप कितनी भी लें लेकिन कोशिश करें चौड़ाई उसकी 1.5 से 2 मीटर की रखें और अच्छे से उसको जुताई करके पानी भर के कद्दू कर लेंगे, उसी में आप शुरुआत में यदि आपने गेहूं की फसल में DAP डाली है तो अब DAP की जरूरत नहीं है, NPK मिक्सचर है वो आप डाल लीजिए थोड़ा सा,
0: जी
1: और उसके बाद लेवल करके, फाइनल लेवल करके हल्का सा क्या करेंगे, कोई लकड़ी सी चला दीजिए तो क्या होगा, गाद सी जैसे होता है ना, मिट्टी जो पानी है वो गंदा सा हो जाएगा,
0: जी
1: जब बीज डालिए तो वो गंदा पानी में जो मिट्टी है वो उस बीज के ऊपर बैठ जाती है, बहुत हल्की सी लेयर बन जाती है, तो उससे चिड़ियाएं नुकसान नहीं करती। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना है जो सबसे आवश्यक है, वो ये है कि आपने 1 किलो बीज के लिए कितना एरिया लेना है।
0: जी बिल्कुल
1: हम लोग ऐसे ही क्यारी बना के अंदाज से बीज डाल देते हैं और अधिकतर नर्सरियों की हालत ये होती है कि एक दाने के ऊपर दूसरा दाना चढ़ा होता है और जब वो दाना अंकुर निकलता है और उसे खाना चाहिए तो वो आपस में ही लड़ते हैं और हमारी पौध बहुत अच्छी नहीं हो पाती। इसके लिए क्या करना है, 1 किलो बीज के लिए कम से कम 25 वर्ग मीटर जगह लेनी है।
0: जी
1: 25 वर्ग मीटर का मतलब आप समझ लीजिए 5 मीटर लंबाई, 5 मीटर चौड़ाई, या 10 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर चौड़ाई, तो ये 25 वर्ग मीटर हो गया। इसमें 1 किलो बीज डालेंगे तो लगेगा दाने थोड़े दूर दूर हैं,
0: जी
1: मतलब हर दाने को प्रॉपर स्पेस मिलेगा, क्योंकि वो दाना जो अपना बढ़वार के लिए जो भोजन लेता है वो मिट्टी से ही लेता है, तो उसकी जड़ें जब नीचे जाएंगी आपस में लड़ेंगे नहीं, सबको खाना मिलेगा, तो एक एक दाना, पहले ही आपने पहलवान बीज बना लिया है और बोआ है तो एक एक पौधा बहुत अच्छा बनेगा और 18, 20, 22 दिन की पौध शानदार होगी जिसे आप अपने खेत में लगा सकेंगे।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब देखिए, अब सारी बात स्पष्ट हो गई है कि हमारे किसान भाइयों किस तरीके से बीज की बुआई करनी है, कैसे खेत को तैयार करना है। डॉक्टर साहब, यहीं पर हम एक बात हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे हम बीज की बुआई करते हैं और हमारी रोपाई होती है, तो ये पौधशाला हमें कब डालनी चाहिए, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: ये भी बहुत आवश्यक है। देखिए वेराइटी के हिसाब से कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तो
0: जी
1: हमारी गुणवत्ता नहीं बनती। बासमती एक इस तरह की चावल की किस्में होती हैं जिनके अंदर अलग तरीके की क्वालिटी होती है, खाने में आनंद आता है, उसमें एरोमा खुशबू भी आनी चाहिए, और वो सब गुण यदि चाहिए तो इसका मतलब है आपकी कटाई होनी चाहिए अक्टूबर के आखिर में या नवंबर में,
0: जी
1: यानी कि जब रातें ठंडी होने लगती हैं। यदि आप बुवाई के समय में ध्यान रखेंगे, जैसे कि

0: 101 जिसे PV6 बोलते हैं या PV1, इनकी जो आपकी ट्रांसप्लांटिंग करनी है वो आपने 20 जून से 15 जुलाई के बीच में करनी है,
1: अच्छा
0: यानी कि आप इसकी पौध 25 मई से और 10 जून तक डालेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन बाकी सारी वैरायटीज जो हैं जैसे 11, 21, 17, 18, 18, 85, इनकी आप रोपाई 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छी गुणवत्ता की फसल मिल सके। और यदि जब रोपाई हमें 1 जुलाई से करनी है तो इसका मतलब है कि हम इसकी नर्सरी 10 जून से लेके और 20 जून के बीच में डालें।
1: बिल्कुल
0: बाकी जो कम अवधि की हैं जैसे पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1847, इनकी नर्सरी भी आपने 15 जून से और 10 जून से और 25 जून के बीच में डाल सकते हैं, और 20-22 दिन की पौध लगानी है।
1: तो इस तरीके से किसान भाइयों हमें रोपाई के हिसाब से अपनी पौध को डालना है, यानी कि 21 से 25 दिन की पौध का हमें इस्तेमाल करना है, और जिस समय हम अपनी धान की रोपाई करना चाह रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें अपनी पौधशाला डालनी है, अपनी नर्सरी डालनी है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते बीज के चुनाव के बारे में, बीज के शोधन के बारे में और नर्सरी डालने के बारे में क्या राय मशवरा आप हमारे भाइयों को देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं चलते चलते यही कहूँगा कि बचपन में बच्चे की देखभाल जैसे अच्छी की जाएगी तो उसका जीवन आगे अच्छा चलेगा, ऐसे ही नर्सरी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। नर्सरी बहुत थोड़े एरिया में होती है, उसमें आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की खास तौर से नर्सरी में देखा गया है जिंक की कमी हो जाती है, तो जिंक यूरिया का प्रयोग आप जब आप नर्सरी डालते हैं उसके 8 दिन 7 दिन बाद अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि वो दिक्कत ना हो किसी तरह की। और जब भी नर्सरी में कोई कमी नजर आती है, यदि सफ़ेद रंग हो रहा है तो आपने समझिए कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है, तो वैज्ञानिक की सलाह लेते रहिए। आकाशवाणी नजीबाबाद से लगातार आपको बासमती पाठशाला के माध्यम से बताया जा रहा है, आप यहाँ से भी पूछकर और यहाँ से सुनकर अपनी खेती को करेंगे तो निश्चित रूप से बासमती में आपको फायदा ही फायदा होगा।
1: तो इस तरीके से हमारे किसान भाई अपनी नर्सरी को डाल सकते हैं, बीज प्रबंधन कर सकते हैं, अच्छी पौध तैयार करके हम अच्छी फसल बासमती की ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में और आपने नर्सरी प्रबंधन के बारे में, बीज के चुनाव के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बासमती धान की नर्सरी प्रबंधन और खेत की तैयारी, झुमरू भैया, इस संबंध में तमने डॉक्टर रितेश शर्मा जी से बड़ी अच्छी बातचीत करी।
1: देखो भैया, डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है कि भैया हम कौन कौन सी प्रजाति लगा सकते हैं
2: जी जी
1: और
2: जी
1: वह किस तरीके से बीज की व्यवस्था कर सकते हैं, और भैया देश का सबसे बढ़िया उत्तम बीज
2: हाँ
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ से मिल सकता है।
2: बिल्कुल, और देखो बीज तो किसान भाई ले ही आए हैं।
1: हाँ
2: और भैया डॉक्टर साहब ने यू भी तो बताया कि भाई हमें जो रोपाई करनी है वो किस समय करनी है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भैया 25 मई से हमें नर्सरी की बिजाई कर देनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और देखो भाई डॉक्टर साहब ने बताया हा कि जब हम नर्सरी डालने से पहले बीज को लेकर आओ, यानी कि बीज की व्यवस्था कराओ, बीज की खरीदारी कराओ,
2: जी
1: तो भैया उसमें सबसे पहला हमें ये देखना कि भैया जो हमारा थैला है उसपो कौन सी प्रजाति लिखी हुई है,
2: जी जी जी
1: और भाई उसमें हमें नीला टैग देखना है। अगर नीला टैग लगा होया तो आप ये समझो कि वो प्रमाणित बीज है।
2: बिल्कुल। और देखो भैया, तुम तो बातचीत कर रहे थे और हम भी बातें सारी डॉक्टर साहब की सुन रहे थे, नोट कर रहे थे। डॉक्टर साहब तो भैया यू भी बता रहे थे, अक भाई हमें पहलवान बीज बोना, पानी में उसको डुबो कर देखना है, और जो ऊपर हल्का बीज है उसे एक तरफ कर देना।
1: अरे भैया, उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया तो कि भैया नमक का पानी में जो हम बीज डालना है।
2: बिल्कुल भैया, डॉक्टर साहब ने कहा लगभग 10 लीटर पानी में 300 ग्राम के आसपास नमक डालनी।
1: तो भैया उसमें जो हल्के दाने ऊपर आ जाएंगे,
2: हाँ
1: भारी और बढ़िया दाने नीचे बैठ जाएंगे, तो भैया हल्के यानी कि ऊपर जो दाने तैर रहे हैं उन्हें भैया हटा के अलग कर दो।
2: बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो देखो इन सब बातों का ध्यान हमारे किसान भाई रखेंगे तो बासमती धान की अच्छी पैदावार ले सकेंगे।
1: और भाई इस तरीके से हम जो है बासमती धान की बढ़िया नर्सरी तैयार कर सकेंगे।
2: बिल्कुल। तो भैया बासमती धान से संबंधित अधिक जानकारी लेने के लिए हम तो यही कहेंगे कि किसान भाई सुनते रहें प्रत्येक मंगलवार को
1: बासमती धान
2: रेडियो कृषि पाठशाला।
1: अरे
3: अरे मास्टर जी।
4: हाँ भैया।
3: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहला रहा है।
4: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
3: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना।

0: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
1: हाँ, देश किसान, किसान का मान, बासमती धान।
2: किसान भाई, करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
4: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
1: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
0: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
5: तो अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला, इसका पाठ 3। और गंगाराम भाई
0: जी, भाई
5: भाई बताओ, खेती बाड़ी कैसे चल रही है आपकी?
0: भाई खेती बाड़ी तो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन ये बासमती धान ने भैया देखो बड़ी अच्छी बात कही कि हमें जो अपनी पौधशाला है उसके बारे में अगर अब सजग हो गए तो हमें आने वाली फसल के मामले में बहुत फायदा होगा।
5: बिल्कुल भाई, सही बात है। देखो बहन भाइयों ने जो इस बात पर ध्यान दिया होगा और वे आगे को जब नर्सरी तैयार होगी हमारी तो उसमें भैया वो पूरी बात का ध्यान रखेंगे।
0: बिल्कुल।
5: और भाई बात ये होगी, देखो खेती बाड़ी काम तो सारे हो रहे हैं
0: ठीक,
5: लेकिन भाई गर्मी बहुत पड़ रही है।
0: भाई गर्मी पड़ रही है और गर्मी में देखो एक तरफ तो हमारे पशु परेशान, उधर फसल परेशान।
5: हाँ जी,
0: उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो भैया अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं।
5: हाँ हाँ हाँ,
0: तो वे व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं।
5: तो भाई देखो बात ये होगी, देखो जो हमारे पशु भैया, हम अपने साथ साथ अपने पशुओं का भी बचाव करना है
0: ठीक।
5: और उसमें भाई देखो दो तीन बातें हैं मोटी मोटी सी भाई। एक तो ये हो कि हम दोपहर में जो है भैया सुबह को जल्दी अपने पशुओं को पशुशाला में या छायादार स्थान पर बांध दें भैया।
0: बिल्कुल।
5: और जब दोपहर ढल सजा वो 4 बजे के आसपास, तब अपने पशुओं को बाहर निकालना।
0: बिल्कुल।
5: और भैया ताजा ठंडा पानी पशुओं को पिलामा और भैया जो है उन्हें कम से कम 2 बार दिन में नहलामा।
0: बिल्कुल। तो देखिए एक और बात है कि हम आजकल ठोस चारा ज्यादा देते हैं। जैसे भैया हमने गेहूं का भूसा दे दिया,
5: भूसा हो गया,
0: उसको या सानी कर दी, ये कर दिया, तो इन चारों में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है।
5: जी जी बिल्कुल।
0: तो जैसे हमें ना बार बार पानी पीने को जी कर,
5: ऐसी
0: भैया पशुओं का भी पानी पीने को जी करता। तो भैया हम ये ध्यान रखें कि कई बार पानी पिलाएं।
5: बिल्कुल।
0: तो अगर प्यास होगी तो पशु पी लेगा, नहीं होने की तो नहीं पीनेगा।
5: बिल्कुल भाई, इस बात का ध्यान रखना। और भैया हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने कि भैया खेती बाड़ी के साथ साथ भैया मौन वंशों का पालन कर रखा
0: ठीक।
5: भाई मधुमक्खी पालते हैं, शहद उत्पादन करते हैं। तो भैया जैसा हम अपने पशुओं की देखभाल करते हैं तो भैया हम अपनी मौन वंशों की यानी कि मधुमक्खियों की भी इसी तरीके से देखभाल करनी है भैया।
0: बिल्कुल। देखो जैसे आपने मौन वंशों की बात करी, तो भाई मौन वंश जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं।
5: बिल्कुल।
0: जैसे रानी मक्खी है, जैसे भैया उसके सैनिक है,
5: सैनिक है भैया,
0: श्रमिक है, तो हर एक का काम भी बटा हुआ।
5: बिल्कुल।
0: तो भाई आजकल दिक्कत जो आ जाती है कि एक तो जो फूल थे वे रहते नहीं है।
5: बिल्कुल
0: भाई, जैसे सरसों है वो बिल्कुल नहीं रहती या फूल थे नहीं रहते, तो विशेष रूप से दिक्कत ये रहती है कि वो या उन्हें चारा मिले कहाँ से मिले, यानी भोजन कहाँ से मिले, क्योंकि तो रस चूसते हैं वे तो।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो वाली एक समस्या है।
5: हाँ।
0: दूसरे पानी की कमी आ जाती है, पानी पीने की भी दिक्कत आती है। तो भैया इन दोनों का इंतजाम करने की जरूरत है आजकल।
5: तो भाई देखो हम अपने मौन बक्सों को भैया ऐसे स्थान पर रखना है, जैसे भैया हमारे आम के बाग हो गए।
0: हाँ।
5: और बाग के आसपास आपने देखा होगा ट्यूबवेल भी हमारे होते हैं
0: ठीक।
5: तो भैया हमारी दोनों समस्याएं हल हो जाएंगी।
0: हाँ।
5: एक तो तापमान वहां पर कम रहेगा, 6-7 स्थान पर रहेंगी हमारी मधुमक्खियां।
0: हाँ।
5: साथ ही जब ट्यूबवेल रहेगा वहां पर पानी की नाली भी निकलती है, तो भैया वहां पर जो है पानी भी उन्हें ठंडा मिलता रहेगा।
0: बिल्कुल।
5: और प्यास उनकी बुझती रहेगी।
0: बिल्कुल।
5: अब तीसरी बात भैया हमारी यो आती है कि भाई जो इस टाइम पर फूल नहीं रहते हैं और वे अपना जो है भोजन तैयार नहीं कर पाती हैं, शहद उन्हें नहीं मिल पाता इतना, तो वे इसके लिए हम जो है भैया कृत्रिम भोजन की जो व्यवस्था करनी है।
0: हाँ।
5: और कृत्रिम भोजन के रूप में भैया हम चीनी की चाशनी तैयार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
5: और चीनी की चाशनी बना के भैया उसे ठंडी करके और फिर भैया हम मौन बक्सों पर डाल सकते हैं, जिससे कि मधुमक्खी अपना भोजन उससे ले सके।
0: बिल्कुल। देखो इस टाइम तो सबसे जरूरी रहता है कि किसी भी तरीके से हमारी जो मधुमक्खियां हैं वो जिंदा रह जाए।
5: हाँ।
0: अब जिंदा रहेंगी तो भाई कोई भी चीज जिंदी रहेगी तो करखावेगी।
5: बिल्कुल भैया, आगे कुछ हो वो हमारा काम भी आवेगी।
0: हाँ।
5: और भाई गर्मी के इस मौसम भीषण भैया गर्मी हो रही है, लू चल रही है, तो भाई एक काम हमारे भाई ये भी कर सकते हैं कि भाई जो भाई जूट की बोरी है भैया उन्हें पानी में भिगो का अगर भैया हम मौन बक्सों पर डाल दें तो इससे भैया मौन बक्सों को ठंडक मिलेगी, जो हवा भैया अंदर मौन बक्सों में जाएगी तो भैया वो उस ठंडी जूट की बोरी से होते हुए जाएगी।
0: हाँ।
5: तो भैया ठंडी हवा अंदर पहुंचेगी, तो इससे भैया जो है मौसम सही रहेगा, तापमान जो ठीक ठाक हो जाएगा।
0: कहने का मतलब यह है कि एक तरह का कूलर हो जगह वो तो भाई हमें ध्यान यो रखना है कि किसी भी तरीके से अपने मौनवंशों को बचाना और ये बचाने के जो बहुत सारे तरीके आपने बताए ये बड़े कारगर हैं।
5: बिल्कुल,
0: तो हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई ने अपना मांगे।
5: तो भाई देखो, हम मौन बक्सों को भैया ऐसे ही स्थान पर रखना है जो छायादार स्थान हो, और भैया अगर पेड़ की छाया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें प्राकृतिक भैया मौसम मिलेगा, प्राकृतिक माहौल मिलेगा, तो जैसे माहौल की हमें आवश्यकता होती है अगर वैसा माहौल हमें मिलता है तो भैया एक तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है,
0: ठीक,
5: साथ ही भैया हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है, तो इससे भैया हमारा उत्पादन बढ़ता है, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो भैया हमारा लाभ भी बढ़ेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखो, लाभ के लिए ही हमने मौन जो है पाले हैं, जो हमने भैया मधुमक्खी पालन किया है वो लाभ के लिए तो करा है। तो भाई लाभ भी हो जाएगा आपका, समय आएगा जब हमारे काफी फूल होंगे, मौसम हमारा अनुकूल होगा, तो भैया ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन ये जो अब थोड़ा सा समय चल रहा है तेज गर्मी का, लू का, यानी कि खतरनाक समय कह लो
5: जी,
0: या यूं कह लो कि इसमें जो भैया मधुमक्खियों को बचाना ही मुश्किल पड़ रहा है, तो उसकी रक्षा करनी हमारा कर्तव्य बन गया है, और हमारे किसान भाई इस ओर काफी सजग होंगे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं।
5: बिल्कुल भाई देखो, और हमारे जो किसान भाई जो पशुओं का भी ध्यान रखेंगे, जो हमारे नवजात शिशु भैया उनका भी ध्यान रखेंगे, और साथ साथ भैया वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि भैया देखो हमें अपने पशुओं की भी देखभाल करनी है, खेती बाड़ी का भी भैया हमें अपना ध्यान रखना है, खेतों में भैया हमें काम करना है, तो भैया वो हम भैया भीषण गर्मी से बचना है, लू से बचना है, और जब भी भैया हम खेतों पर जाओ तो भैया सिर पर कपड़ा लपेट कर जाओ, साथ ही ठंडा पानी साथ रखा, और सुबह को जल्दी खेत पर जाओ, और भैया शाम को दोपहर बाद जो थोड़ा लेट चले जाओ, और लेट ही अगर खेत पर भैया हम आओ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा।
0: बिल्कुल, कुल मिलाकर ठंड में काम करना भैया, तो भैया काम आसानी से हो जाएगा, शरीर हमारा प्रभावित नहीं होने का।
5: बिल्कुल,
0: और हमें काम ही तो करना, कोई भाई धूम में काम करने से तो आपको कोई विशेष माला तो आपके गले में पड़नी नहीं, दुनिया भर की बीमारी की और परेशानी हो जाएगी।
5: हाँ बिल्कुल,
0: तो भाई हमें ऐसा काम करना है कि भाई काम भी हो जाए और बड़ा हमारा हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा।
5: बिल्कुल,
0: तो हम उम्मीद है कि किसान भाई तो बड़े तेज हैं।
5: तो मैं देखो बातचीत भाइयों से जारी है, लेकिन अभी सुनते हैं भैया ये कुछ जरूरी संदेश।
0: ठीक है भैया।
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
6: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: AIR at 90.
1: तो गंगाराम भाई,
2: हाँ जुमरू भाई,
1: भाई देखो गर्मी बहुत हो रही है भैया।
2: बिल्कुल।
1: और भैया गर्मी के इस मौसम में भैया अगर लाइट ना आवो,
2: हाँ।
1: तो भैया हाथ वाला पंखा बड़ा काम दे करो भैया।
2: भाई वो बात तो है।

0: हवा भी हो जाएगी, हाथ वाले पंखे तो हो जाओ, चाहे भैया पेड़ के नीचे बैठे रहो जाओ, चाहे बिजली आ जाओ, लेकिन भाई जो अंदर की हवा है वो जो बढ़िया फ्रेश जब होगी,
1: हाँ
0: जब भैया मनोरंजन की बात हो जाएगी।
1: तो भाई देखो, आत्मीय आनंद की जहां तक बात है तो भैया वो तो एक अच्छे गीत संगीत से मिलती है।
0: हाँ
1: तो भैया ऐसी बात हो तो भाई भाइयों को सुनवाते हैं यो प्यारी सी रागनी।
0: ठीक है भैया।

0: जानकारी है नहीं कि गर्मी बहुत पड़ी भैया।
1: तो भाई देखो, जहाँ तक मौसम की बात है तो भैया मौसम की चिट्ठी हमारे पास में है, और वह चिट्ठी हमें मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से।
0: ठीक।
1: और यहाँ से प्राप्त चिट्ठी के अनुसार भैया अगले 5 दिन भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में भैया भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है,
0: बिल्कुल,
1: और भैया हीट वेव यानी कि भैया लू चलने की भी संभावना है।
0: बिल्कुल, यानी कि यूं कह सकते हैं कि भैया दिन का तापमान बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है। और ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए भैया अपने खेती के काम को ध्यान में रखें, यानी कि जब भी घर से बाहर निकलें तो भैया आप अपने सिर पर कपड़ा या भैया गर्मी से बचाव का पूरा इंतजाम रखें,
1: बिल्कुल
0: पानी खूब

0: में, और भैया जहाँ तक हो सके सुबह शाम अपने काम निपटा लें।
1: बिल्कुल। और भैया जो हमारे खेत में खड़ी फसल है उनमें किसान भाई जो है पर्याप्त तो नमी बनाकर रखें, ताकि जो भैया खड़ी फसलें हैं वो पर्याप्त तो बढ़वार कर सकें।
0: बिल्कुल। देखो भाई, वैसे तो जो आपका अपना कार्यक्रम है, लेकिन आपकी अगर कोई खेती किसानी की, पशुपालन की, बागवानी की या कोई भी समस्या है तो आप हमें भैया खत लिख सकते हैं।
1: और भाई चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2467-63।
0: और भैया इसके अलावा देखो, अगर आपको चिट्ठी लिखने में कोई भैया परेशानी है, चिट्ठी कई बार नहीं मिलती, तो आप भैया हमें फ़ोन के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। माह के पहले और भैया पांचवें शुक्रवार को कार्यक्रम होता है हमारा हलो किसान,
1: बिल्कुल
0: और भैया माह के जो तीसरा शुक्रवार है उसमें हलो गन्ना किसान होता है, और भैया माह का जो आखिरी मंगलवार होता है, चौथा मंगलवार, उसमें भैया कार्यक्रम होता है हलो बासमती। तो इन सब में भैया जो भी आपकी समस्या है आप रख सकते हैं, उसके लिए भैया फ़ोन नंबर बताओ दें।
1: भैया हमारा फ़ोन नंबर है 9457-07-82-88। और भैया इसके अलावा हमारा लैंडलाइन नंबर है भैया, हमारा नजीबाबाद का स्ट्रीट कोड है 013-41, और फ़ोन नंबर है 230-105।
0: इसके अलावा भैया आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। और भाई देखो, अब समय जो है ज़्यादा बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो
1: तो
0: इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की, अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम,
1: और अपने भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।
0: किसान भाइयों,
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

0: किसान श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए, रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता, जिसमें दीपक कुमार सरोहा से बातचीत कर रहे हैं प्रमोद सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार। आकाशवाणी प्रसारण के 90 साल पूरे होने पर हमारे जो श्रोता हैं उनसे हम आपको मिलवा रहे हैं, आपकी मुलाकात करा रहे हैं। और 90 साल बेमिसाल, ये कितने बेमिसाल हैं और किस तरीके से हमने 90 सालों में अपने आकाशवाणी के प्रसारण को सुना है और आज हम उससे जुड़े हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री दीपक सरोहा जी, जो कि रेडियो के बहुत ही पुराने वो श्रोता हैं और रेडियो को किस रूप में जानते हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। तो दीपक सरोहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुला करके मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दीपक जी, देखिए हम बात कर रहे हैं कि हमारे आकाशवाणी के प्रसारण के 90 साल पूरे हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। जब 1936 में रेडियो का ये प्रसारण हमारा शुरू हुआ था, तब से अब तक हम निरंतर अपने सभी सुनने वालों के बीच में जा रहे हैं। तो आपने इन दिनों में जो 90 साल का ये सफर आकाशवाणी का पूरा हुआ है, आपने इसको कैसे जिया है, कैसे आपने इसको सुना है और रेडियो को आप कैसे लेते हैं?
2: सर, बात करें रेडियो की तो मैं मानता हूँ कि जब मैं लगभग 6 या 7 साल का हूँगा
1: जी,
2: उस समय लगभग 1980-85 में लगभग हमने रेडियो की शुरुआत देखी, अपने कानों में हमने रेडियो की आवाज सुनी और हमें लगता था कि वास्तव में जो गांव का माहौल है वो रेडियो के माध्यम से ही वहाँ एक हरा भरा नजर आता था और संगीत में नजर आता था। लेकिन आज जिस तरह से रेडियो को थोड़ा सा नजरअंदाज किया जा रहा है और यहाँ पे आज वास्तव में विजुअल जो इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से जिस तरह से आज जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो उसकी ओर आकर्षित हो रही है, लेकिन फिर भी आज भी रेडियो अपने आप को उन सभी के बीच में चुनौती देते हुए आज भी वो उन सबके सामने उपस्थित है और बहुत ही शानदार तरीके से जो अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। और मैं मानता हूँ कि रेडियो का स्थान कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो गांव के जो वे लोग, जो वृद्ध लोग थे, जो अशिक्षित लोग थे, जिनको जो है कुछ इस तरह का भारी ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी रेडियो के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान लेते थे और बहुत ही उसके द्वारा गीत संगीत सुनते थे तो वे बड़े ही आनंदित हो जाते थे और उनके मन में बड़ी उमंग रहती थी और समय उनका कुछ बंधा हुआ रहता था। जैसे कि कुछ लोग जो है शाम को 6 बजे 7 बजे खाना खाया, उसके बाद उन्होंने गीत संगीत सुने, या जैसे चौपाल की कोई बातें होती थी, लोग चर्चा करते थे तो वो संगीत सुनते थे, वहां पे अपनी मनपसंद के गीत सुनते थे तो बड़े ही आनंदित होते थे। तो रेडियो आज 90 साल की बात करें तो

0: बाद में भी जो है हम देखते हैं कि रेडियो पहले गांव में था, लोगों की चारपाई पर था, लेकिन आज रेडियो जो है लोगों की लग्जरी गाड़ियों में पहुंच गया है और गाड़ियों के माध्यम से। आज भी मैंने देखा, मैं अभी दिल्ली गया हुआ था तो गाड़ी थी लग्जरी, उसमें वो रेडियो के माध्यम से ही गाने सुन रहे थे। उन्होंने कोई उसमें ब्लूटूथ वगैरह या कोई और इंटरनेट यूज नहीं किया था, लेकिन उन्होंने रेडियो के माध्यम से उन्होंने सभी गाने सुने।
1: आपने बहुत अच्छी बात कही है दीपक जी। देखिए, जो आकाशवाणी है, जो हमारे रेडियो के जो कार्यक्रम हैं, वो हमारे सभी जो श्रोता वर्ग हैं उनके लिए प्रसारित किए जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, महिलाएं हों, या अगर हम बात करें खेती किसानी की तो चाहे वो किसानों के लिए कार्यक्रम हो, या हम सभी वर्गों के लिए अपने सब कार्यक्रम जो हैं प्रसारित करते हैं। और रेडियो के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन ये हमारे सभी सुनने वाले जो है वो प्राप्त भी करते हैं। जैसे भी आपने कहा कि इससे बढ़िया साधन कोई और है नहीं है, तो इसको ज्ञान का भंडार जैसे कहते हैं, तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए रेडियो को किस रूप में आप कहना चाहेंगे?
0: ज्ञान के भंडार में सर, जैसे आपने अभी बात कही कि मैं मानता हूँ कि ज्ञान के लिए तो विभिन्न क्षेत्र हैं, और विभिन्न जैसे कि अभी भाई एजुकेशन का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो वाला क्षेत्र है। तो उन क्षेत्रों में भी आज भी जो है, अगर नेट की बात करें तो हर गांव में आज भी जो है नेट नहीं पहुंचा है, तो वहां रेडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें, जैसे नए नए प्रोग्राम चलते हैं तो उन प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, उनको जो है कुछ ना कुछ ज्ञान कहीं ना कहीं से रेडियो के माध्यम से मिलता है। और ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें ना तो लाइट की जरूरत है और ना हमें इंटरनेट की जरूरत है। तो यदि हमें कोई ज्ञान लेना होता है तो इस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं, जो मनोरंजन से उत्प्रेरित भी होते हैं और जो ज्ञान से उत्प्रेरित भी होते हैं। तो हमें ज्ञान भी मिलता है और मनोरंजन भी मिलता रहता है।
1: बिल्कुल, देखिए आजकल विज्ञान का युग है। जैसे अभी आप कह रहे थे एक बात को कि आकाशवाणी के जो प्रसारण होते थे वो बहुत अच्छे होते थे और सभी लोग उसको बड़े प्यार से सुनते थे, चौपाल पर सुनते थे, अपने घरों में सुनते थे, या जहां भी जा रहे हैं रेडियो उनके पास में होता था। तो अब हमारे प्रसारण में भी बहुत ज्यादा पहले से सुधार आया है, जो विज्ञान की जो नई नई तकनीकें आई हैं हमारे प्रसारण से भी वो जुड़ी हुई हैं। अभी इस युग में नए नए ऐप आए हैं, जैसे अगर हम न्यूज ऑन AIR ऐप की बात करें तो उसके माध्यम से हमारे बहुत सारे श्रोता देश विदेश में बैठकर अपने सभी पसंद के कार्यक्रम सुन लेते हैं। इस नई तकनीक को हमारे सभी सुनने वालों ने किस रूप में लिया है, दीपक जी ये जानना चाहेंगे हम आपसे।
0: सर ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे आज जमाना जो है एप्लीकेशन का है, कि नए नए ऐप आ गए हैं, और जैसे कि अभी मैं देख रहा था यहाँ पे आकाशवाणी के लिए भी, आकाशवाणी से संबंधित जो भी प्रोग्राम हमें सुनने होते हैं उनमें एक तो ऑन AIR ऐप है।
1: नहीं, हमारा न्यूज ऑन AIR रेडियो का एक बहुत अच्छा ऐप है जिस पर आप आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम सुन सकते हैं।
0: अच्छा, तो सर जैसे अभी एप्लीकेशन की बात हुई है सर, तो एप्लीकेशन के माध्यम से बात अगर हम करें तो एप्लीकेशन के, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है और हर किसी के पास कहीं ना कहीं एंड्रॉइड मोबाइल है, तो एंड्रॉइड मोबाइल में जो है हम ऐप जो है बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। तो ऐप के माध्यम से अब जिस तरह से बीच में रेडियो के जो कार्यक्रम थे थोड़े से शिथिल हो गए थे, कम हो गए थे, लेकिन फिर पुनः जो है अब ऐप के माध्यम से फिर जागृति सी आई है और रेडियो आकाशवाणी के जो कार्यक्रम है पुनः लोग सुनना प्रारंभ कर दिया है, और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही लोग सुन पा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी ही एक इतना विस्तृत तरीके से जो है प्रसार कर रही है, तो आकाशवाणी के कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं लाभ मिला है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और देखिए आकाशवाणी भी निरंतर अपने सभी सुनने वालों तक पहुंच रहा है, अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर हम उनके बीच तक जा रहे हैं। ये जो अभी आपने कहा था कि रेडियो को आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, आपने हर तरीके के कार्यक्रम, चाहे वो मनोरंजन के कार्यक्रम हों या ज्ञान के कार्यक्रम हों, सभी कार्यक्रम आपने सुने हैं, तो आपने इससे क्या सीखा? क्या किसी कार्यक्रम को सुनकर आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है?
0: सर मेरे, मैं तो बचपन से ही मैंने जैसे कार्यक्रम को सुनता था, तो जैसे ये मनोरंजन का क्षेत्र था, जैसे गाने सुनते थे, धार्मिक गाने भी होते थे, फिल्मी गाने भी होते थे, लेकिन मेरे मन में सिर्फ ये रहता था कि ये आवाज जो आती है कहाँ से आती है, मतलब मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा होती थी मेरे कि भाई ये आवाज जो आती है हवा में कैसे आती है और हमारे कानों तक पहुंचती है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसे जानने की हमारे अंदर जो कहीं ना कहीं एक उत्कंठा सी होती थी। और फिर मैंने देखा भी, मैं जब 2005 के लगभग ऑल इंडिया रेडियो कार्यक्रम एक स्टूडियो में जो वहाँ प्रोग्राम बनते थे, तो मुझे वहाँ जाने का अवसर भी मिला।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ मतलब मुझे जो मेरे मन की कहीं ना कहीं एक अंदर से एक जो उत्कंठा थी या जिज्ञासा थी वो मेरी वहाँ जाकर के शांत हुई। तो मैंने जब थोड़ा सा नजदीक आया इसके रेडियो के, तो मुझे पता लगा कि वास्तव में कैसे कैसे इसका सिस्टम क्या है और किस तरह से प्रोग्राम होते हैं।
1: और आज देखिए वही आप देखते देखते और रेडियो को

0: सुनते सुनते आकाशवाणी के स्टूडियो में आपसे हमारी बातचीत हो रही है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको भी हमारे बहुत सारे सुनने वाले सुन रहे हैं रेडियो के
1: जी
0: माध्यम से।
1: सर, ये तो बहुत बहुत मैं आकाशवाणी नजीबाबाद का बहुत बहुत आभार जताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मुझे अवसर दिया, मौका दिया बोलने का। और मैं, ये मेरे बचपन की ही कहीं ना कहीं जिज्ञासा उत्कंठा थी जो आज मेरी पूरी हुई।
0: जी देखिए दीपक जी, जो हम अपना ये 90 साल का जो प्रसारण की जो हमारी यात्रा है जो हमने पूरी की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और हमारे सभी सुनने वालों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
1: मेरा संदेश यही है कि क्योंकि सबसे पहला जो माध्यम था रेडियो माध्यम था, और जो विजुअल है, विजुअल तो बाद में आया, लेकिन रेडियो जो है वो पूर्व से ही हमारी जो एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम पहले से सुनते चले आ रहे हैं। तो आज भी पुनः सभी जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, उनको आज भी रेडियो को उसी तरीके से लेना चाहिए, उसको कमतर नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि रेडियो किसी भी, चाहे वो कोई सी भी टेक्नोलॉजी आ जाए या कोई भी विजुअल टेक्नोलॉजी हो, उससे कहीं भी कम नहीं है। और रेडियो हर क्षेत्र में मैं मानता हूं कि बढ़ चढ़ के ज्ञान भी दे सकता है, और नॉलेज भी दे सकता है, और मनोरंजन के साधन भी दे सकता है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो प्रतियोगिताएं आजकल होती, उनकी प्रतियोगिता की तैयारी करने में भी रेडियो जो है बहुत कहीं ना कहीं हमारा माध्यम बनता है।
0: जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि हम अपने सभी श्रोता वर्गों के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। युवाओं के लिए हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम युववाणी चलता है, जिसमें हम अपने युवाओं के लिए उनके करियर को संवारने के लिए बहुत सारी जानकारियां उन तक पहुंचाते हैं। महिलाओं के लिए भी हम कार्यक्रम करते हैं। अगर खेती किसानी की बात की जाए तो कृषि जगत कार्यक्रम हमारे यहाँ से प्रसारित किया जाता है। हमारे बहुत सारे किसान भाई उस कार्यक्रम को सुनकर लाभान्वित भी होते हैं। तो आपके जीवन में कभी कोई ऐसा मोड़ आया है दीपक जी कि आपने रेडियो सुनी हो और अपने जीवन में वो बातें आपने जो है उतारी हो जो रेडियो में आपको बताई गई हो?
1: सर, रेडियो तो देखो बचपन से ही हमारे जीवन में आ चुका था, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे चाचा थे, हमारे ताऊ थे, वो एक रेडियो लिए रहते थे, और
0: जी
1: मैं उस रेडियो को काफी दिनों तक मैंने देखा, और उसी के माध्यम से हम सुनते थे। तो कुछ कार्यक्रम ऐसे होते थे कि जो मन में हमारे कहीं ना कहीं मस्तिष्क में एक ऐसी छाप छोड़ देते थे कि हमें लगता था कि यार हमें भी जो है कुछ बड़ा करना है। और सही बताऊं तो मेरे मन में हमेशा ये रहा कि यार कि मैं कुछ करूं ना करूं, लेकिन एक बार को अपनी रेडियो में या इधर इसी फील्ड में मैं अपनी पहचान जरूर बनाऊं।
0: जी
1: तो ये जो है सब रेडियो ने ही पैदा किया, क्योंकि रेडियो के माध्यम से ही हमें पता लगा कि वास्तव में कुछ इस तरह से भी होता है, और इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, और उसमें जो है किस तरह से मतलब हम प्रतिभाग ले सकते हैं, ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पर या आज आकाशवाणी नजीबाबाद ने मुझे यहाँ उसका अवसर दिया बोलने का, तो मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए जीवन का बहुत ही सुखद और सौभाग्यशाली क्षण है जो आज मेरे सपनों को पूरा किया है।
0: और दीपक सरोहा जी, आगे भी इसी तरीके से ये जो रेडियो का प्रसारण है, इसकी जो यात्रा है, ये प्रसारण यात्रा यूं ही चलती रहेगी। आप और हम यूं ही एक दूसरे के साथ में मिलते रहेंगे, कार्यक्रम करते रहेंगे और अपने सभी सुनने वालों तक पहुंचते रहेंगे। हम बस यही उम्मीद रखते हैं। और आगे, अभी हमने 90 साल पूरे किए हैं, धीरे धीरे हम अपने 100 साल भी पूरे करेंगे, उसके आगे भी बढ़ेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम अब संपन्न करते हैं। आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: 90 साल बेमिसाल रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे विशेष भेंट वार्ता, जिसमें दीपक कुमार सरोहा से बातचीत कर रहे थे प्रमोद सिंह। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम छाया गीत। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम छाया गीत में।

0: इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार करना।
1: अय्या,

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना फिल्म शागिर्द का गीत। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं लीजिए सुनिए छाया गीत कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म रफू चक्कर से। स्वर है शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले का, शब्द रचना है गुलशन बावरा की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

मुकेश की आवाज़ में आपने सुना फिल्म तीसरी कसम का गीत। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही छाया गीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे दें।

निशा गौतम की गाई चंद गजलों का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज शाम 7:32 पर। आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम शेरी नशिस्त। प्रतिभागी होंगे श्री इरफान आजमी, श्री सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी, श्री राशिद रहमान, सरिता जैन और शगुफ्ता परवीन। संचालन करेंगे श्री अथर शकील। समय याद रखिएगा आज रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात्रि 8:00 गीत संध्या कार्यक्रम में। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम में रात्रि 10:30 पर होगा पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कल के कार्यक्रम कुछ इस तरह रहेंगे। कल प्रातः 6:05 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। श्री रामचरित मानस गान प्रातः 6:30 पर। चिंतन का समय रहेगा कल प्रातः 6:40 पर। सुनीता सैनी का काव्य पाठ हमारे श्रोता सुनेंगे कल प्रातः 6:45 पर काव्यधारा कार्यक्रम में। प्रातः 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय होगा पौष्टिक दही। और खेती की बातें क्रम में कल प्रातः 7:10 पर पशुओं के लिए साइलेज बनाना विषय पर जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। सूरज के साथ साथ जानकारी और मनोरंजन से भरपूर इस कार्यक्रम का समय रहेगा कल प्रातः 7:31 पर।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है क्रम में कल प्रातः 9:25 पर हमारे श्रोता सुनेंगे ब्रह्मदेव आर्य की गायी रागनी। 9:50 पर समय रहेगा कार्यक्रम बात आसपास की का, वाचन स्वर एवं संकलन होगा अंकुर चौधरी का। प्रातः 10:00 भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा सुहाना सफर। कल दिन में 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में क्रम रहेगा बात है चौकी और साथ ही सुनिएगा लघु नाटिका बदलती तस्वीर, आलेख एवं प्रस्तुति सहयोग अंजना।

का होगा। निर्देशक होंगे अंकित सैनी, प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा। समय याद रखिएगा कल दिन में 1:15 पर, और कार्यक्रम रहेगा घर संसार। विविध कलाकारों के गाए ब्रज के लोकगीतों का आनंद लीजिएगा हमारे लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर। कल संध्या 5 आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम होगा रिश्ता ये खास है। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर कल का आकर्षण रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज यूथ कनेक्ट, कहानी के उस पार में सिक्का बदल गया का एपिसोड 3 हमारे युवा श्रोता सुन सकेंगे, साथ ही आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पेट्रोल और डीजल के कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की

0: कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
2: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
4: जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में

0: 30 मई तक सभी विक्रय केन्द्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ सम्पन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बचरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोताओं आइए सुनते हैं निशा गौतम की गाई चंदा गजलें।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुगम संगीत के अंतर्गत इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं निशा गौतम की गायी चंद गजलों का।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुगम संगीत के अंतर्गत इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं निशा गौतम की गाई चंद गजलों का।

सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे निशा गौतम की गाई चंदा गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, आप पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत संध्या में। और आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए के गीत से। आवाज लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कि मैं कोई रिश्ता नहीं हूं जो तुम निभाओगे मुझे, जी हाँ, मैं कोई रिश्ता नहीं हूं जो तुम निभाओगे मुझे, मैं मोहब्बत हूँ, बस मोहब्बत से ही पाओगे मुझे।

मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है इस समय की संध्या। महसूस करोगे तो हर जज्बात समझ जाओगे, महसूस करोगे तो हर जज्बात समझ जाओगे। लफ्ज़ नहीं लहजे बयां करते हैं कि मोहब्बत में कितनी गहराई है।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अनजान का लिखा गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वर में। फिल्म थी बदलते रिश्ते। आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और कार्यक्रम है गीत संध्या। कार्यक्रम का अगला गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म माया से। आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की है, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत सलील चौधरी का। यूं ना तलाश करो मेरी आंखों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरे हुजूर से, स्वर मोहम्मद रफी का है, शब्द रचना है आसरा जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का। कि चेहरा देखकर कभी दिल लगाया नहीं हमने, चेहरा देखकर कभी दिल लगाया नहीं हमने, तेरी मुस्कुराहट पर बस कई बार जान लुटाई है।

मेरे हुजूर, आपने सुना इस फिल्म का गीत? स्वर था मोहम्मद रफ़ी का। गीत के बोल लिखे थे हसरा जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का अगला गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया हुआ। फिल्म है लाल पत्थर। गीतकार देव कोहली और संगीतकार

शंकर जयकिशन। बस इतनी सी मोहब्बत है हमें उनसे, बस इतनी सी मोहब्बत है हमें उनसे, खुश हो रहते हैं और अच्छा हमें लगता है।

श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म चेतना से आवाज़ मुकेश की है, और चलते चलते बस इतना ही कि इस तरह भी होता है इश्क। जी हाँ, इस तरह भी होता है इश्क, आजमा कर तो देख, बिना मिले भी उम्र भर चलता है ये सिलसिला।

मुकेश के गाए इस खूबसूरत गीत के साथ ही श्रोताओं आज का गीत संध्या कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं श्रोताओं साल 2006 में बनी फिल्म वो लम्हे के कुछ गीत। श्रोताओं ये एक बेहतरीन हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन किया है मोहित सूरी ने। फिल्म में जो मुख्य कलाकार रहे हैं वो हैं कंगना रनौत, शाइनी आहूजा, शाद रंधावा और पूरब कोहली। फिल्म के गीतों की अगर बात करें तो फिल्म के जो गीत हैं वो काफ़ी सरल और बेहद खूबसूरत रहे हैं। फिल्म में संगीत दिया है इन गीतों को प्रीतम ने और जो गीत लिखे हैं वो सईद कादरी ने लिखे हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म वो लम्हे से कुछ गीत कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म जावेद अहमद की आवाज़ में।

एक ही फिल्म से क्रम में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म वो लम्हे के कुछ गीत। श्रोताओं, वो लम्हे के गीत जो आप इस समय सुन रहे हैं, इस फिल्म में कंगना रनौत ने एक्टिंग की और उनकी एक्टिंग और मोहित सूरी के निर्देशन की काफ़ी जमकर तारीफ भी की गई। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए कंगना रनौत को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार भी मिला। तो आइए सुनवाते हैं आपको इसी फिल्म का गीत जिसे गाया है केके ने।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

एक ही फिल्म से क्रम में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म वो लम्हे के कुछ गीत, कार्यक्रम का अंतिम गीत ग्लेन जोन की आवाज़ में।

0: एक ही फिल्म से क्रम में आज हमारे श्रोताओं ने सुने साल 2006 में बनी फिल्म वो लम्हे के कुछ गीत, और अब इस गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे।

0: हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच

0: सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
1: That we will convert the current situation.
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है।

0: शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन

0: for the playoffs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade. Attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS Summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शिमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटीज में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: जनरल मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहिदा मौकिफ है जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि

0: मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी जरूरत के तईं अपने अज़्म का इयादा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ़ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा तआवुन की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं। बिलखुसूस तनाज़ियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वज़ीर आज़म मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं। जना मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मजीद तफसील वज़ीर आज़म के इटली के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके साथ गए हमारे नुमाइंदे से।
2: वज़ीर आज़म पांच मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले पर आज इटली पहुंचने वाले हैं। तवक्को है कि यह दौरा कई अहम शोबों में भारत इटली क्लीदी शराकतदारी को नई बुलंदी अता करेगा। इम्कान है कि तिजारत, सरमायाकारी और सनती पार्टनरशिप से मुतालिक शराकतदारियों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही मुल्क अपनी इक्तसादी वाबस्तगी को मजबूत करने और तआवुन के नए शोबे तलाश करने के ख्वाहां हैं। दौरे के दौरान आला सतह के मुज़ाकरात के बाद ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा, जो इस वक्त भी इंतहाई मजबूत हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर दाखला और इमदादी बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा पांच बरस में मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता कबायली खत्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरका तौर पर एक साइंसी लाइहा अमल तैयार किया है।
3: बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं। यहां नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है।
1: इससे कबल मरकजी वजीर दाखला ने जगदलपुर में बस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला और सीनियर ओहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। शिमाल मशरकी रियासतों के दस्तकारों और बुनकरों के ग्रुप ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दस्तकारों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में एट होम तकरीब के लिए काम करने के अपने तजुर्बात बताए और अपने हुनर को पेश करने के मौके के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दस्तकारों और बुनकरों की मदद की जरूरत पर जोर दिया, ताकि उनका रिवायती फन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो खुद कफील बन सकें। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह दौरा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दूतरफा ताल्लुकात और इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रियासती अकलियती कमीशनों से जोर देकर कहा है कि वो अकलियती फिरकों के मामलात और शिकायतों से निमटने में सरगर्म रोल अदा करें। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में आज मुनक्किदा रियासती अकलियती कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के हर शहरी की बहबूद और तरक्की के तसव्वुर के साथ काम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली मरतबा इंतहाई खतरनाक या लाइलाज बीमारियों में मुबतला कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। अदालत ने इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज और अवाम की हिफाजत की जरूरत का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अर्जदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आजादी के साथ चलने फिरने के हक का भी अहाता करता है, जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा ना हो। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम शेरी नशिस्त। प्रतिभागी हैं श्री इरफान आजमी, श्री सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी, श्री राशिद रहमान, सरिता जैन और शगुफ्ता परवीन। संचालन कर रहे हैं श्री अथर शकील।
1: मोहतरम सामीन खातीनो हजरात, अथर शकील नगीनवी का प्यार भरा आदाब। आज की इस आकाशवाणी नजीबाबाद रेडियो स्टेशन की शेरी नशिस्त में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आइए हजरात, आज की इस शेरी नशिस्त में शिरकत करने वाले शोरा इकराम के अस्माए ग्रामी मैं एक मरतबा पढ़ देना चाहता हूँ। मोहतरम इरफान आजमी साहिब दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, परवीन शगफ साहिबा भी दिल्ली से तशरीफ लाई हैं, राशिद रहमान साहिब मेरठ से, सरिता जैन साहिबा भी दिल्ली से, डॉक्टर पॉपुलर मेरिठी साहिब भी मेरठ से और मैं अथर शकील नगीनवी नगीना से हाजिर हूँ। आइए आज की इस शेरी नशिस्त का आगाज करते हैं और एक ऐसे मोतबर और मुस्तनद शायर को दावत कलाम देते हैं जिनका ताल्लुक मेरठ से है। राशिद रहमान साहिब से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने कलाम से नवाजें। राशिद रहमान साहिब माइक पर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया अथर शकील साहब और आकाशवाणी नजीबाबाद के श्रोताओं को मेरा आदाब और एक मतला चंद शेर पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जिसमें कोई अदा नहीं होती,
1: जिसमें कोई अदा नहीं होती,
2: जिसमें कोई अदा नहीं होती उस पे तबीयत फिदा नहीं होती।
3: बहुत
2: उस पे तबीयत फिदा नहीं होती और तुम फरेबे वफा नहीं देते,
1: तुम फरेबे वफा नहीं देते,
2: तुम फरेबे वफा नहीं देते, मेरी दुनिया फना नहीं होती।
3: अच्छा है,
2: मेरी दुनिया फना नहीं होती और मैं भी इंसान हूँ कैसे ये कह दूँ,
1: मैं भी इंसान हूँ कैसे ये कह दूँ,
2: मैं भी इंसान हूँ कैसे ये कह दूँ, मुझसे कोई खता नहीं होती।
3: बहुत अच्छा,
2: मुझसे कोई खता नहीं होती।
1: क्या कहना है।
2: और हिजर में उनकी याद आते ही,
1: हिजर में
2: उनकी याद आते ही दर्द की इंतहा नहीं होती।
1: क्या कहना है,
3: क्या बात है।
2: दर्द की इंतहा नहीं होती और वो भी तड़पे यूं ही हमारी तरह,
1: वो भी तड़पे,
2: वो भी तड़पे यूं ही हमारी तरह, हमसे ऐसी दुआ नहीं होती।
1: वाह वाह,
2: हमसे ऐसी
3: दुआ नहीं
2: होती। और लाख कोशिश तो की है राशिद ने,
1: लाख कोशिश तो की है राशिद ने,
2: कोशिश तो की है राशिद ने, जिंदगी पुर मजा नहीं होती।
1: वाह वाह,
2: जिंदगी पुर मजा नहीं होती।
1: क्या कहें,
2: जिसमें कोई अदा नहीं होती उस पे तबीयत फिदा नहीं होती। वो आइए एक मतला और चंद शेर और हाजिर कर देता हूँ कि उस शोख से जिस दिन से मेरी आंख लड़ी है,
1: उस शोख से जिस दिन से मेरी आंख,
2: उस शोख से जिस दिन से मेरी आंख लड़ी है, दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है। दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है और पूछो न सनम मुझसे जुदाई का ये आलम,
1: पूछो
2: न सनम मुझसे जुदाई का ये आलम, लगता है कि जैसे ये कयामत की घड़ी है।
1: वाह वाह,
2: लगता है कि जैसे ये कयामत की घड़ी है।
3: अच्छा है, वाह वाह वाह,
2: शुक्रिया बहुत बहुत। और कोई भी यहाँ मेरी हिमायत नहीं करता,
1: कोई भी यहाँ मेरी,
2: कोई भी यहाँ मेरी हिमायत नहीं करता, ये भीड़ तो सूली पे चढ़ाने को अड़ी है।
1: वाह वाह,
2: ये भीड़ तो सूली पे चढ़ाने को अड़ी है। और बतौर खास कि सब रस्ते चले जाते हैं रुकता नहीं कोई,
1: सब रस्ते चले जाते,
2: सब रस्ते चले जाते हैं रुकता नहीं कोई, हालांकि बहुत देर से एक लाश पड़ी है, हालांकि बहुत देर से एक लाश पड़ी है। और मक्कारों दगाबाजों की चलती है यहाँ पर,
1: मक्कारों
2: दगाबाजों की चलती है यहाँ पर, सच बोलने वाले की यहाँ खाट खड़ी है, सच बोलने वाले की यहाँ खाट खड़ी है। और मक्ता पेश है कि मैं कई रोज से राशिद ये सोच रहा हूँ, मैं कई रोज से राशिद ये सोच रहा हूँ, वो कौन सी शय है जो मोहब्बत से बड़ी है, वो कौन सी शय है जो मोहब्बत से बड़ी है।

0: का।
1: शेर नशिस्त कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे, प्रतिभागी थे शेर फानाज में शेर सैयद जाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी शेर राशिद रहमान, सरिता जैन और शगुफ्ता परवीन। संचालन कर रहे थे श्री अथर शकील। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से बातचीत करेंगे अशोक पांडे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए भेंट वार्ता, जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से भेंट वार्ता कर रहे हैं अशोक पांडे।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खेलों में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में, कि किस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा आगे बढ़ करके खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं और तमाम सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एथलेटिक्स प्रशिक्षक नन्हे सिंह जी को। नन्हे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो और इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर।
1: नन्हे सिंह जी, जैसे कि बातचीत का जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के ऊपर है
2: जी,
1: तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल के बड़े आयोजन हैं या छोटे आयोजन हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं
2: जी,
1: जो लड़कियां आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का जो प्रतिशत है वो क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का दर क्या है, किस अनुपात में वो आ रहे हैं
2: प्रतियोगिताओं में? ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आते हैं वो ट्रेन तो नहीं रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं वो अपने जौहर का जहूर आकर के दिखाते हैं। बिना किसी टेक्निक के वो इतने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने दमखम से, जो देख करके लोगों को ये लगता है कि ये लड़का या खिलाड़ी किसी कोच द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, किसी गुरु द्वारा ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर ईश्वरीय देन है, ईश्वरी शक्ति ऐसी है, इसके अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, जैसे हम लोग गांव में ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर DOPRD इस तरह की प्रतियोगिताएं गांव में जब होती हैं, जैसे सुदूर अंचलों में नवगढ़ वर्ण प्रांतर की तरफ से अगर उधर जाते हैं उस एरिया में, जैसे मूसाखाड़ बंदा है, वहां भी लड़के अपना जो है ट्रैक नहीं है लेकिन उस ट्रैक में देखते हैं हम बाल्टी का पानी फेंक करके दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अखाड़ा खोद कर उसमें कूदते हैं, जैसे पोल वाल्ट है, बड़ा ही यह रिस्की गेम है, लेकिन पोल वाल्ट को क्या करते हैं, अखाड़ा खोद के एक बांस का पोल लेकर उसी पर गड्ढा बना के कूद के चढ़ते हैं। और इस प्रकार के लड़के जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जब वो शहर में आते हैं किसी गुणी के पास, किसी प्रशिक्षक के पास, तो उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ाकड़ा, ये आदिवासी लड़का था, मैराथन में कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, जैसे हमारे पास ही हीरालाल लड़का था भदोही का, बिल्कुल रॉ मटेरियल था। इससे पहले जगदीश विश्नोई जैवलिन थ्रो का लड़का था, मेरी पोस्टिंग उस समय राजस्थान में थी, गाँव का रहने वाला था, गंगानगर का रहने वाला था, और बोला कि गुरुजी किसी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट तो हम ही आई, तो ये बड़ा ही हमको अच्छा लगा। और बच्चे को हमने बुलाया कि नहीं बेटा तुम आओ, आकर के उसको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, और वही लड़का सिडनी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारतवर्ष की तरफ से प्रतिभाग किया और अपना प्रदर्शन वहां पर अच्छा किया।
1: कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और काम करती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे वो खोएंगे। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उन्हें कुछ न कुछ हासिल ही होगा, तो ऐसे में उनका जो जोश होता है काफी मजबूती से निखर करके आगे आता है कि हाँ, मैं इस प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम का परिचय दूंगा और मैं ही जीतूंगा। जैसे आपने उदाहरण दिया उस जेवलिन थ्रोअर का, कि उसने कहा कि प्रैक्टिस तो कितनी भी कोई कर ले लेकिन जीतूंगा मैं ही। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं खास करके जहां पर इससे संबंधित जानकारी भी नहीं लोगों तक पहुंच पाती है कि नए नए कौन से ऐसे खेल आयोजन हैं या खेल की ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें हमें हाथ आजमाना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें तो कायदे से इसका भी ज्ञान नहीं होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी कितने तरह की होती है। एथलेटिक्स में तमाम सारी विधाएं हैं, ट्रैक कितना होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी देर में हमको पहुंचना है, नेशनल रिकॉर्ड क्या है, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं। होती है जी। उसके बावजूद वो अपना पूरा दमखम लगा करके पूरी मेहनत करते हैं, तो ऐसे में आप लोग तो जाते हैं उन क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो सुदूर इलाके हैं जहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, खास करके खेलों को लेकर के जागरूकता नहीं है
2: जी।
1: तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्र से जो खिलाड़ी है उनको लाने में और वापस उनको ट्रेन करने में?
2: हम लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में जब जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उनके गार्जियन से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि उठा लो लंगोटा और दिखाने चलो कुछ मनुज हो तो पौरुष अखाड़े की हो। ये बड़ी हमको अच्छी बात लगी। और सुदूर जंगलों में, नौगढ़ के जंगलों में भेड़ा फार्म के पास में, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स हो रहा था, पुलिस खेल करा रहे थे लोग, पुलिस वाले वहाँ हमको बुलाए थे लोग, और उस नेक्स्ट लाइट बेल्ट से छोटी छोटी बच्ची आके एक दिन की इस माहौल को देख के दौड़ रहे हैं। कोई धोती पहने दौड़ रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी साधन के, और इस प्रकार की दौड़ लड़के दौड़ रहे थे। हमें इतना अच्छा लगा, जैसे परंपरागत खेल ग्रामीण अंचलों में वॉलीबॉल है, कबड्डी है, दौड़ है, एथलेटिक्स में से दौड़, आपने कहा कि उनको मालूम नहीं है, रेस है, जंप है, थ्रोज है, इन तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसमें वो ग्रामीण बच्चे जो जागरूक हैं, उनमें से जो कुछ पढ़ लिख के ऊपर आ गए हैं, वो हमसे, हम लोगों से संपर्क करके उन बच्चों को जानकारी देते हैं। डायरेक्ट जो लड़का हम लोगों के टच में है, उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट बताते हैं, और यह भी प्रयास करते हैं कि अगर इस बच्चे को कितना हम मदद कर सकते हैं, शहर में रख करके किसी से स्पॉन्सर भी कराते हैं, एक दो साल ट्रेनिंग के बाद यह प्रयास करते हैं कि यह लड़का खेल छात्रावास में आ जाए। यहाँ पर खेल छात्रावास जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का है और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का है, इन हॉस्टलों में हम लोग दाखिला दिलाते हैं उन गरीब बच्चों को, उन प्रतिभावान बच्चों को, कि आकर के अपने दमखम का, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो बच्चे दिखा सके, जो भविष्य के आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम अच्छा दें और अपने जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के झंडे को फहराएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारा लड़का एक यहाँ पर खिलाड़ी था राम सिंह, ये चोलापुर में बभियाओं गांव का रहने वाला था, और लंदन ओलंपिक में 42 किलोमीटर 195 मीटर की दौड़ होती है, उस रेस में भारतीय चुनौती को उसने पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इस तरह से गुलाबचंद चिरेगांव का रहने वाला लड़का है, संतोष कुमार भी चिरेगांव का ही है, ये सब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाए हैं। जैसे गुलाब हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में रह करके वो ट्रेनिंग करते थे, और वही खिलाड़ी हमारा गांव का रहने वाला, यहाँ रहते हुए उन्हें नेशनल में फर्स्ट किया, और अर्जुन पुरस्कार, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं गांव के जो अर्जुन पुरस्कार, बहुत से ऐसे खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बने हैं और कोच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं रहने वाले, बेसिकली मैं गांव का निवासी हूं, चंदौली जिले में धानापुर एक जगह है, धानापुर में एक गांव है डबरिया, उस गांव का मैं मूल रूप से निवासी हूं। और हम लोग भी जब गांव में स्पोर्ट्स करते थे तो ग्राउंड नहीं था, सड़क पर, पगडंडी पर ऐसे छर्री हुआ करती थी, स्पाइक भी नहीं थी, नंगे पैर दौड़ते थे, पैर छिल जाते थे, लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें खेल करना है, हमें जीतना है, हम खेल के माध्यम से अपने करियर को बनाना है और अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ना है कि भविष्य के आने वाले दिनों में हम भी एक दिन भारत के तिरंगे को फहराएंगे और भारतीय धुन को बजाएंगे, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। ये ऐसी अंदर से एक भावना थी कि नहीं, मैं करूं। और मैं खिलाड़ियों को, बच्चों को गाँव में जा करके यह बताता रहता हूँ कि नहीं, ये करो। जैसे एक लड़की आरती है, यही बगल पचराओं गांव की रहने वाली है, और वर्ल्ड स्कूल गेम में उसने भारत के लिए रजत पदक जीता। बहुत लंबी चौड़ी टीम गई थी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कूली गेम में मेडल जीतने वाली मात्र ही एक लड़की हुई। एक दूसरी लड़की गांव की है, सुमन यादव, हरहुआ ब्लॉक की है, और इसने जो है विश्व रैंकिंग में ये छठवां स्थान प्राप्त किया, जो गाँव की रहने वाली थी। जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में उसके गार्जियन जब लेकर

0: महिलाओं की जो प्रतिशतता है,
1: जी
0: लड़कियां भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आगे आए, दो चार पांच उदाहरण आपने दिए,
1: जी
0: इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है आज के समय में।
1: जी बिल्कुल,
0: तो
1: बढ़ाने की आवश्यकता
0: वो
1: है।
0: जो बढ़ाने की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का,
1: जी
0: खास करके खेलों में, वो उज्ज्वल हो।
1: इसको बढ़ाने के लिए पहले तो बच्चे का ब्रेन वॉशिंग करना है कि बच्चा उसके अंदर ये हो जाए कि हम खेल के बल से अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे लोग पहले कहते थे, जब भी हम लोग छोटे थे, गांव जाते दौड़ने वाले आवारा हो जाएगा, तो गार्जियन को यह बताना है। पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, यह कहावत चलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो खेलों के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी की पहिया तेज चलती है तेल से, उसी प्रकार बच्चों का दिमाग तेज होता है खेल से। तो इस खेलों को हमें गांव में ले जा करके सुदूर अंचलों में, ग्राम भारत की 80% जनता गांव में रहती, अब तो लोग शहर में आना शुरू कर दिए, लेकिन जो गांव में रहता है उसको गांव ही अच्छा लगता है। और गांव में जो चीजें मिलती हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध दूध, तो शहर की अपेक्षा कि गांव में ये सब चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ऑपरेटर्स उपकरण नहीं है। जैसे इसको लीजिए, पोल वाल्ट है, इतना महंगा है, खरीद नहीं पाएगा खिलाड़ी। जेवलिन है, 75-80 हजार की जेवलिन एक आती है, कहां से खिलाड़ी जितना गेहूं चावल बेचेगा तो एक तो सामान खरीदेगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ध्यान दे रही है, शिक्षक गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करें। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है
0: निश्चित तौर पर, और ये मोटिवेशन सरकार तो अपनी तरफ से दे ही रही है, अभिभावकों के अंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जागरूक करें, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के युवा खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, निकल करके आए और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ऐसा सरकार के संस्थान का जो प्रयास है इसको देख करके लगता है। निश्चित तौर पर वो जब इस तरह की प्रतियोगिताएं धीरे धीरे करके जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने राज्य का, अपने देश का नाम तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर निश्चित तौर पर वो मशहूर करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे सिंह से अशोक पांडे की भेंटवार्ता, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। अब सुनिए एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, खेल और खिलाड़ियों की बात करते करते हम आ पहुंचे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के BHU कैंपस में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी, और साथ में हैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ढेरों बालिकाएं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चूंकि खिलाड़ी को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक कोच की होती है, संजीव जी आप इन बच्चों के कोच हैं और स्पेशली आप एथलेटिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा, आपने एथलेटिक्स कोच बनने की प्रेरणा कहाँ से ली?
4: सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंपस में आई हैं, आपका स्वागत है, और आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोच बनने की प्रेरणा मैंने अपने फादर से ली, वो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहे, जेनेटिक था, खेले पढ़ते रहे, वो जानते थे कि इसका खेल, वो सारे स्कोप, चूंकि मेरे फादर थे तो उनको मेरे स्कोप के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझको BPA एमपीएड डिप्लोमा कराया। छोटी उम्र में ही मैंने कंटिन्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि कोच बनने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो मैंने कहा पापा अभी कोच तो नहीं बनना, अभी तो मैं खिलाड़ी बन रहा हूँ। बोले तो वहाँ जाओ, वहाँ सारे कैंपर रहते हैं, उनको देखना और करना, वो तो मक्का मदीना है खेल का। मैंने गया वहाँ खेला, चूंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक, अच्छे विद्यालय से एजुकेशन रहा हमारा, खेल खेलते खेलते हम कोच बन गए, और जो हमारा पैशन है वही हमारा प्रोफेशन हो गया है।
3: खेलते खेलते आप कोच बन गए और आपको लगा कि दूसरों को भी मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा संजीव जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए?
4: अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक व्यक्ति में ना ईमानदार हो, अनुशासन हो, और उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो, उसमें विश्वास हो। जिस प्रकार एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक सामान्य सा बालक अगर वो मेहनत करेगा तो कंटिन्यू अनुशासन से, ईमानदारी से, तो एक ना एक दिन वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
3: तो आपको लगता है कि एथलेटिक्स में, हम यहाँ पे विशेष तौर पे एथलेटिक्स खेलों की बात करेंगे, इसमें अनुशासन और मेहनत की विशेष भूमिका है?
4: हाँ मैम, बहुत ज्यादा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, एथलेटिक्स ऐसा गेम है ना, टीम गेम में क्या होता है कि अगर एक खिलाड़ी ने खराब खेला तो 9 खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं या 10 खिलाड़ी अच्छा करते हैं, तो उसकी जो कमियां होती छिप जाती हैं। लेकिन एथलेटिक्स ये है ना, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट।

0: पाएंगे। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां रहेंगी। ये आप पे ही निर्भर है और आपके कोच पे, आपको खुद करना है और खुद ही पाना है।
1: बिल्कुल, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की स्वयं की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो संजीव जी, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी यानी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बेहद जरूरी होती है। आप उनको मानसिक रूप से तैयार करने में किस तरह मदद करते हैं?
0: एक दूसरे खिलाड़ी को दिखाकर, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इनसे बाद में शुरू करते हैं और इनसे आगे चले जाते हैं, या जो इनसे आगे रहते हैं और उनसे कहते हैं देखो उसने प्रैक्टिस नहीं की तो देखो ये पीछे होगी, आपने प्रैक्टिस की आप आगे गई। मोटिवेशन से वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। और आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे स्पीच देने वाले हैं, इस इनकी बीच बीच में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साइकोलॉजी क्लासेस भी चलती रहती हैं। वो प्रोफेसर लेक्चर इनको साइकोलॉजी रूप से ट्रीट करते रहते हैं और इनको मोटिवेट करते रहते हैं। कोच का काम तो है ही करना मोटिवेट कि बेटा ये ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के लिए और इनके परफॉर्मेंस के लिए।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बताना और उनको तैयार करना, इसके अलावा एक कोच और खिलाड़ी के बीच में कहते हैं एक विश्वास का बंधन होना भी उतना ही जरूरी है?
0: बहुत जरूरी होता है। एक कोच होता है जो वो ना, वो एक प्रकार से पिता होता है और एक पिता सोचता है समझता है कि बच्चे को कब क्या किस चीज की जरूरत है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे हम घुड़सवारी में या घुड़दौड़ में ना, राइडर और घोड़े के बीच का संबंध जो होता है ना, वो उसकी हार्ट बीट से थपकी देता तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। उसी प्रकार बच्चे की फीलिंग्स और कोच की फीलिंग्स, उसकी आई टू आई कॉन्टैक्ट, इमोशन टू इमोशन जुड़ाव बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। कोच कुछ कहना चाहे बच्चा उसे पहले समझ जाए, ऐसी बाउंडिंग होनी चाहिए कोचेज और ट्रेनर्स में।
1: कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, एथलेटिक्स में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं।
0: बोलता है एथलेटिक्स तीन चीज पे आधारित होता है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। रनिंग में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, लड़कियों की 100 मीटर रेस, 3000 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस, मैराथन, इससे ऊपर वॉक रेस होती है ढेर सारी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमारे रनिंग इवेंट्स हैं। इसी प्रकार हम जंप इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें 4 जंप्स होते हैं, लॉन्ग जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है, हाई जंप होता है, पोल वॉट होता है। फिर हम थ्रो में आते हैं तो 4 प्रकार के थ्रो होते हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिन थ्रो। समानता 26 होते हैं, ये हर बार बढ़ते घटते रहते हैं ओलंपिक के अनुसार। अब चूंकि देश विकसित कर रहा है, समाज विकसित कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार से इवेंट्स बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं।
1: कोच सर, हम आपके पास प्रश्नों की बौछार लेके फिर आएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे साथ, थोड़ी उनसे भी बात कर ली जाए क्योंकि इवेंट्स की बात हो ही रही है। तो बच्चों, जय हिंद।
2: जय मैम।
1: सबसे पहले तो जल्दी जल्दी आप लोगों का नाम जान लेते हैं, है ना? तो अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं वो बताइए।
3: मैं अंकिता देवरिया।
4: मैं अदिति राय, गाजीपुर से।
5: मैं आरती, सोनभद्र से।
6: मैं सेजल, सेवापुरी से।
7: मैं मीनाक्षी, टिकरी से।
8: मैं शिवानी यादव, जो की जौनपुर की रहने वाली।
9: मैं आर एस सिंह, बाबतपुर से।
10: मैं रिचा यादव, बाबतपुर की।
11: मैं खुशी पटेल, आयर से।
12: प्रशिष्टि, मैं उन्नाव से।
13: गुंजन यादव, जौनपुर से।
14: पलक यादव, चंदौली।
15: अपूर्वा गुजर, फिरोजाबाद।
1: तो बच्चों, जब आप लोग ट्रेनिंग करती हैं, थोड़ा सा आप लोगों के रूटीन के बारे में जानना चाहेंगे, सवेरे से शुरुआत करें।
16: सुबह 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा नहाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए आएंगे दोपहर का।
10: लंच के बाद फिर थोड़ा पढ़ना रहते तो पढ़ लेते, फिर इसके बाद 4 बजे फिर ग्राउंड जाते, फिर वर्कआउट करते, फिर 6 बजे आते हैं वर्कआउट के बाद, 8 बजे फिर नाश्ता करते,
17: 6 बजे के बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे नींबू पानी वगैरह पीना होता है वो पीते हैं, फिर सर के साथ असेंबली होती है, फिर रात का खाना होता है, उसके बाद फिर मैम असेंबली कराती हैं, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते लिखते हैं, फिर सो जाते हैं।
1: तो जनरली आपका दिन कितने बजे तक खत्म होता है? लास्ट कॉल
16: 10 बजे तक।
1: तो बच्चों, मतलब क्या सोचा आपने कि हमें स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, ऐसा क्यों?
16: मेरा नाम खुशी पटेल है, मैं गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों ने भी बहुत फोर्स किया है मुझे गेम खेलने के लिए, फिर स्कूल में ऐसा गेम होता था तो मैं गेम खेलती थी, तो मेरे सर भी बोलते थे कि तुम प्रैक्टिस किया करो, गेम खेला करो हमेशा। हमने बोला ठीक है सर, हम करेंगे। फिर मेरे घर वाले सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किए गेम के लिए, फिर मैं धीरे धीरे करती गई, 1-2 साल घर पे प्रैक्टिस किए, गेम खेले, स्टेट तक घर पे मेडल दिया है, फिर उसके बाद साई हॉस्टल का ट्रायल दिए बीएचयू का, फिर यहाँ पे आ गए हैं, हॉस्टल में हो गया, 2 साल से हॉस्टल में रहते हैं।
1: तो खुशी, आप क्या खेलती हैं?
16: मैं 100 मीटर हर्डल करती हूँ और लॉन्ग जंप करती हूँ।
1: अच्छा। प्रशिष्टि, आप क्या खेलती हैं?
18: मैं ट्रायथलॉन और हर्डल करती हूँ।
1: आप कब से खेल रही हैं?
18: मैं अभी यहाँ पे 5-6 महीने से आई हूँ और सर के अंडर हमने बहुत ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सर हमारे लिए एज अ पेरेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से

0: हमारी वैसे ही केयर करते हैं और हमें वैसे ही समझाते हैं. हम इसके लिए सर के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं.
1: तो सर के पास वापस चलते हैं. कोच सर, ये अगला प्रश्न आपके लिए. इतने बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं?
2: कुछ मुश्किल से नहीं होता है, ये हमको समझते हैं, हम इनको समझते हैं. और भी कोचेज रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं. हमने वो पहले ही बता दिया था कि ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन बदल गया है. तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता है ये करते हैं बहुत हार्ड वर्क. जब ये हार्ड वर्क करते हैं तो हमको कराने भी मजा आता है.
1: संजय जी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल, खिलाड़ी और चोट बहुत आम बात है. तो जब बच्चों को किसी चोट का सामना करना पड़ता है तो उनको किस तरह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप किस तरह सपोर्ट करते हैं?
2: बिना सपोर्ट कुछ हो नहीं सकता मैम. अगर खिलाड़ी बनना है तो बहुत ढेर सारी चोटों का सामना करना पड़ता है. रोज चोट लगनी ही है क्योंकि हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो सामान्य से बहुत ऊपर रहते हैं, जिसमें ढेर सारी इंजरी, एंकल ट्विस्ट, नी इंजरी, स्टमक पेन, कुछ भी मतलब बाहरी और आंतरिक ढेर सारी चोटें लगती हैं. इनके लिए बीएचयू में अगर ज्यादा चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं. वार्डन मैम होती हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या फिर उनसे नहीं ठीक होता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं. इनके लिए साई ने व्यवस्था की है इनकी चोटे के लिए और उनका उपचार होता है.
1: कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं?
2: बिल्कुल, सावधानियां तो बरतनी.
1: खेल के दौरान?
2: हाँ, खेल के दौरान सावधानियां. ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें चोट कम हो. अब ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते हैं. कब क्या करना ये एक सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है. अब ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जिससे आपको चोटें कम लगती हैं और कोच को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे ट्रेनिंग करानी है कि चोट कम से कम लगे और चोट लगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या उपचार देना है. जैसे अगर चोट लग गई है, थोड़ी सूजन है तो सबसे पहले आइस देना है, थोड़ा सा उसको 10-12 घंटे देखना अगर सामान्य चोट है तो. उसके बाद अगर वो आप नहीं तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना उसको.
1: अच्छा, श्रोताओं, बातचीत के इस सिलसिले में अब हमसे जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीएचयू कैंपस के वरिष्ठ कोच श्री जगदीश द्विवेदी जी.
3: थैंक यू मैडम.
1: सर, साई की जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और आगे जो उज्जवल भविष्य है बच्चों का, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं साई इन बच्चों को उपलब्ध करा रहा है ट्रेनिंग से जुड़ी.
3: मैडम, ये बता दें कि एक जो बीएचयू सेंटर है वो गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास जो है वो पूर्वांचल का पहला साई छात्रावास है. और ये इसलिए यहाँ ओपन किया गया था कि हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इस सुविधा मिल सके. तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं जो हम सिलेक्शन जब करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और ये ऑल इंडिया लेवल पे ही है लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पूर्वांचल के बच्चियां ज्यादातर इसमें आए. तो कुछ हमारे मोटर एबिलिटी टेस्ट है
1: जी,
3: जो हम टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, फिर मेरिट के आधार पे उनको एडमिशन मिलता है.
1: सर, सुविधाओं की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए.
3: सुविधाएं की देखिए, आपको एक नेशनल आपके इंटरनेशनल कोच, टेक्निकल कोच मिलते हैं जो साइंटिफिक तरह से कोचिंग देते हैं, जिसका कि कोई एक तो बहुत बड़ी सुविधाएं आपको ये मिलती हैं. और इक्विपमेंट वगैरह हमारे सब नेशनल ओलंपिक लेवल के यहाँ पे रहते हैं. जो भी सुविधाएं हैं, जिम इक्विपमेंट वगैरह है, जिम्स है, या जो भी सुविधाएं हैं वो काफी काफी अच्छा तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, बाकी हॉस्टल की, हाँ, हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो काफी अच्छी हैं. इस पे जो भी बैलेंस डाइट वगैरह काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे. और जो बैलेंस डाइट जो बनाया गया है एक नेशनल लेवल चार्ट पे बनाया गया है ताकि बच्चों को भरपूर जो पोषक तत्व मिल सके.
1: हमारे इस बीएचयू कैंपस से क्या बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं खेलने?
3: जी हाँ, बच्चे मैडम यह है कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं और नेशनल मेडल भी इन्होंने लिया है. नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हमारे करीब 10 मेडल आसपास, 10 गोल्ड मिले हुए हैं, कुछ ब्राउन्स हैं, कुछ सिल्वर्स हैं. तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है और आगे आने वाले जो भी हमारे टूर्नामेंट है नेशनल में श्योर मेडल मिलेंगे.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
3: थैंक यू सो मच.
1: कोच सर के लिए खास प्रश्न है कि खिलाड़ियों का पोषण बेहद जरूरी होता है फिटनेस के साथ साथ, तो पोषण और फिटनेस पर खिलाड़ियों को आप क्या विशेष तौर पर सलाह देंगे?
2: मैम, पोषण बहुत जरूरी है और हमारे ये भारतीय खेल पालिकन संस्था है तो जैसे हम कोचेज नियुक्त हैं वैसे हमारे न्यूट्रिशियन भी नियुक्त हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त हैं. तो बड़े बड़े न्यूट्रिशियन से मिलकर इनके लिए एक चाइल्ड डाइट बनाई जाती है. क्या खाना है, कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, इनका एक मेनू तैयार वही इनको दिया जाता है. उस हिसाब से सोमवार को क्या खाना है, मंगलवार को क्या खाना है, क्या मेनू है, वो उसको दिया जाता है. फिटनेस की बात पे अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहेगा तो वो इंजर्ड ज्यादा होगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी. और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आजकल सब लोग परफॉर्मेंस को ही मानते हैं. खिलाड़ी नहीं रहेगा वो बाहर हो जाएगा. इसलिए फिटनेस बहुत जरूरी है. जितना ज्यादा फिट इंसान रहेगा उतनी कम इंजरी और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी. तो फिटनेस कराने के लिए तो हम कोचेज इसलिए नियुक्त हैं ताकि फिट

0: रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस आ सके और ये आगे देश का नाम रोशन कर सके।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो इवेंट के हिसाब से सबके हर खिलाड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहती है, तो सबका डाइट चार्ट अलग रहता है।
0: जी मैम, जैसे जो थ्रोअर है उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, जो हाई जम्पर है या लॉन्ग डिस्टेंस रनर है उनको कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो थ्रोअर होते हैं उनको, हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग होता है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होता है, तो यहाँ पे उस हिसाब से इंडिया कैंप के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इससे बड़े हॉस्टल में जाते हैं तो इससे ज्यादा इनका वो होता है। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग कोच, इवेंट वाइज अलग न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मसाजर, सब कुछ रहता है।
1: संजीव जी, भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को आप कहाँ देख रहे हैं?
0: अब तो मैम भविष्य फ्यूचर ही दिख रहा है, लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस कम बनाना चाह रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा बनाना चाह रहे हैं।
1: मैंने ये प्रश्न विशेष तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि जब भारत में विशेष तौर पे जब खेलों की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रिकेट रहता है, उसके बाद फिर हम हॉकी देख लेते हैं, एथलेटिक्स इस मामले में अभी बहुत नीचे है, चाहे वो हमारे रनर्स हों चाहे हाई जम्पर्स हों, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे इन इवेंट्स में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि आगे एथलेटिक्स का भविष्य भारत में कहाँ है।
0: मैम बहुत अच्छा है आगे, क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन रनिंग के लिए ना
1: एक अकेला ही काफी
0: है, और शुरुआत हो गई है। अभी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे मेडल लेके आए हैं ढेर सारे, अभी क्रिकेट हॉकी तो हमको लग रहा है थोड़े कम हो गए हैं, अब बॉक्सिंग, आर्चरी, रेसलिंग, एथलेटिक्स तो बहुत तेज विकास हो रहा है, और हर एक गाँव में अब साई की ढेर सारी स्कीम है, तो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। कोचेज अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है वहीं पे कोच की नियुक्ति कर दे रहे हैं हर एक जिले में, जो वहाँ का इंटरनेशनल खिलाड़ी है या नेशनल मेडलिस्ट है उसको भी व्यवसाय मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है, और आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी ग्राउंड पे जाए और प्रैक्टिस करके वहाँ से अगली नेक्स्ट स्कीम में ऊपर जाए साई में, तो बहुत तेज से काम हो रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैम मैंने बोला ना कि अब पहले लोग कहते थे कि खेलो कूदो हो गए खराब, अब लोग कहते हैं कि खेलो कूदो हो गए तो लाजवाब, तो खेल का फ्यूचर अच्छा है। मैम अभी ये बनारस है, छोटा सेंटर है, लेकिन अभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, प्रदेश में साई हॉस्टल की बालिकाओं ने 19 मेडल लेके आई।
1: श्रोताओं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीएचयू कैंपस में आज हम थे और हमने बात की एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी से, साथ में जो बच्चे थे वो एथलेटिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बच्चियां थी हमारे साथ। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इन बच्चियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खिलाड़ी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ मेल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली एथलेटिक्स में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
0: हाँ मैम बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कहीं कमजोर नहीं है और अब तो ये आद सकती है तो महिलाएं अब आगे हो गई है पुरुषों से, इसमें कोई शक नहीं है, और यह हम कहते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये वो महिलाएं तो प्लेन उड़ा रही हैं, सीमा पे जा रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, परिवार देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं, और देश का प्रतिनिधित्व भी हमारी महिला राष्ट्रपति जी कर रही हैं। तो महिलाओं के बारे में अब जिनको कोई संशय हुआ वो अपने दिमाग से निकाल दें।
1: धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
2: अभी आप सुन रहे थे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। वाचन, संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की।
3: श्रोताओ, अभी हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें, कल दिन में 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में क्रम रहेगा बात है चौकी, और साथ ही सुनिएगा लघु नाटिका बदलती तस्वीर, आलेख एवं प्रस्तुति सहयोग अंजना का होगा, निर्देशक होंगे अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा। विविध कलाकारों के गाए ब्रज के लोकगीतों का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं हमारे लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर। कल संध्या 5:00 आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम होगा रिश्ता ये खास है।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब पेश है श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को रिनकोट नाला का नमस्कार और बहुत स्वागत आप सभी का कार्यक्रम में। आपके पत्रों और प्यारे प्यारे व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ हाजिर हैं हम। और जो श्रोता हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको हम बता देते हैं आगे पत्र लिखने के लिए हमारा पता, और हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763। और हाँ, अगर लाइव अभी आप हमें सुन रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं अभी हमसे कार्यक्रम में, तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमें व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिएगा अपना नाम, पता और लिखिएगा अपनी फरमाइश। फरमाइश करने के लिए नंबर बता देते हैं आपको 9457078288। नंबर एक बार फिर से नोट कीजिएगा 9457078288। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और लाइव कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का फिल्म आपकी कसम के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का। गीत सुनने वाले श्रोताओं के नाम गीत के बाद।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया गीत आपने सुना, फिल्म थी आपकी कसम। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे आप सभी श्रोता। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मोहम्मद असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। ये पत्र हमें लिखा है ग्राम नंगला उबन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से हमारे श्रोता हैं ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, अजीत, रघुवीर और इनके परिवार के सभी सदस्य हैं। ये अगला फरमाइश हमें पत्र जो मिला है ये है नजीबाबाद से ही ड्राइवर अकरम इरफान, मास्टर और बबलू। इसी गीत को सुनना चाहा था पटियाली रोड गंजुंडवारा से इरफान कुरैशी, रिहान कुरैशी, फैजान कुरैशी, सहादत कुरैशी, सऊद कुरैशी और इनके सभी साथियों ने। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा इसी गीत के लिए फरमाइश लिखकर भेजी थी। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कलानी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश कौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ये फरमाइश हमें मिली है नई बस्ती गुंजुंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने। और श्रोताओं ये थी आपकी फरमाइशें और आपकी पसंद का गीत हमने आपको सुनवा दिया। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं ठोकर फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना साजन देहलवी की, संगीत श्यामजी घनश्यामजी का है और गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे आप सभी श्रोता। गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गोड़िया, शोएब खान और इनके सभी साथी, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से, कैथल हरियाणा से हैं मधु नायक, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, प्रिय प्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशबद सिंह राहुल, वाइट फील्ड बेंगलुरु से हमारे श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं गीत सुनने के लिए। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष और इनके सभी साथी। ये व्हाट्सएप संदेश हमें मिला है वर्ली मुंबई से हमारे श्रोता हैं नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। ये फरमाइश गीत सुनने के लिए हमें लिख भेजी है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से श्रोता हैं पी एस नवाकर, निर्मल नवाकर और विशाल। एक और मैसेज हमें मिला है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी। तो हमारे इन सभी श्रोताओं के साथ श्रोताओं भी सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगर श्रोताओं आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9457078288 पर। और लगातार स्क्रीन पर हमारे श्रोताओं के मैसेज हमें मिल रहे हैं। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश की है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ये मैसेज हमें मिला है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिना नूर का। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला जो मैसेज हमें मिला है ये है सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं आशा नारंग, सोनाली नारंग, सुरेश नारंग और इनके बहुत सारे साथी। शेरवानी स्कूल गंजनवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना अंसारी और इनके सभी साथी। कृष्ण की नगरी मथुरा से हमारे श्रोता हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हिना कौसर। और एक और मैसेज को शामिल करते हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। आप सभी श्रोता सुनिए अपनी पसंद का गीत जिसे हमने लिया है फिल्म स्वीकार किया मैंने से, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना निदा फाजली की और संगीत है कमल जोशी का।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम का अंतिम गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी से, आवाज किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे आप सभी श्रोता। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। जलालाबाद वेस्ट से हमारे श्रोता हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। ये फरमाइश लिखकर भेजी है हमें नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी ने। सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और एस के पप्पी खुराना ने ये फरमाइश लिखकर भेजी है MLB रोड ग्वालियर से। गांव और डाघर निम्नाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से ये फरमाइश भेजी है भूपेंद्र सिंह हंस, अमरजीत कौर हंस और अगमवीर सिंह हंस ने। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और

तन्वी बोट, एक और मैसेज मिला है हमें, मोहल्ला अफगानान शेरकोट से, नदीमबा की, कलीमबा की, अलीमबा की, अजीमबा की, अदीमबा की, अब्दुल गनी, अलमीर और मोहम्मद जैन के साथ हैं जन्नत। आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी ने फरमाइश लिखकर भेजी है। शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से, ग्राम जुजैला थाना शिवला कला बिजनौर से हमारे श्रोता हैं राशिद अंसारी, परवीन अंजहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महवश, मोहम्मद अफान और इनके साथी राजा, राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू, मनु शिव, सेठी करणपुरी, स्माइल टुटेजा और अमृत बड़वाल ने ये फरमाइश लिखकर भेजी है। गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से, भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इनके सभी साथी, मोहल्ला मजहर चंद, शामिया रामपुर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद रमजान, शादाब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रयान चांदनी, अनामता और आशु। तो आप सभी श्रोता सुनिए अपनी पसंद का गीत जिसे हमने लिया है फिल्म अमर अकबर एंथोनी से, आवाज किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की, और ये है आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की भी मिली है, चलते चलते पढ़ लेते हैं। बर्डिंग खेड़ा पंजाब से हमारे श्रोता हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके सभी साथी, आमिर हुसैन, बेगम तैयबा, शेख फौजिया, शेख आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य, पटियाली रोड गंजुंडवारा से। एक और श्रोता ने मैसेज हमें लिखकर भेजा है, आप हैं फौजी अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य, मुजफ्फरनगर से इन्होंने हमें ये मैसेज लिखा है। सराय मीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रवीश अहमद, रुएश अहमद, रिशान और रुशमान अहमद राही के साथ इनके सभी साथी। तो श्रोताओं, ये था आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम। उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए इजाजत दीजिए। रेणुकूट नाला को नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी

0: रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलू पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Endra and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order, and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the 5th and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE.